91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ए है तुहा सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओ कन तुहा सारे कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कन।

91.2 MHz पर ये तो हाँ सारे दा अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओ तो हाँ सारे अपने पसंदीदा कार्यक्रम सुना दे जिसका नाम है माटी दी महक। सुन दे कार्यक्रम दा अगला गीत।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ए है तोहां सारिया दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओ कने तोहां सारे कार्यक्रम सुना दे थे माटी दी महका। आज दे कार्यक्रम च बस इतना ही, तोहां सारे ए बनी रिया कने सुन दे रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन दी।

0: गोरिया
1: गोरिया
2: गोरिया।
3: प्लास्टिक गोरिया जैसे नादान जानवरों की जान ले सकता है। आप भी छोटी सी शुरुआत कीजिए, प्लास्टिक को अलग डस्टबिन में डाल के शुरू करें एक छोटी सी अच्छाई।
4: बैठिए मैडम बैठिए। अरे देखो इनको, इनकी नाक देखो, बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती है। देखो इसकी आंखें देखो। पता है तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब कौन सा गाना था, एक चतुर नार बड़ी होशियार, है क्या गाना था वो?
5: ओए बिट्टो तू यहाँ क्या कर रहा है, और ये दोनों लड़कियों कौन है?
4: देखिए भाई साहब आप कौन है?
5: जी मैं इसका बाप हूँ।
4: आप इसके बाप हूँ? महमूद का बेटा नहीं तू? अरे हास्य कलाकार महमूद, ये तेरे बाप का रोड नहीं है?
6: जी नहीं।
4: तो फिर बिना हेलमेट के दो लड़कियों को बिठा के रूम रूम करते शर्म नहीं आती तुम्हें?
7: जवान तो कटेगा भैया तेरा।
4: और अभी उतर के लेके जाओ। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए कृपया ट्रैफिक नियम का पालन कीजिए, क्योंकि
6: रोड किसी के बाप का नहीं है।
4: शाबाश, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा।
8: नमस्कार दोस्तों, प्रेम विश्वास और भाई बहन के अटूट रिश्ते का ये पावन पर्व रक्षाबंधन आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है। राखी का ये पवित्र धागा सिर्फ कलाई पर बंधा एक धागा नहीं, बल्कि प्यार विश्वास सुरक्षा और जीवन भर साथ निभाने के वचन का प्रतीक है।

रिश्तों में मिठास रहे, अपनों का साथ रहे। रिश्तों में मिठास रहे, अपनों का साथ रहे। हर कलाई पर सजे प्यार का धागा और हर चेहरे पर मुस्कान रहे। इन्हीं खूबसूरत भावनाओं के साथ रेडियो गुंजन धर्मशाला की ओर से आ रहे इस रक्षाबंधन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।

0: नमस्ते भैया, कैसे हो भाभी जी?
1: अभी शादी का लहंगा सिलवाना था।
0: हाँ हाँ, बहुत सारे डिजाइन है, ये देखिए। कौन सा स्टाइल चाहिए आपको? ये देखिए, पिछले महीने मिश्रा जी की बेटी की शादी के लिए सिया था।
1: ये तो स्लीवलेस है, हमें फुल स्लीव्स वाला चाहिए। थोड़ा सिंपल दिखाइए।
0: सिंपल में तो फिर, अरे पर किसके लिए बनाना है?
1: चुन्नी के लिए।
0: ये अपनी चुन्नी?
1: हाँ, अच्छा रिश्ता मिला है।
0: बेटा चुन्नी, कितने साल के हो आप?
2: अगले ही महीने 12 साल की हो जाएगी। पंडित जी ने इसी इतवार का मुहूर्त निकाला है, तो हो तो जाएगा ना तब तक।
0: अच्छा, 12 साल की है तो आपको प्रॉब्लम नहीं है?
2: नहीं, क्यों?
0: और आपको भी प्रॉब्लम नहीं है? पर मुझे प्रॉब्लम है, मैं नहीं सीऊंगा।
2: चलो छोड़ो उसे, किसी और से सिलवा लेंगे।
0: अरे भैया जी, एक मिनट। अरे बिरजू, वो कौन सा नंबर है, निकलवाओ तो जरा।
3: मास्टर जी, टोल फ्री नंबर है 1098, कभी भी कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं।
0: ना हम सीएंगे, ना किसी को सीने देंगे।
4: जीवन की हर उलझन का हल मिलेगा मित्र, बस अपने मन को थोड़ा शांत करके देखो। जो तुम्हारा है वो कहीं नहीं जाएगा, और जो चला गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीखो, क्योंकि मुस्कान ही हर दर्द की सबसे बड़ी दवा है। भरोसा उस ईश्वर पर पूरा रखो, वो तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे लिए सही है। तुम्हारी सरलता ही तुम्हारी

91.2 मेगाहर्ट्स पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोतो, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

0: 91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।
1: और हजरतों के कोर्ट में ये दिल का जज कहे।
2: ऑर्डर।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना वीडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना वीडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 FM पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

91.2 MHz पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ, गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोतो, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

स्वागत है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ, गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोतो, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला से अब आप सभी सुनेंगे आज का ये खास न्यूज बुलेटिन। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पे। मानसून सत्र के बाद हिमाचली अधिकारों की लड़ाई के लिए दिल्ली जाएंगे सुक्खू। शिक्षा विभाग सख्त, स्कूलों में उबला या फिल्टर पानी बच्चों को पिलाने के आदेश। वन स्टूडेंट वन स्कॉलरशिप में बदलाव, एक से ज्यादा छात्रवृत्ति ले सकेंगे छात्र। प्रदेश में 22,600 करोड़ की ग्रीन वेल्थ का दोहन होगा। ऑफिस में जींस टी शर्ट पहनने पर सख्ती। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचली अधिकारों की लड़ाई के लिए वह विधानसभा के मानसून सत्र के बाद दिल्ली जाएंगे। राज्य से जुड़े विषयों को केंद्र सरकार के साथ मजबूती से उठाया जाएगा। बीबीएनबी और किशाऊ बांध से जुड़े मामले का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि फैसला हिमाचल प्रदेश के पक्ष में आने से बड़ा आर्थिक लाभ होगा। राज्य को अपना अधिकार मिलने से हर वर्ष करीब 1,500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होगी। हिमाचली अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए सरकार ने वरिष्ठ अधिवक्ताओं की टीम तैयार की है। कुल्लू जिले के प्राथमिक स्कूल बाड़ी में खीर खाने के बाद छात्रों के बीमार पड़ने की घटना के बाद शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में पेयजल और स्वच्छता व्यवस्था को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने सभी उपनिदेशकों, प्रधानाचार्यों और मुख्याध्यापकों को मानसून के दौरान जलजनित बीमारियों की रोकथाम के लिए तत्काल प्रभाव से विशेष एहतियाती कदम उठाने को कहा है। निदेशक स्कूल शिक्षा ने सभी प्रधानाचार्यों और मुख्याध्यापकों को निर्देश दिए हैं कि स्कूलों में केवल सुरक्षित फिल्टर या उबला हुआ पानी ही विद्यार्थियों को उपलब्ध कराया जाए। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल एनएसपी पर शैक्षणिक सत्र 2026 से 27 से छात्रवृत्ति व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब मेधावी विद्यार्थी केवल एक छात्रवृत्ति तक सीमित नहीं रहेंगे। वन स्टूडेंट वन स्कॉलरशिप व्यवस्था में बदलाव करते हुए पात्र विद्यार्थी एक मेरिट आधारित छात्रवृत्ति के साथ एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के तहत मिलने वाली एक से अधिक छात्रवृत्तियों का लाभ ले सकेंगे। इसके लिए संबंधित छात्रवृत्ति योजनाओं की पात्रता शर्तें पूरी करना जरूरी होगा। शिक्षा मंत्रालय के निर्देशों के बाद हिमाचल प्रदेश उच्च शिक्षा निदेशालय ने सरकारी और विश्वविद्यालयों, निजी महाविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों को नई व्यवस्था के अनुसार कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। नई व्यवस्था का सबसे अधिक लाभान्वित विद्यार्थियों को होगा जो मेरिट के आधार पर छात्रवृत्ति हासिल करने के साथ साथ एससी, एसटी या ओबीसी वर्ग की कल्याणकारी छात्रवृत्ति के लिए भी पात्र थे, लेकिन इन छात्रवृत्तियों का लाभ नहीं ले पाते थे। बाल विकास समिति जिला कांगड़ा ने धर्मशाला के रक्कड़ क्षेत्र में मोबाइल फोन की कथित लत के चलते किशोर की मौत के मामले में गहरी चिंता जाहिर की है और इस मामले में पुलिस से स्टेट्स रिपोर्ट तलब की है। समिति ने बुधवार को धर्मशाला थाना क्षेत्र के तहत रक्कड़ क्षेत्र के एक 14 वर्षीय किशोर द्वारा कथित तौर पर गेम खेलने के लिए मोबाइल फोन न दिए जाने के चलते घर के कमरे में ही फंदा लगाकर आत्महत्या किए जाने के मामले में कड़ा संज्ञान लिया है। यह जानकारी जिला कांगड़ा बाल विकास समिति के अध्यक्ष विक्रमजीत शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि विभिन्न समाचार माध्यमों से मिली जानकारी के आधार पर उनकी अध्यक्षता में बाल विकास समिति ने इस मामले पर चर्चा की और इसकी स्टेट्स रिपोर्ट तलब की है। रिपोर्ट मिलने के बाद समिति नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लाएगी। हिमाचल प्रदेश के जंगल अब केवल हरियाली और पर्यावरण संरक्षण का माध्यम नहीं रहेंगे बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ताकत देने का बड़ा जरिया बनेंगे। प्रदेश की वन एवं चरागाह आधारित अर्थव्यवस्था में मौजूद करीब 22,600 करोड़ रुपए की अप्रयुक्त आर्थिक क्षमता का वैज्ञानिक तरीके से दोहन करने के लिए वन विभाग और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस आईएसबी के भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी बीआईपीपी के बीच 5 वर्ष का समझौता हुआ है।
वीरवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की मौजूदगी में हुए इस एमओयू के तहत वन संसाधनों की पहचान से लेकर बाजार से जोड़ने तक की पूरी व्यवस्था विकसित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह साझेदारी विज्ञान स्थानीय समुदायों व सरकार को मंच पर लाकर हिमाचल के वन प्रबंधन में बड़ा बदलाव ला सकती है। परियोजना के तहत 500 से अधिक वन रक्षकों ने प्रदेश के जंगलों में जाकर 2 लाख से अधिक पेड़ों का डाटा और प्रजातियों की पहचान से संबंधित तस्वीरें जुटाई। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के ड्रेस कोड और सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। कार्मिक विभाग की ओर से एक बार फिर से कर्मचारियों को ड्रेस कोड को लेकर रिमाइंडर जारी किया गया है। सरकार ने सभी कर्मचारियों को सख्ती से आदेशों का पालन करने को कहा है, वहीं नियमों की अवहेलना करने वाले कर्मचारियों पर अब उचित कार्रवाई की जाएगी। सभी सरकारी विभागों को जारी पत्र में कर्मचारियों को कार्यालय में मर्यादित, औपचारिक और शालीन पहनावा अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही व्यक्तिगत सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए सरकारी नीतियों, योजनाओं और संवेदनशील मामलों पर अनधिकृत टिप्पणी करने से भी बचने को कहा गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि कार्यालय और अदालत में पेशी के दौरान कर्मचारी साफ सुथरे, सभ्य और औपचारिक कपड़े पहने। पुरुष कर्मचारियों को शर्ट पैंट अथवा ट्राउजर कॉलर वाली शर्ट के साथ पैंट तथा जूते या सैंडल पहनने की सलाह दी गई है। महिला कर्मचारियों के लिए साड़ी, औपचारिक सूट, सलवार कमीज, कुर्ता दुपट्टा और ट्राउजर पैंट के साथ शर्ट जैसे परिधानों का उल्लेख किया गया है। कार्यालयों में जीन्स और टी शर्ट पहनने से स्पष्ट रूप से मना किया गया है। कर्मचारियों को ग्रूमिंग और व्यक्तिगत स्वच्छता पर भी ध्यान देने को कहा गया है। आज के समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद।

0: गोरिया
1: गोरिया
2: गोरिया।
3: प्लास्टिक गोरिया जैसे नादान जानवरों की जान ले सकता है। आप भी छोटी सी शुरुआत कीजिए, प्लास्टिक को अलग डस्टबिन में डाल के शुरू करें एक छोटी सी अच्छाई।
4: बैठिए मैडम बैठिए। देखो इनको, इनकी नाक देखो, बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती है। देखो इसकी आंखें देखो। पता है तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब कौन सा गाना था? एक चतुर नार बड़ी होशियार है, क्या गाना था वो?
5: अरे बेटो तू यहाँ क्या कर रहा है? और ये दोनों लड़कियां कौन है?
4: देखिए भाई साहब आप कौन है?
5: जी मैं इसका बाप हूँ।
4: आप इसके बाप हूँ? महमूद का बेटा नहीं तू? अरे हास्य कलाकार महमूद, ये तेरे बाप का रोड नहीं है?
6: जी नहीं।
4: तो फिर बिना हेलमेट के दो लड़कियों को बिठा के रूम रूम करते शर्म नहीं आती तुम्हें?
1: जवान तो कटेगा भैया तेरे।
4: और अभी उतर के लेके जाओ आपकी।

नमस्कार दोस्तों, प्रेम विश्वास और भाई बहन के अटूट रिश्ते का ये पावन पर्व रक्षाबंधन आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है। राखी का ये पवित्र धागा सिर्फ कलाई पर बंधा एक धागा नहीं, बल्कि प्यार, विश्वास, सुरक्षा और जीवन भर साथ निभाने के वचन का प्रतीक है।

रिश्तों में मिठास रहे, अपनों का साथ रहे। रिश्तों में मिठास रहे, अपनों का साथ रहे। हर कलाई पर सजे प्यार का धागा और हर चेहरे पर मुस्कान रहे। इन्हीं खूबसूरत भावनाओं के साथ रेडियो गुंजन धर्मशाला की ओर से आ रहे

0: नमस्ते भैया, कैसे हो भाभी जी?
1: अभी शादी का लहंगा सिलवाना था।
0: हाँ हाँ, बहुत सारे डिजाइन है, ये देखिए। कौन सा स्टाइल चाहिए आपको? ये देखिए, पिछले महीने मिश्रा जी की बेटी की शादी के लिए सिया था।
1: ये तो स्लीवलेस है, हमें फुल स्लीव्स वाला चाहिए। थोड़ा सिंपल दिखाइए।
0: सिंपल में तो फिर, अरे पर किसके लिए बनाना है?
1: चुन्नी के लिए।
0: ये अपनी चुन्नी?
1: हाँ, अच्छा रिश्ता मिला है।
0: बेटा चुन्नी, कितने साल के हो आप?
2: अगले महीने 12 साल की हो जाएगी। पंडित जी ने इसी इतवार का मुहूर्त निकाला है, तो हो तो जाएगा ना तब तक।

0: टोल फ्री नंबर है 1098, कभी भी कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं।
1: ना हम सीएंगे ना किसी को सीने देंगे।
2: जीवन की हर उलझन का हल मिलेगा मित्र, बस अपने मन को थोड़ा शांत करके देखो। जो तुम्हारा है वो कहीं नहीं जाएगा, और जो चला गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीखो, क्योंकि मुस्कान ही हर दर्द की सबसे बड़ी दवा है। भरोसा उस ईश्वर पर पूरा रखो, वो तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे लिए सही है। तुम्हारी सरलता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, और तुम्हारी खामोशी में ही ईश्वर का वास।
3: मम्मी जी क्या कह रहे हैं, बचपन में आपका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था।
4: हाँ, जब मैं 12 साल का था ना, तो मैं पापा को बिना बताए उनकी बाइक लेके घर से बाहर निकल गया, और मैं बाइक इतनी तेज चला रहा था कि सामने से एकदम से ट्रक आ गया। ट्रक को बचाने के चक्कर में मैंने एकदम से लेफ्ट ले लिया, तो जैसे ही लेफ्ट लिया सामने से गाड़ी आ रही थी, और गाड़ी में जाके बाइक लगी और बाइक पूरी खत्म हो गई।
3: बेबी बाइक को छोड़ो, आप बताओ आप बचे थे कि नहीं।
4: तब तो बच गया था, लगता है अब नहीं बचूंगा।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। सुबह के 9 बज गए हैं और कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला लेकर मैं हाजिर हो गई हूँ, आपकी रेडियो दोस्त सुषमा। तो श्रोताओं, जितने भी श्रोता हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, उन सभी को सुषमा की प्यार भरी राम राम, नमस्कार और गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे और आज की सुबह की शुरुआत आपकी हो चुकी होगी। आप लोगों ने बिस्तर छोड़ दिए होंगे और अपने अपने घर के कामों को करना शुरू कर दिया होगा, और जो लोग कहीं बाहर काम पर जाते हैं वो लोग भी निकल गए होंगे। जो घर से निकल गए हैं उनसे हम यही कहेंगे, अगर आप ड्राइव करते हैं तो सेफली ड्राइव करें, अपना ख्याल रखें और मौसम का भी खास ख्याल रखें। और मौसम का ख्याल क्यों रखना है वो आपको पता है, कहीं भी जाने से पहले आपके जो रोड हैं उनका जायज़ा ज़रूर कीजिए, किसी से फ़ोन पर बात करके पूछिए कि वहाँ के रोड ठीक है या नहीं है। साथ ही श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला अब शुरू हो गया है और इसका जो सफ़र है वो 11 बजे तक का रहता है। तो आज के कार्यक्रम में रोज़ाना की तरह आज भी बहुत सारी बातें आपके साथ हमने करनी है, बहुत सारी जानकारियां आप तक पहुंचानी है और साथ ही आपका मनोरंजन करवाना है प्यारे प्यारे गीतों के साथ। तो सबसे पहले कार्यक्रम में लेते हैं विचार। ज़िंदगी में किताबें और इंसान दोनों को पढ़ना सीखिए, क्योंकि किताबों से हमें ज्ञान और इंसानों से हमें अनुभव मिलता है। तो श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला के साथ आप जुड़ चुके हैं और आपको बता दें 88.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हमीरपुर के थटवाल की आवाज़ पर भी आप हमें सुन सकते हैं। वहाँ के भी श्रोताओं को सबको सुषमा की प्यार भरी नमस्कार। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं प्यारे से गीत के साथ। तो आप सभी तैयार बैठे होंगे, कार्यक्रम की शुरुआत किस गीत से हो रही है उसके लिए, तो आइए हम पिछले कल की बात छोड़ते हैं और अगले दिन की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। और इस गीत को हमने लिया है हम हिंदुस्तानी फिल्म से, आवाज़ है मुकेश की।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ट्यून इन हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला आप सभी सुन रहे हैं आपके अपने रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। श्रोताओं, कार्यक्रम में अभी आपने सुना छोड़ो कल की बातें। हम कई बार अपनी लाइफ में भी कल की बातों को लेकर बैठे रहते हैं और अपने आज को भी ख़राब कर देते हैं। श्रोताओं, पिछले दिनों में या हमारी लाइफ में पीछे क्या हुआ, उन सब बातों को छोड़कर हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि जो पिछले समय के साथ चलता रहता है वो आगे कभी बढ़ ही नहीं पाता। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में आपने सुना ये कार्यक्रम का पहला प्यारा सा गीत, और साथ ही अब आगे हम बढ़ेंगे। और आप सभी जानते हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में हम आप तक पहुँचाते हैं मौसम की जानकारी। तो आप सभी जहाँ पर भी हैं वहाँ का मौसम कैसा है वो आप सभी जानते हैं, लेकिन धर्मशाला में हम बैठे हैं तो धर्मशाला की बात करेंगे। आज सुबह से ही बारिश जो है वो लगी हुई है और मौसम जो है बिल्कुल ख़राब बना हुआ है, और आज मौसम का जो हाल है उस हिसाब से यही लगता है कि सारा दिन बारिश बरसने वाली है। धर्मशाला की ही हम बात कर रहे हैं श्रोताओं, तो आज का अधिकतम तापमान धर्मशाला में बना हुआ है 19 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान आज बना है 14 डिग्री सेल्सियस, और साथ ही अगर हवा में नमी की बात करें तो वो है 99%। तो श्रोताओं, ये तो थी मौसम की जानकारी, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार मौसम क्या कहता है उस पर भी थोड़ी सी नज़र हम ज़रूर डालेंगे। हिमाचल प्रदेश में इस साल मानसून की बारिश जो है वो सामान्य से कम रही है, लेकिन कम बारिश के बावजूद प्रदेश को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। साथ ही श्रोताओं, मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 30 जून को प्रदेश में पहुंचा दक्षिण पश्चिमी मानसून अब तक सामान्य से 8% कम बरसा है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून सीजन के दौरान 11 जून से 21 अगस्त तक 6 जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है। शिमला में सामान्य से 18% अधिक बारिश दर्ज की गई है। साथ ही बात करें हमीरपुर की, तो हमीरपुर में सामान्य से 35% कम बारिश हुई है। मंडी में 22%, सोलन में 11% और ऊना में 1% कम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार 1 से 21 अगस्त तक प्रदेश में सामान्य से 13% कम बारिश हुई है, और आने वाले दिनों में श्रोताओं 23 से 27 अगस्त तक प्रदेश में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। तो ये थी मौसम की जानकारी, और मौसम की जानकारी के बाद कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे। और जैसा कि आप सभी को मालूम है, गीत संगीत हम लोग बिल्कुल भी नहीं रोकते हैं, आपके मनोरंजन के लिए प्यारे प्यारे गीतों को सजा कर लेकर आते हैं। तो चलते हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं एक और खूबसूरत से गीत के साथ, कश्मीर की कली, इस फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में।

0: 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला, अभी आप सुन रहे हैं श्रोताओं। और अब कार्यक्रम में समय है समाचारों का, तो पहले सुनते हैं समाचार, बाकी की बातें करेंगे समाचारों के बाद।
1: प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के आज दूसरे दिन प्रश्नकाल के अलावा अन्य विधायी कार्य निपटाए जाएंगे। भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने विपक्ष की आवाज दबाने और विधानसभा के मुद्दों से ध्यान भटकाने का राज्य सरकार पर लगाया आरोप। चंबा में एनालॉग पनीर की बिक्री और इस्तेमाल को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई की तेज, लोगों से सतर्क रहने की अपील। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कांगड़ा, चंबा, मंडी व बिलासपुर में भारी बारिश का येलो अलर्ट किया जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुधार उनकी सरकार के लिए मजबूरी नहीं बल्कि प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार केवल नियम नहीं बदल रही बल्कि नियम बनाने की सोच भी बदल रही है। उन्होंने कहा कि भारत अब उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना PLI के जरिए उद्योग और रोजगार के नए अवसर सृजित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर संसाधनों को लेकर बढ़ता तनाव और देशों के बीच अविश्वास नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इसके बावजूद भारत को दुनिया में विकास और उम्मीद की एक बड़ी किरण के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। प्रधानमंत्री ने भारत की G20 अध्यक्षता के मंत्र एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया के सभी देशों का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं।
2: दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों। रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा है। लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है।
1: प्रदेश विधानसभा के शिमला में चल रहे मॉनसून सत्र के आज दूसरे दिन प्रश्नकाल के अलावा अन्य विधायी कार्य निपटाए जाएंगे। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी। कल सदन की कार्यवाही हंगामे के चलते नहीं हो पाई थी, इसलिए आज शोकोद्गार के साथ सदन की कार्यवाही शुरू होगी। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे शिमला जिला संवाददाता।
3: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। पिछले कल सदन की कार्यवाही हंगामे के चलते नहीं चल पाई थी, इसलिए आज शोकोद्गार के साथ सदन की कार्यवाही शुरू होगी और उसके बाद प्रश्नकाल होगा। प्रश्नकाल के दौरान विधायकों ने सड़क, आपदा राहत, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, आर्थिक प्रबंधन, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार से जुड़े हुए कई अहम प्रश्न पूछे हैं, जिसका सरकार जवाब देगी। इसके अलावा नियम 62 के तहत 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और नियम 130 के अंतर्गत 2 प्रस्तावों पर चर्चा होगी। दूसरे दिन भी सदन में हंगामे के आसार है। विपक्ष कांग्रेस सरकार पर वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत अपमान करने का आरोप लगा रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष ने भाजपा पर राष्ट्रगान के अपमान के आरोप लगाए हैं। इसी को लेकर कल सदन के भीतर और बाहर काफी हंगामा देखने को मिला। आज भी सदन में इसी को लेकर हंगामा हो सकता है। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
1: इससे पहले कल मॉनसून सत्र के पहले दिन राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर हंगामा हुआ था, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी थी। आय से अधिक संपत्ति मामले में भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने प्रदेश सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने और विधानसभा के मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया है। सुधीर शर्मा से कल विजिलेंस ने करीब 1.25 घंटे पूछताछ की। विजिलेंस द्वारा उन पर की गई कार्रवाई पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सुधीर शर्मा ने सरकार और विजिलेंस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। सुधीर शर्मा ने आरोप लगाया कि विधानसभा सत्र चलने के दौरान किसी विधायक को इस तरह बीच में बुलाना पहली बार हुआ है। उन्होंने कहा कि वे कानून को मानने वाले व्यक्ति हैं और जांच में पूछे जा रहे हर सवालों का जवाब दिया है और तथ्य जल्द ही प्रदेश की जनता के सामने आएंगे।
4: तो विजिलेंस को पूछताछ करनी है, उसमें जो उन्होंने पूछा है वो उनको सब पहले भी बताया है, आज भी बता दिया है। पर ये पहली बार हुआ है कि जब सत्र चल रहा हो और सत्र के दौरान जो है वो किसी भी विधायक को इस तरह से बीच में बुलाया जाए। तो ये जिस तरह से वर्तमान सरकार का ये रवैया बन गया है कि भाई विपक्ष की आवाज को दबाना है, तो ये लंबा समय तक चलने वाला नहीं है। और हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं, जो तथ्य होंगे वो जनता के, प्रदेश की जनता के सामने आएंगे, उसमें कुछ भी छुपाने वाली बात नहीं।
1: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। चंबा जिले में एनालॉग पनीर की बिक्री और इस्तेमाल को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। खाद्य एवं सुरक्षा विभाग चंबा के सहायक आयुक्त दीपक आनंद ने बताया कि इसके लिए विभाग ने छापामारी अभियान भी शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए विभाग की ओर से बाजार में उपलब्ध पनीर व अन्य दुग्ध उत्पादों की जाँच की जा रही है। दुकानदारों, होटल संचालकों और खाद्य कारोबारियों को भी निर्धारित खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
5: मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विनियमन विभाग द्वारा एनालॉगस पनीर को एक वर्ष के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर लिया है। पूरे प्रदेश में विभाग ने एक प्लान तैयार किया है, जिसमें कि छापामारी अभियान आरंभ किया जाएगा, नियमानुसार उसमें कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आम जनता से मेरी ये सुझाव भी रहेगा और अपील रहेगी कि अगर यदि किसी को इस तरह का पनीर उनके संज्ञान में आता है या उनको मार्केट में कहीं दिखता है, विभाग को इस बारे में सूचित करें और स्वयं भी वो इस बारे में सतर्क रहें।
1: केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है, हालांकि इसका उत्पादन अनुमान से कम रहने की संभावना है। सरकार ने चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को देखते हुए पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतें स्थिति पर करीबी नजर रख रहा है। मंत्रालय ने कहा कि चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को इथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी के इस्तेमाल से जोड़ना सही नहीं है। मंत्रालय के अनुसार इथेनॉल के लिए चीनी का उपयोग वर्ष 2022-23 में करीब 12% था, जो 25-26 में घटकर करीब 9% रह गया है। देश में इथेनॉल का करीब 3/4 हिस्सा अब अनाज, खासकर मक्का से तैयार होता है। प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाए हुए हैं, वहीं चंबा में बारिश का समाचार है। मौसम विभाग ने कांगड़ा, चंबा, मंडी व बिलासपुर जिलों के लिए आज भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार भूस्खलन से राज्य में 99 सड़कें अवरुद्ध हैं, जिन्हें बहाल करने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। इसके अलावा 7 बिजली ट्रांसफार्मर और 66 पेयजल योजनाएँ भी ठप हैं। हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना चरण 2 जायका के तहत खंड परियोजना प्रबंधन इकाई कुल्लू द्वारा कल एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में जिला कुल्लू की 16 उप परियोजनाओं से जुड़े 42 प्रबंधन समिति सदस्यों ने भाग लिया। खंड परियोजना प्रबंधक कुल्लू डॉक्टर जयंत रत्ना ने कहा कि कृषक विकास संगठनों को प्रभावी व सुदृढ़ बनाने में प्रबंधन समिति के सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है। कार्यक्रम में प्रतिभागियों के साथ व्यवहारिक समस्याओं, किसानों की भागीदारी और सिंचाई योजनाओं के संचालन व रखरखाव पर भी चर्चा की गई। अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने 14वीं विधानसभा के मॉनसून सत्र से जुड़ी खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला की सुर्खी है, विधानसभा में वंदे मातरम पर हंगामा, पहले दिन 11 मिनट ही चली कार्यवाही। दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण व पंजाब केसरी का एक जैसा शीर्षक है, विधानसभा में वंदे मातरम पर हंगामा, 10 मिनट में कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। दिव्य हिमाचल ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है, सीएम के निर्देशों पर एचपीयू की फीस में 10% की कटौती। हिमाचल दस्तक के मुताबिक विजिलेंस मुख्यालय में सुधीर से 2.25 घंटे पूछताछ। टेहरा स्कूल की मंजरी वी महाजन को मिलेगा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, अमर उजाला की एक अन्य खबर है। मौसम पर हिमाचल दस्तक के शब्द हैं, 4 जिलों में आज भारी बारिश का येलो अलर्ट। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के आज दूसरे दिन प्रश्नकाल के अलावा अन्य विधायी कार्य निपटाए जाएंगे। भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने विपक्ष की आवाज दबाने और विधानसभा के मुद्दों से ध्यान भटकाने का राज्य सरकार पर लगाया आरोप।
6: चंबा में एनालॉग पनीर की बिक्री और इस्तेमाल को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई की तेज, लोगों से सतर्क रहने की अपील। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कांगड़ा, चंबा, मंडी व बिलासपुर जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट किया जारी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में। समाचारों के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जितने भी श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी को एक बार फिर से सुषमा की प्यार भरी गुड मॉर्निंग नमस्कार। श्रोताओं बरसात का ये मौसम है और ऐसे मौसम में हम आपसे हर दिन आकर यही कहते हैं कि अपना ख्याल रखिए, कहीं भी बाहर जाने से पहले देख लीजिए कि मौसम कैसा है और जाना ज़रूरी है, तभी पुख्ता जो आपके इंतज़ाम है वो करके जाइए। जैसे कि अगर आप पैदल कहीं जा रहे हैं तो अपने साथ छाता लेकर जाना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि श्रोताओं ये धर्मशाला है, यहाँ कब बारिश बरस पड़े कोई पता नहीं होता और हम हर किसी से कई बार ऐसा कहते हैं कि बारिश है छाता खोल लीजिए। लेकिन आने वाला ये जो गीत है ये कुछ और ही कह रहा है श्रोताओं, और ये गीत क्या कह रहा है उसके लिए आपको सुनना पड़ेगा ये गीत। तो लीजिए गोपी किशन फिल्म का ये गीत, सुनिए आप सभी कुमार शानू और पूर्णिमा की आवाज़ों में।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। आज के इस कार्यक्रम में श्रोताओं, आप हैं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ, और कार्यक्रम में अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत। तो गीत के ऊपर तो बिल्कुल भी मत जाइए, क्योंकि ये कह रहा है कि छतरी ना खोल, लेकिन हम ये कहेंगे कि बारिश में भीगने से बचिए और छाता साथ में लेकर जाइए, और अगर आप दो पहिया वाहन चलाते हैं तो आपको साथ में रेनकोट जो है वो भी लेकर जाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि बरसात के मौसम में अगर आप भीग गए तो बीमार पड़ सकते हैं। वैसे भी श्रोताओं, आजकल जो है वायरल चल रहा है और बुखार हो रहे हैं, लोग जो है बीमार पड़ रहे हैं, ऐसे में हम आपसे यही कहेंगे अपना और बच्चों का ख्याल खास करके रखिए। बरसात की ही बात की है श्रोताओं, तो एक जानकारी आप तक पहुँचाने जा रहे हैं जो कि बारिश की वजह से रोड खराब होने पर ही आधारित है। श्रोताओं, लगातार बारिश के बीच धर्मशाला मैक्लोडगंज को जोड़ने वाले दोनों प्रमुख सड़क मार्गों की खस्ता हालत पर स्थानीय लोगों का आक्रोश बढ़ गया है। जोगीवाड़ा में खड़ा डंडा मार्ग दोबारा धंसने और राष्ट्रीय राजमार्ग 503 के फरसेठगंज के पास मोड़ 9 सहित विभिन्न क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त होने से लोगों और पर्यटकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। स्थानीय लोगों ने सरकार, प्रशासन और लोक निर्माण विभाग से दोनों मार्गों को प्राथमिकता के आधार पर सुरक्षित करने और स्थायी मरम्मत करवाने की जोरदार मांग उठाई है। साथ ही श्रोताओं, आपको बता दें, स्थानीय लोगों में से सुधेड़ पंचायत के प्रधान अजीत नेहरिया, मैक्लोडगंज व्यापार मंडल के अध्यक्ष नरेंद्र पठानिया, कारोबारी एवं समाज सेवी बिट्टू पठानिया बर्नेट, टैक्सी ऑपरेटर यूनियन अध्यक्ष अशोक शर्मा, संजीव सिंह राणा, दिनेश कपूर, विकास नेहरिया, नरेश सिंह और अन्य लोगों ने सड़क की स्थिति जल्द से जल्द सुधारने की मांग उठाई है। इनका कहना है कि बरसात में हर साल इन मार्गों की हालत बिगड़ती है, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया जा रहा है। साथ ही श्रोताओं, उन्होंने ये भी कहा है कि प्रशासन और विभाग को गंभीरता से इस बात को लेना चाहिए। साथ ही श्रोताओं, लोग परेशान हैं क्योंकि धर्मशाला कोतवाली खरडंडा मार्ग जोगीपाड़ा से सड़क धंसने से यातायात प्रभावित है और वाहनों को क्षतिग्रस्त हिस्से से बेहद सावधानी से निकालना पड़ रहा है। और आपको बता दें श्रोताओं, हम भी आए दिन वीडियोज देखते हैं जिसमें कि इन मार्गों की जो देखी हुई बात है वो समझाई जाती है, और बहुत मुश्किल होती है वहाँ से दो पहिया वाहन वालों के लिए, तो बहुत ही खतरा है क्योंकि वो एक तो रोड धस रहे हैं, ऊपर से मिट्टी, ऊपर से स्लिपरी वो मिट्टी होने की वजह से दो पहिया वाहन जो है कई बार वहाँ गिर चुके हैं और उन्हें चोटें भी आई हैं। तो ऐसे में स्थायी मरम्मत जो है वो करवाना तो बनता ही है। इस जानकारी के बाद कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे श्रोताओं, और फिर से आपको ले चलेंगे कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत की ओर। चलिए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को, जिसे हम लेकर आए हैं घर फिल्म से। आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला आप सभी सुन रहे हैं इस समय आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। और कार्यक्रम में इस खूबसूरत से गीत के बाद हम आगे बढ़ेंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रोज़ाना हम हर दिन का इतिहास आपके समक्ष रखते हैं, और आज हम आ पहुँचे हैं 22 अगस्त के दिन पर। श्रोताओं, आज 22 अगस्त का दिन है, शनिवार का दिन है। तो चलिए देखते हैं 22 अगस्त का दिन जो है इतिहास में क्या और क्यों छाप छोड़ कर गया। 22 अगस्त का दिन, श्रोताओं, दिन भारत और विश्व इतिहास में बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाओं का गवाह रहा है, जिसमें मद्रास, जिसे कि अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है, उसकी स्थापना और ऐतिहासिक राजनीतिक निर्णय शामिल हैं। साथ ही श्रोताओं, थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ें तो 1639 में आज ही के दिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थानीय शासकों से ज़मीन खरीद कर मद्रास शहर की नींव रखी थी, जिसे अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है। 1894 में आज ही के दिन महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के अधिकारों के लिए नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए विदेशी वस्त्रों की होली जलाने का आह्वान भी आज ही के दिन 1921 में किया। इसके साथ ही श्रोताओं, 2012 की बात करें तो आज ही के दिन 2012 में प्रणब मुखर्जी ने भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। 2017 में आज ही के दिन भारत के उच्चतम न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में 3 तलाक को असंवैधानिक रूप से करार दिया था। तो श्रोताओं, ये सब बातें, ये सब घटनाएं हैं आज ही के दिन की, जो कि इतिहास में कहीं ना कहीं दर्ज हुई थी। और इतिहास के इन पन्नों को अब हम कर रहे हैं बंद और आगे बढ़ रहे हैं एक और प्यारे से गीत के साथ। तो चलिए साथ में मिलकर सुनते हैं रंग फिल्म का ये गीत, और आवाज़ों से सजाया है अलका याग्निक और कुमार शानू ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में अभी आपने सुना ये गीत। और सुबह का ये समय होता है श्रोताओं, हम अपने काम करते करते अगर रेडियो को ऑन रखें तो अपने काम भी हम आराम से कर सकते हैं और हमारे काम करने में हमें मज़ा भी बहुत आता है। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है और बहुत सारे श्रोता ऐसे भी हैं जो बिना रेडियो के काम नहीं करते। मैं भी बिल्कुल बिना रेडियो से कोई काम कर ही नहीं पाती, क्योंकि जब तक गीतों की धुन कानों में ना सुनाई दे तब तक लगता है कि हम काम कर ही नहीं रहे हैं और हमारा कोई भी काम मज़े से होता भी नहीं है। और जो लोग नहीं करते श्रोता, उनसे हम यही कहेंगे, गीतों को अपनी लाइफ में शामिल करके देखिए। और सच में अगर आप अकेले भी होंगे घर पर तो आपको अकेलापन बिल्कुल भी नहीं

आएगा। गीतों की बात कर रहे हैं श्रोताओं, तो एक और प्यारा सा गीत आगे आपको सुनवाया जाएगा। और गीतों में बहुत कुछ छुपा होता है अगर हम उन्हें ध्यान से सुने, उनके बारे में थोड़ी सी जांच पड़ताल करें। तो श्रोताओं, अब आने वाले अगले गीत की थोड़ी सी बात करेंगे। श्रोताओं, अगला जो गीत है वो हम सुनाने वाले हैं आपको नाकाबंदी फिल्म से, और आवाज़ दी है इस गीत को आशा भोसले ने। श्रोताओं, इस गीत में संगीत जो है वो बप्पी लहरी का है और गीतकार अनजान थे। गीत में श्री देवी मुख्य रूप से दिखाई देती है, और इस गीत की ख़ास बात अगर हम आपको बताएं तो उसमें श्री देवी को उस दौर की कई महान अभिनेत्रियों की खूबियों से जोड़कर दिखाया गया है। इसमें रेखा, हेमा मालिनी, नरसिंह, नूतन, मधुबाला, आशा पारेख, मीना कुमारी, जीनत अमान, साधना, मुमताज़, माला सिन्हा, बहीदा रहमान और विजयंती माला जैसी अभिनेत्रियों का नाम भी आता है। और गीत के भाव की बात करें तो श्रीदेवी जो है वो मजाकिया और आत्मविश्वास भरे अंदाज में कहती हैं कि इन सभी अभिनेत्रियों में जो अलग अलग खूबियां हैं उनका कुछ ना कुछ रूप मुझ में भी है। फिर वे अपने डांस और अलग अलग तरीके से अभिनय करके इस चीज़ की प्रदर्शन भी करती है। और सबसे दिलचस्प बात श्रोताओं ये है कि ये केवल सुंदरता की तुलना ही नहीं है, गीत श्रीदेवी की बहुमुखी प्रतिभा को भी सामने लाता है। वे कॉमेडी, ट्रेजेडी और अलग अलग किरदार निभाने का दावा भी करती हैं। तो श्रोताओं, बहुत बात कर ली हमने इस गीत के बारे में, अब आप सोच रहे होंगे वो कौन सा गीत है। तो लीजिए, आपके सभी के रेडियो सेट पर भेज रहे हैं इस प्यारे से गीत को, सुनिए नाकाबंदी फिल्म का ये गीत आशा भोसले की आवाज़ में।

श्रोताओं, उम्मीद करती हूँ आपको ये गीत पसंद आया होगा। और श्रोताओं, गीत में श्रीदेवी की बात हो रही है और श्रीदेवी ने अभिनय किया और इतनी सारी हीरोइंस के बारे में बात भी की है और अपनी अदाकारी के बारे में भी उन्होंने बात की है। थोड़ी सी बात करेंगे श्रीदेवी को लेकर। श्रीदेवी अभिनय की दुनिया का एक चमकता हुआ सितारा थी। उनकी मुस्कान और अदाकारी ने करोड़ों दिलों को जीता। नृत्य हो या भावनात्मक अभिनय, हर अंदाज में बेमिसाल थी। आज भी उनकी यादें और उनकी फिल्में दर्शकों के दिलों में जिंदा हैं। बिल्कुल श्रोताओं, और आप सभी को बता दें कि आप सभी इस समय जुड़े हुए हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 MHz पर। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला इस समय आप सभी सुन रहे श्रोताओं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। कार्यक्रम में आगे हम चलेंगे और बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। छोटे से ब्रेक के बाद फिर से लौट कर हम आएंगे और इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे और आपके साथ करेंगे खास बातचीत। तो श्रोताओं, यूँ ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 MHz पर श्रोताओ आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला आप सभी सुन रहे हैं आज आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। तो श्रोताओ चलते हैं आगे कार्यक्रम में और बढ़ते हैं आगे की बातों की ओर। अगस्त का महीना जो है वो आते ही जैसे मौसम के साथ साथ बाजारों का मिजाज भी बदल जाता है। कहीं रंग बिरंगी चूड़ियों की खनक, कहीं राखियों की सजावट और कहीं मिठाइयों की खुशबू और दुकानों पर बढ़ती भीड़ देखकर लगता है कि त्यौहार सचमुच हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। तो श्रोताओं आजकल आप बाज़ार देख रहे होंगे, बहुत सजे धजे हैं और बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर ख़रीदारी कर रहे हैं, क्योंकि एक तो त्योहारों का ये महीना है, ऊपर से आने वाली राखी जो है वो भी बाज़ारों को सजाए हुए है। तो श्रोताओं इस महीने में कहीं ना कहीं जब राखी आती है तो भाई बहन का प्यार भी हमें याद आता है और बहनें अपने भाइयों के लिए सुंदर सुंदर राखियां भी खरीदती हैं। त्यौहार की सबसे खूबसूरत बात यह होती है कि हमें अपनों के करीब लाते हैं, लेकिन त्यौहारों की खुशी के बीच एक और चीज़ है जिसका ख्याल हमें रखना बहुत ज़रूरी है श्रोताओं, वो है हमारा बजट। बिल्कुल, क्योंकि बाज़ार में जाते ही मन करता है ये भी ले लें, वो भी ले लें, ये भी अच्छा लग रहा है, ये बच्चों के लिए ले लें, ये बड़ों के लिए ले लें, ये घर की सजावट के लिए ले लें। और फिर महीने के आखिरी में बटुआ धीरे से हमसे पूछता है, भाई साहब मेरा भी तो ख्याल रख लिया करो। बिल्कुल, और जब हम खाली बटुए को देखते हैं तो कहीं ना कहीं दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है कि पैसे तो ख़त्म हो गए। लेकिन श्रोताओं आजकल बटुओं का रिवाज भी कम हो गया है या ख़त्म ही हो गया है, आप सभी जानते हैं, क्योंकि आजकल हमारे हाथ में एक मोबाइल फ़ोन है जिसमें सब कुछ है। आजकल बटुआ भी हमारा इस मोबाइल फ़ोन के बीच में ही चला गया है। जहाँ भी हम कहीं कुछ ख़रीदने के लिए खड़े होते हैं तो वहाँ पर हम अपने मोबाइल से ही जो है वो पेमेंट करते हैं। खैर इस पर भी हम बात करेंगे श्रोताओं, लेकिन फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं बजट की और बजट पर बात ज़रूर करेंगे। राखी की बात की है तो आने वाले इस त्यौहार की हमारी सभी महिलाओं को, श्रोता महिलाएं जो हैं, बहनें जो हैं, उन सभी को आने वाले त्यौहार, आने वाले पर्व रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं श्रोताओं और आपको सुनवाते हैं पहले ये गीत, और इस गीत के बाद हम ज़रूर बजट पर भी आएंगे, बात करेंगे इस खास विषय पर। आओ प्यार करें इस फिल्म का गीत श्रोताओं अब आप सभी सुनेंगे कुमार शानू की आवाज़ में।

इस प्यारे से गीत को आपने अभी सुना श्रोताओं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला पर। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला इस समय आप सभी सुन रहे हैं श्रोताओं। और इस कार्यक्रम का समय जैसा कि आप सभी जानते हैं सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का रहता है। और इस गीत से पहले हमने बात शुरू की थी आजकल बाजारों की रौनक और साथ में बजट। तो श्रोताओं सबसे पहले तो त्योहारों की ख़रीदारी की एक छोटी सी सूची हमें बना लेनी चाहिए। जो ज़रूरी है उसे पहले रखें और जो सिर्फ देखकर अच्छा लग रहा है उसे थोड़ी देर के लिए टाल दें। साथ ही श्रोताओं बजट पहले से तय करें, खरीदारी के बाद बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने तय कर लिया कि इस त्यौहार में मैंने इतना खर्चा करना है तो कोशिश करें कि उसी सीमा में रहकर आप खरीदारी पूरी कर लें। साथ ही श्रोताओं त्यौहार खुशी बांटने का नाम है, दिखावे का बिल्कुल भी नहीं है। महंगे कपड़े, बड़ी खरीदारी या बहुत ज़्यादा खर्च करके ही त्यौहार खास नहीं बनता। घर में बने पकवान, परिवार के साथ बैठकर हंसी मजाक और अपनों का साथ भी त्योहारों को यादगार बना सकता है, बिल्कुल। लेकिन हम जब बाज़ार में जाते हैं बाज़ार की चमक दमक देखकर हम कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि सामान को देखकर उसकी ओर खींचे चले जाते हैं। सोच कर गए होते हैं हम 2 सामान लेने के, लेकिन 4 सामान हम साथ में लेकर आते हैं। तो हमें थोड़ा सा अपना मन भी मारना पड़ेगा और थोड़ा सा अपने बजट पर भी ध्यान देना पड़ेगा, तभी हम अपने घर के बाकी के खर्चों को भी ठीक ढंग से चला सकते हैं। कार्यक्रम में इस विषय पर और भी बातें श्रोताओं आपके साथ करनी है, लेकिन फिर से आपको लिए चलना है पहले एक और गीत की ओर। तो लीजिए इस गीत को सुनिए 1942 अ लव स्टोरी फिल्म से कुमार शानू की आवाज़ में।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला आप सभी सुन रहे हैं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। और इस प्यारे से गीत के बाद श्रोताओं कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे। और इस गीत के दौरान हमने बात की थी कि आजकल कहीं ना कहीं हमारे पर्स की जगह जो है वो भी मोबाइल फ़ोन ने ले ली है। आजकल बाजार जाइए, चाय पीजिए या छोटी मोटी कोई ख़रीदारी भी करनी हो तो पर्स से ज़्यादा हमें ज़रूरत मोबाइल की महसूस होती है। गूगल पे, फ़ोन पे और दूसरे डिजिटल पेमेंट ने पैसे रखना और भुगतान करना बेहद आसान बना दिया है। लेकिन श्रोताओं साथ ही सवाल ये भी उठता है कि क्या ये बदलाव अच्छा है या बुरा। अच्छा इसलिए है कि जेब में ज़्यादा नगद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, भारी भरकम हमें बैग नहीं लेकर जाने पड़ते हैं। एक मोबाइल भी अगर हमारे पास है तो मान लीजिए कि आपके पास सब कुछ है, भुगतान करना बहुत इजी हो गया है और लेन देन का रिकॉर्ड भी मोबाइल में रहता है। लेकिन सुविधा के साथ सावधानी भी ज़रूरी है श्रोताओं। UPI पिन, OTP या बैंक की जानकारी किसी के साथ भी हमें साझा नहीं करनी है। अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचना है और भुगतान करते समय हमेशा सामने वाले का नाम और रकम जांच लेनी चाहिए। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें खरीदारी करनी चाहिए। तो श्रोताओं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आप तक पहुँचाते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा गीत जिसे हम लेकर आए हैं लव फिल्म से। आवाजें दी है SP बाला सुब्रमण्यम और चित्रा ने।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी जुड़े हुए हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला इस समय आप सभी सुन रहे हैं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। और श्रोताओं, इस गीत के पहले हमने बात छेड़ी थी बजट को लेकर। तो श्रोताओं, आजकल जैसे कि हम लोग मोबाइल फ़ोन पर भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और बहुत सारे ऐसे ऑफ़र्स और डिस्काउंट आते हैं जिन्हें देखकर हम कुछ ना कुछ ख़रीदने बैठ जाते हैं, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं भी होती। कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि दिल है कि मानता नहीं, और हम वो चीज़ ले लेते हैं। ऐसा करते करते जब महीने का आखिरी समय आता है, आखिरी हफ्ता आता है, तब हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हमने अपना बजट जो है वो हिला दिया है। तो उस समय श्रोताओं, हमें सोचना चाहिए क्या ज़रूरी है क्या नहीं है। हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उन पर ध्यान देना चाहिए और इन ऑफ़र्स और डिस्काउंट को देखकर अपने आप को थोड़ा सा संभाल लेना चाहिए। खैर, ये बात कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी हमें अपने बजट को सोच कर ही, देख कर ही कोई भी फैसला लेना चाहिए। साथ ही बात करेंगे बच्चों के लिए, तो बच्चों को भी छोटी छोटी बचत करना हमें ज़रूर सिखाना चाहिए। कैसे वो अपने पॉकेट मनी को किसी एक अपने बॉक्स में रख सकते हैं और जब बड़ा अमाउंट इकट्ठा होता है तो उन्हें हम कह सकते हैं कि अपनी ज़रूरत का कोई भी सामान वो ले सकते हैं। ऐसा करने से बच्चों में भी बचत करने की एक आदत बनती है। और कार्यक्रम में अब हम आगे बढ़ेंगे श्रोताओं, आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। लीजिए, सुनिए इस गीत को आप सभी आपके अपने रेडियो सेट पर।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में अभी आपने सुना प्यार में कभी कभी फिल्म का ये गीत शान की आवाज़ में। और आप सभी इस समय जुड़े हुए हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला सुन रहे हैं श्रोताओं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। कार्यक्रम में श्रोताओं मनोरंजन के साथ साथ आप तक पहुंचाई जाती हैं जानकारियां। और अब हम आगे बढ़ेंगे जानकारियों की ओर। सड़क हादसों पर अंकुश लगाने और यातायात व्यवस्था को सुनिश्चित बनाने के लिए जिला कांगड़ा पुलिस ने यातायात नियमों के पालन को लेकर विशेष अभियान शुरू किया है। हालांकि इसमें सबसे पहले जिला भर में बाहरी राज्यों से आने वाले दो पहिया वाहन चालकों ने खुलेआम ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाना जारी रखा था। लगातार ट्रिपल राइडिंग, बिना हेलमेट और प्रेशर हॉर्न के साथ किसी भी लोकल एरिया में घुसने से लोगों की जान आफत में डाल दी थी। अभियान के तहत पुलिस दोपहिया वाहन पर चालक और पीछे बैठने वाले दोनों के हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने, वैध जो दस्तावेज है वो रखने समेत अन्य नियमों की जांच कर रहे हैं। अभियान के दौरान श्रोताओं, गुरुवार को यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के कुल 84 चालान किए गए हैं। तो श्रोताओं, आप सभी जो भी धर्मशाला में रहते हैं उन्होंने भी ये चीज़ देखी होगी कि बाहर से आने वाले जो मंदिरों में आते हैं वो दो पहिया वाहन पर आते हैं और बहुत स्पीड से अपनी बाइक्स को लेकर जाते हैं। ऐसे में कई हादसे हो सकते हैं। तो कहते हैं ना कि जो नियम बनाए जाते हैं वो हमारे लिए ही बनाए जाते हैं, कानून जो बनाए जाते हैं वो हमारे लिए ही बनाए जाते हैं। इसलिए नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है, चाहे हम लोकल हों चाहे हम बाहर से आए हुए पर्यटक ही क्यों ना हों। हमारी सुरक्षा ज़रूरी है, साथ ही रोड पर चलने वाले अन्य लोगों की सुरक्षा का भी ध्यान हमें रखना चाहिए। तो इस जानकारी के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे कार्यक्रम में। और गीतों का ये जो सिलसिला चला हुआ है इसे बिल्कुल भी नहीं रोकते हुए एक और प्यारा सा गीत आप तक पहुंचाएंगे। तो लीजिए सुनिए इस प्यारे से गीत को जिसे हम लेकर आए हैं सदमा फिल्म से। आवाज़ दी है गीत को सुरेश वाडकर ने।

91.2 MHz पर श्रोताओं आप सभी ट्यून इन हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत। और श्रोताओं, आज आप सभी सोशल मीडिया के साथ जुड़े रहते हैं, खबरों के साथ जुड़े रहते हैं और आपने भी इस खबर को सुना होगा जिसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। एक 6 साल का बच्चा, उम्र इतनी कि उसे डांट से ज़्यादा प्यार की ज़रूरत होती है, सज़ा से ज़्यादा समझाने की ज़रूरत होती है। विशाखापट्टनम की हालिया घटना ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। स्कूल में एक 6 वर्षीय बच्चे की मौत हुई और परिवार की ओर से शिक्षक द्वारा कथित मारपीट का आरोप लगाया गया है। मामले की जाँच जारी है, इसलिए अंतिम निष्कर्ष जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन इस घटना ने एक बहुत बड़ा सवाल ज़रूर हमारे सामने रख दिया है। क्या होमवर्क, परीक्षा या अनुशासन के नाम पर किसी बच्चे को डराना या शारीरिक सज़ा देना कभी सही हो सकता है? स्कूल बच्चे के लिए डर की जगह नहीं, सीखने और सुरक्षित महसूस करने की जगह होनी चाहिए। साथ ही श्रोताओं, कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षकों से भी एक विनम्र अपील रहेगी। अगर बच्चा होमवर्क नहीं कर पाया, पढ़ाई में पीछे है या गलती कर बैठा है तो उसे मारने या डराने के बजाय उसकी परेशानी समझिए। शायद वह किसी बात से परेशान हो, शायद उसे विषय समझ में ना आया हो या शायद उसे थोड़ी सी ज़्यादा मदद की ज़रूरत हो। और स्कूल प्रबंधन से भी यही आग्रह है कि बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। शिक्षकों को सकारात्मक और अहिंसक अनुशासन के तरीके दिए जाएं और बच्चों की शिकायतों को गंभीरता से भी सुना जाए। साथ ही माता पिता से भी हम एक बात कहेंगे, अपने बच्चे से रोज़ पूछिए आज स्कूल में दिन कैसा रहा। सिर्फ ये नहीं कि होमवर्क हुआ या नहीं, क्योंकि बच्चे कई बार शब्दों से नहीं अपने व्यवहार में बताते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। तो श्रोताओं, ये जो घटनाएं हैं कहीं ना कहीं हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि हमें अपने आप को बदलना होगा, अपने नियम, अपनी जो दिनचर्या है, जो हमारा बिहेवियर है, उसे बदलना होगा। जैसे हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, उसी तरह से बच्चों का भी मनोबल सेम नहीं होता, बच्चों की सोचने की समझने की शक्ति भी सेम नहीं होती। तो श्रोताओं, बात पर गौर ज़रूर कीजिएगा। और इस बात के बाद कार्यक्रम में अब फिर से आगे बढ़ते हैं और आपको कार्यक्रम का अगला गीत सुनवाते हैं, जिसे हम लेकर आए हैं कॉलेज गर्ल फिल्म से। आवाज़ है किशोर कुमार की।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी जुड़े हुए हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। इस समय आप सभी सुन रहे हैं श्रोताओं, और बहुत सारे हमारे ऐसे श्रोता भी होते हैं जो नियमित रेडियो के साथ जुड़े रहते हैं और हमारी हर एक बात को सुनते हैं। ऐसे ही एक मैसेज जो है वो हमें आया है इंदु जी का, जो कि कह रही हैं कि हमारी बात को लेकर, जो भी इस गीत से पहले हमने बात की थी स्कूल को लेकर उस बच्चे की घटना के बारे में, तो उनका ये कहना है कि कई बार हमारे बच्चों में भी कोई दिक्कत हो सकती है, जैसे कि कोई बीमारी हो सकती है या बच्चा ठीक फील ना कर रहा हो या उस बच्चे का दिल भी कमज़ोर हो सकता है। तो ऐसे में उनका ये कहना है कि एज अ पेरेंट्स उन्हें भी बच्चों के स्कूल में उनके टीचर्स को ये सब बातें बता देनी चाहिए कि हमारे बच्चों में कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, ताकि टीचर जो है वो अलर्ट हो जाए। इंदु जी की बात बिल्कुल सही है, और उन्होंने अपना एक पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो भी साझा किया है कि उन्होंने भी एक बार अपने स्कूल के, मतलब अपने बच्चे के स्कूल में जाकर कुछ प्रॉब्लम बताई थी, तो टीचर ने वो बात अनसुनी कर दी और उसके बाद बच्चा थोड़ा सा परेशान हो गया या दिक्कत में आ गया। तो इन सब चीज़ों से श्रोताओं, देखिए, ये कहते हैं कि अगर कोई काम प्यार से बनता हो तो उसे प्यार से ही बना लेना चाहिए, उसमें मार कहीं भी नहीं आनी चाहिए। वो समय अलग था जब हमारे समय में बहुत सारा स्कूलों में मारते भी थे, डंडे भी पड़ते थे, और तब के बच्चे जो थे वो थोड़े से ये कह सकते हैं कि दिल के मजबूत हो सकते थे और उन्हें उन चीज़ों की आदत थी। लेकिन आजकल का माहौल ऐसा है कि घर में हम अपने बच्चों को कभी भी हाथ नहीं उठाते हैं या ना तो डराते हैं, और ऐसे माहौल में पला बड़ा बच्चा जब स्कूल जाता है, स्कूल के माहौल में आता है, और कहीं उसे थोड़ी सी भी ऊंची सी आवाज़ में बोल दिया जाए तो उसका दिल डर जाता है या वो सहम जाता है। तो हमारा तो ये मानना है कि बात कोई भी हो, स्कूल में अगर आप बच्चे को पढ़ाने भेज रहे हैं या शिक्षक बच्चे को पढ़ा रहे हैं और उसे वो लेसन, वो पाठ अगर याद नहीं हो रहा है, तो आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जिससे कि बच्चा समझ सकता हो, और अगर नहीं करके आ रहा है तो उसे मारने से वो काम नहीं बन पाएगा। जो काम प्यार से बन सकता है उसे प्यार से ही करना चाहिए। तो इंदु जी, आपकी ये बातें बहुत अच्छी थी और आपने भी एक सजेशन जो है हमारे कार्यक्रम के माध्यम से दिया, हमें अच्छा लगा। और आप भी अपने सुझाव जो है हमें दे सकते हैं श्रोताओं, अपने मैसेज हमें कर सकते हैं। तो कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं इन्हीं बातों के साथ, और आपको लिए चलते हैं एक और प्यारे से गीत की ओर। तो ये गीत हम लेकर आए हैं कल की आवाज़ फिल्म से, आवाज़ें दी हैं कुमार शानू और आशा भोसले ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला का समय जो कि रहता है सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का, और अब हमारी घड़ी जो है वो हमें इशारे कर रही है कि हमें लेनी पड़ेगी आपसे आज के कार्यक्रम में अनुमति। तो आज के कार्यक्रम को आपने ज़रूर सुना होगा और आपको पसंद भी आया होगा। आगे फिर किसी और कार्यक्रम में आपसे होगी मुलाकात। तो आज के लिए अपनी रेडी दोस्त सुषमा को दीजिए जाने की इजाज़त।

0: गोरिया
1: गोरिया आकर गोरिया गोरिया आकर आ
2: गोरिया
3: हटो हटो हटो हटो ले गोरिया।
4: प्लास्टिक गोरिया जैसे नादान जानवरों की जान ले सकता है। आप भी छोटी सी शुरुआत कीजिए, प्लास्टिक को अलग डस्टबिन में डाल के शुरू करें एक छोटी सी अच्छाई।
5: बैठिए मैडम बैठिए। अरे देखो इनको, इनकी नाक देखो, बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती है। देखो इसकी आंखें देखो। पता है तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब कौन सा गाना था, एक चतुर नार बड़ी होशियार, क्या गाना था वो।
6: अरे बेटो तू यहाँ क्या कर रहा है, और ये दोनों लड़कियां कौन है?
5: लेकिन भाई साहब आप कौन है?
6: जी मैं इसका बाप हूँ।
5: आप इसके बाप हूँ? महमूद का बेटा नहीं तू? अरे हास्य कलाकार महमूद, ये तेरे बाप का रोड नहीं है?
7: जी नहीं।
5: तो फिर बिना हेलमेट के दो लड़कियों को बिठा के रूम रूम करते शर्म नहीं आती तुम्हें?
1: चलान तो कटेगा भैया तेरे,
5: और अभी उतर के लेके जाओ। आपकी और सबकी सुरक्षा।

नमस्कार दोस्तों, प्रेम विश्वास और भाई बहन के अटूट रिश्ते का ये पावन पर्व रक्षाबंधन आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है। राखी का ये पवित्र धागा सिर्फ कलाई पर बंधा एक धागा नहीं, बल्कि प्यार, विश्वास, सुरक्षा और जीवन भर साथ निभाने के वचन का प्रतीक है।

रिश्तों में मिठास रहे, अपनों का साथ रहे। रिश्तों में मिठास रहे, अपनों का साथ रहे। हर कलाई पर सजे प्यार का धागा और हर चेहरे पर मुस्कान रहे। इन्हीं खूबसूरत भावनाओं के साथ रेडियो गुंजन धर्मशाला की ओर से आ रहे

0: नमस्ते भैया, कैसे हो भाभी जी?
1: अभी शादी का लहंगा सिलवाना था।
0: हाँ हाँ, बहुत सारे डिजाइन है, ये देखिए। कौन सा स्टाइल चाहिए आपको? ये देखिए, पिछले महीने मिश्रा जी की बेटी की शादी के लिए सिया था।
1: ये तो स्लीवलेस है, हमें फुल स्लीव्स वाला चाहिए। थोड़ा सिंपल दिखाइए।
0: सिंपल में तो फिर, अरे पर किसके लिए बनाना है?
1: चुन्नी के लिए।
0: ये अपनी चुन्नी?
1: हाँ, अच्छा रिश्ता मिला है।
0: बेटा चुन्नी, कितने साल के हो आप?
2: अगले महीने 12 साल की हो जाएगी। पंडित जी ने इसी इतवार का मुहूर्त निकाला है, तो हो तो जाएगा ना तब तक।
0: अच्छा, 12 साल की है तो आपको प्रॉब्लम नहीं है?
2: नहीं, क्यों?
0: और आपको भी प्रॉब्लम नहीं है? पर मुझे प्रॉब्लम है, मैं नहीं सीऊंगा।
2: चलो छोड़ो उसे, किसी और से सिलवा लेंगे।
0: अरे भैया जी, एक मिनट। अरे बिरजू, वो कौन सा नंबर है, निकलवा तो जरा।
3: मास्टर जी, टोल फ्री नंबर है 1098, कभी भी कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं।
0: ना हम सीएंगे, ना किसी को सीने देंगे।
4: जीवन की हर उलझन का हल मिलेगा मित्र, बस अपने मन को थोड़ा शांत करके देखो। जो तुम्हारा है वो कहीं नहीं जाएगा, और जो चला गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीखो, क्योंकि मुस्कान ही हर दर्द की सबसे बड़ी दवा है। भरोसा उस ईश्वर पर पूरा रखो, वो तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे लिए सही है। तुम्हारी सरलता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, और तुम्हारी खामोशी में ही ईश्वर का वास।
5: मम्मी जी क्या कह रहे हैं, बचपन में आपका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था?
6: हाँ, जब मैं 12 साल का था ना, तो मैं पापा को बिना बताए उनकी बाइक लेके घर से बाहर निकल गया, और मैं बाइक इतनी तेज चला रहा था कि सामने से एकदम से ट्रक आ गया। ट्रक को बचाने के चक्कर में मैंने एकदम से लेफ्ट ले लिया। जैसे ही लेफ्ट लिया, सामने से गाड़ी आ रही थी, और गाड़ी में जाके बाइक लगी, और बाइक पूरी खत्म हो गई।
5: बेबी, बाइक को छोड़ो, आप बताओ आप बचे थे कि नहीं?
6: तब तो बच गया था, लगता है अब नहीं बचूंगा।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 MHz पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

0: जानवरों की जान ले सकता है। आप भी छोटी सी शुरुआत कीजिए, प्लास्टिक को अलग डस्टबिन में डाल के शुरू करें एक छोटी सी अच्छाई।
1: बैठिए मैडम बैठिए, देखो इनको, इनकी नाक देखो, बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती है। देखो इसकी आंखें देखो, पता है तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब कौन सा गाना था, एक चतुर नार बड़ी होशियार है, क्या गाना था वो।
2: अरे बेटो तू यहाँ क्या कर रहा है, और ये दोनों लड़कियां कौन है?
1: देखिए भाई साहब आप कौन है?
2: जी मैं इसका बाप हूँ।
1: आप इसके बाप हूँ? महमूद का बेटा नहीं तू? अरे हास्य कलाकार महमूद, ये तेरे बाप का रोड नहीं है?
3: जी नहीं।
1: तो फिर बिना हेलमेट के दो लड़कियों को बिठा के रूम रूम करते शर्म नहीं आती तुम्हें?
4: तो कटेगा भैया तेरा,
1: और अभी उतर के लेके जाओ। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए कृपया ट्रैफिक नियम का पालन कीजिए, क्योंकि
3: रोड किसी के बाप का नहीं।
1: शाबाश, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा।
5: नमस्कार दोस्तों, प्रेम विश्वास और भाई बहन के अटूट रिश्ते का ये पावन पर्व रक्षाबंधन आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आ रहा है। राखी का ये पवित्र धागा सिर्फ कलाई पर बंधा एक धागा नहीं, बल्कि प्यार विश्वास सुरक्षा और जीवन भर साथ निभाने के वचन का प्रतीक है।

रिश्तों में मिठास रहे, अपनों का साथ रहे। रिश्तों में मिठास रहे, अपनों का साथ रहे। हर कलाई पर सजे प्यार का धागा और हर चेहरे पर मुस्कान रहे। इन्हीं खूबसूरत भावनाओं के साथ रेडियो वंचन धर्मशाला की ओर से।

0: नमस्ते भैया, कैसे हो भाभी जी?
1: अभी शादी का लहंगा सिलवाना था।
0: हाँ हाँ, बहुत सारे डिजाइन है, ये देखिए। कौन सा स्टाइल चाहिए आपको? ये देखिए, पिछले महीने मिश्रा जी की बेटी की शादी के लिए सिया था।
1: ये तो स्लीवलेस है, हमें फुल स्लीव्स वाला चाहिए। थोड़ा सिंपल दिखाइए।
0: सिंपल में तो फिर, अरे पर किसके लिए बनाना है?
1: चुन्नी के लिए।
0: ये अपनी चुन्नी?
1: हाँ, अच्छा रिश्ता मिला है।
0: बेटा चुन्नी, कितने साल के हो आप?
2: अगले महीने 12 साल की हो जाएगी। पंडित जी ने इसी इतवार का मुहूर्त निकाला है, तो हो तो जाएगा ना तब तक।
0: अच्छा, 12 साल की है तो आपको प्रॉब्लम नहीं है?
2: नहीं, क्यों?
0: और आपको भी प्रॉब्लम नहीं?

0: है, पर मुझे प्रॉब्लम है, मैं नहीं सीऊंगा।
1: चलो छोड़ो उसे, किसी और से सिलवा लेंगे।
0: अरे भैया जी एक मिनट, अरे बिरजू वो कौन सा नंबर है निकलवाओ तो जरा।
2: मास्टर जी टोल फ्री नंबर है 1098, कभी भी कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं।
0: ना हम सीएंगे ना किसी को सीने देंगे।
3: जीवन की हर उलझन का हल मिलेगा मित्र, बस अपने मन को थोड़ा शांत करके देखो। जो तुम्हारा है वो कहीं नहीं जाएगा, और जो चला गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीखो, क्योंकि मुस्कान ही हर दर्द की सबसे बड़ी दवा है। भरोसा उस ईश्वर पर पूरा रखो, वो तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे लिए सही है। तुम्हारी सरलता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, और तुम्हारी खामोशी में ही ईश्वर का वास।
4: मम्मी जी क्या कह रहे हैं, बचपन में आपका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था।
5: हाँ, जब मैं 12 साल का था ना, तो मैं पापा को बिना बताए उनकी बाइक लेके घर से बाहर निकल गया, और मैं बाइक इतनी तेज चला रहा था कि सामने से एकदम से ट्रक आ गया। ट्रक को बचाने के चक्कर में मैंने एकदम से लेफ्ट ले लिया, तो जैसे ही लेफ्ट लिया सामने से गाड़ी आ रही थी, और गाड़ी में जाके बाइक लगी और बाइक पूरी खत्म हो गई।
4: बेबी बाइक को छोड़ो, आप बताओ आप बचे थे कि नहीं।
5: तब तो बच गया था, लगता है अब नहीं बचूंगा।

0: नमस्कार दोस्तों, 91 दशमलव 2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और एक बार फिर से आप सभी के साथ जुड़ चुकी हूँ दोस्तों एक नई बातचीत के साथ। दोस्तों कार्यक्रम आप सभी सुनते हैं हर हफ्ते मन संवाद, एक प्रयास मन की ओर, जिसमें कि हम जानते हैं अपने मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ खास बातें, कुछ खास जानकारियां, जिससे कि हम बीमारियों से बचे रहें और हो सके तो अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा अगर चेंज करने की जरूरत है तो वो भी हम जरूर करें, क्योंकि उसका सीधा सीधा प्रभाव कहीं ना कहीं हमारी मानसिक हेल्थ पे पड़ता है। तो आप सभी इस प्यारी से कार्यक्रम में और इस बातचीत में जुड़ते हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका और
1: प्रियशी के साथ,
0: सभी के लिए मतलब कि खास जानकारियों के साथ जुड़ते हैं और बहुत ही खास मोमेंट रहता है ये हम सभी के लिए, आपके लिए भी मेरे लिए भी, कि मैं अपना इतना कीमती समय जो है ना वो हमारे लिए निकाल कर यहाँ तक आते हैं तो बहुत खास बात है। लेकिन हमें भी इस अहमियत को समझना है और इस समय की वैल्यू को समझना है। तो स्वागत है मैम आपका एक बार फिर से इस प्यारे से कार्यक्रम में।
1: थैंक यू सो मच रुचिका
0: जी। तो कैसे हैं मैम आप?
1: हम बहुत अच्छे हैं, आप कैसे?
0: बहुत अच्छे हैं। रूटीन कैसी चल रही है?
1: बहुत क्योटिक बट गुड
0: जी। तो मैम मैं थोड़ा सा पहले आपसे आपकी ना डेली रूटीन के बारे में जानने जा रही हूँ, क्योंकि जो आप क्लिनिक में अपने सेंटर में डिफरेंट डिफरेंट पेशेंट्स के साथ जो है मिलते हैं और डिफरेंट डिफरेंट चीजों को फेस करते हैं, तो थोड़ा सा हमारे दोस्तों को उस शेड्यूल उस रूटीन के बारे में बताइए।
1: देखिए मॉर्निंग में भी कुछ हमारे एक्चुअली ऑनलाइन प्रैक्टिस भी है और हमारी ऑफलाइन भी है, तो बेसिकली कुछ जो ऑनलाइन सेशंस होते हैं वो मॉर्निंग में भी हो जाते हैं अर्ली मॉर्निंग के दौरान, और क्लिनिक स्टार्ट होता है अराउंड 12, सो फ्रॉम 12 टू 6 पीएम आई एम एट क्लिनिक। अलग अलग लोग आते हैं, अलग अलग समस्याएं होती हैं, कुछ सेशंस बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाते हैं तो कुछ सेशंस काफी लाइट भी रहते हैं। हम हर एक क्लाइंट के साथ एक अलग प्रकार के साइकोलॉजिस्ट का रोल अदा करते हैं
0: जी।
1: किसी को बहुत हंसाते हैं तो किसी को बहुत रुलाते हैं
0: देख लीजिए दोस्तों कि कितना मुश्किल ये दौर है कि किसी को हंसाना है तो किसी को रुलाना भी है जी,
1: क्योंकि हमारे सारे भाव महत्वपूर्ण है रुचिका
0: जी।
1: तो कई बार ना हम सोसाइटी में रहते रहते हमारी कंडीशनिंग ऐसी हो जाती है कि जैसे कि हमारे एक इमोशन तो बहुत अच्छा और बाकी इमोशन तो बहुत खराब है, तो हम खुद ही अपने ही साथ अपनी भावनाओं के साथ बहुत ज्यादा मतभेद उत्पन्न कर देते हैं, जिसकी वजह से मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत असर पड़ता है। एंड बिलीव मी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मतलब जनता में आई थिंक मैक्सिमम लोग इस प्रकार के ही सोच रखते हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा चैलेंजेस आ जाते हैं, सिर्फ उनकी हेल्थ पर ही नहीं बट उनकी रिलेशनशिप्स में भी। लोगों के मानसिक स्वास्थ्य की जरूरतों के अनुसार उनको वो ऑफर किया जाता है थेरेपी सेशंस में, जो उनको हील करने में, उनको अपने जीवन में आगे बढ़ने में उनको सहायता देगा। बस ऐसे करते करते दिन बीत जाता है, शाम हो जाती है, घर जाते हैं तो तब भी कुछ ऑनलाइन सेशंस होते हैं तो बस रात के 9 बजे तक हमारा टाइम सारा सेशंस में जाता है
0: जी। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं अपने मानसिक स्वास्थ्य की, तो जैसे आप अलग अलग तरह के पेशेंट्स के साथ मिलते हैं, अलग अलग क्लाइंट्स के साथ मिलते हैं, तो खुद के मानसिक स्वास्थ्य को आप कैसे उस समय, क्योंकि अब आपने जैसे कहा कि कुछ क्लाइंट्स को हंसाना पड़ता है तो कुछ को रुलाना भी पड़ता है, उस तरह से आप उन्हें हैंडल करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम कई बार होता है दूसरों को देख के अपना मानसिक संतुलन जो है वो कहीं खो बैठते हैं, तो उसमें आप किस तरह से काम करते हैं?
1: देखिए जब हम लोगों की ट्रेनिंग होती है ना, उस दौरान ये सीखना, समझना और इम्प्लीमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हमें कब सामने वाले के शूज में जाना है और कब अपने शूज में वापस आना है
0: जी।
1: एक होता है कि अगर आप अपने शूज में ही बैठ के सामने वाले व्यक्ति को अंडरस्टैंड करने का प्रयास करेंगे तो आप उन्हें पूरी तरह नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उनकी जो परिस्थितियां हैं, उनका जो दर्द है, उनकी जो चोट है, आप उसे महसूस नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप जो भी जिस तरीके से भी अपने सेशन के फ्लो को एक रुख देना चाहेंगे वो उनके लिए उतना इफेक्टिव या एफिशियंट साबित नहीं होगा, इसलिए अपने जूते उतारना जरूरी है। जब हम सामने वाले के शूज में जाते हैं तब हम उनके पेन को, उनके दर्द को, उनके अकेलेपन को महसूस कर पाते हैं, समझ पाते हैं कि वो कौन सी कड़ियां हैं जो अभी भी बंद हैं, जिनको अनलॉक करना जरूरी है, वो कौन सी पीड़ाएं हैं जिनसे सबसे ज्यादा कष्ट पहुंच रहा है। तो कुछ इस प्रकार से जब आप उनकी परेशानियों का आभास ले पाते हैं तब अपने शूज में वापस दोबारा आना पड़ता है और उनके दुख को थोड़े डिस्टेंस के साथ देखना पड़ता है। ये एक कॉन्सेप्ट है जैसे डिटैचमेंट, आपने सुना होगा वर्ड, है ना
0: जी।
1: ये है वो वैराग्य जिसको आपको प्रैक्टिस करना होता है। सो दिस इज समथिंग दैट हेल्प्स मी अलॉट रुचिका
0: जी। तो कई बार ऐसा भी हुआ है आपके साथ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता रहता है जब हम किसी के साथ कोई केस डिस्कस कर रहे हैं या किसी की काउंसलिंग कुछ लंबे समय से कर रहे हैं लेकिन हमें उस पर कोई भी इम्प्रूवमेंट्स नहीं नजर आ रही है, कोई रिजल्ट्स जो है वो हमें नहीं दिख रहा है, तो गुस्सा आ जाता है कई बार। तो ऐसा भी आपके साथ कभी हुआ है?
1: गुस्सा तो नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो उसके पीछे भी तो कारण ही होगा
0: ना? होंगे जी,
1: है ना
0: जी।
1: और हर चीज जो एग्जिस्ट करती है उसका अपना कोई सिग्निफिकेंस होता है
0: जी।
1: सो अगर कोई व्यक्ति उसी जगह पर रुका हुआ है और वो उस जगह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो उसका अपना एक पर्पज है
0: जी,
1: और वो पर्पज जब तक फुलफिल नहीं होगा तब तक वो व्यक्ति वहां से आगे नहीं बढ़ेगा। जब तक उसको वहां उस परिस्थिति में रह के जो लेसन्स लेने हैं, जो लेसन्स को इम्प्लीमेंट करना है, जब तक वो नहीं करेगा तब तक वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगा
0: जी।
1: जिसके कारणवश ये सोचना कि अब तो फ्रस्ट्रेशन हो रही है या ये तो डिसअपॉइंटिंग है या गुस्सा आ रहा है, ये तो थोड़ी बेवकूफाना वाली बात हो जाएगी
0: जी बिल्कुल। तो मैं इस बात पे आपको इसलिए लेकर आ रही थी क्योंकि आज हमारी जो ये बातचीत रहने वाली है वो इसी से जुड़ी है। और कई बार क्या हम आज के समय में बहुत सारे ऐसे केसेस देख रहे हैं अपने आसपास, खास करके बच्चों को या युवाओं की हम बात करें तो बहुत जल्दी जो है हाइपर हो जाते हैं, बहुत जल्दी किसी भी बात को एकदम से रिएक्ट करना, एकदम से उस पर रिस्पॉन्स दे देना और उस वजह से जो है सिचुएशंस बनने के बजाय जो वो बिगड़ जाती है
1: जी।
0: तो सबसे पहले हम इसी पे बात करने वाले हैं कि ये गुस्सा होता क्या है और ये किस तरह से हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तो उससे पहले एक छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक लेंगे और हम अपने दोस्तों के साथ फिर से जुड़ेंगे।

0: तो दोस्तों इस छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं हमारे बहुत ही प्यारे से और स्वीट से मेहमान। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी इस प्यारी सी बातचीत, प्यारे से कार्यक्रम मन संवाद, एक प्रयास मन की ओर। तो जैसे कि दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि गुस्से की वजह आखिर क्या हो सकती है, या गुस्सा जब भी हमें आता है तो कोई ना कोई रीजंस जो है वो जरूर रहते हैं। तो वही आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर ये गुस्सा होता क्या है और कैसे हम इसे जो है कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे इस पे काम कर सकते हैं। मेन हम यही बोल सकते हैं कि इस पे किस तरह से काम कर सकते हैं।
1: सुरुचिका, गुस्सा सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड इमोशन है
0: जी।
1: हमारे जितने भी इमोशंस हैं, हमारा दुख, हमारा सुख, हमारे

0: हम सरप्राइज हो जाते हैं, हम शॉक हो जाते हैं, हमें गिल्ट होता है, हमें एक प्रकार से कभी हमें करुणा में महसूस होता है, तो कभी हमें ईर्ष्या होती है। तो ये सारे ही इमोशंस जो है ये बहुत ही क्लियर है अपने आप में, लेकिन गुस्सा एक ऐसा इमोशन है अनफॉर्चुनेटली जो सोसाइटी में सबसे ज्यादा देखा जाता है, सोसाइटी में सबसे ज्यादा नॉर्मलाइज्ड है, लेकिन सबसे ये सब होने के बावजूद ये सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड इमोशन है, जिसके कारणवश बहुत सारी परेशानियां उत्पन्न होती हैं, सिर्फ अपने जीवन में ही नहीं पर अपने रिश्तों में भी, और रिश्तों से बाकी के जीवन में भी परेशानियां लाता है
1: जी।
0: गुस्से को ऐसा मानिए कि ये एक प्रकार का मुखौटा है, ये एक ऐसा मुखौटा है जो सामने वाले को कुछ सर्टेन चीजें महसूस कराना चाहता है, जैसे कि मैं स्ट्रांग हूं, मैं डोमिनेट कर सकता हूं, क्योंकि हमारी आवाज ऊंची हो जाती है जब हम गुस्सा करते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, हमारे अंदर एक प्रकार की पावर महसूस होती है, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि मैं पावरफुल हूं। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स दैट एंगर वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट टू अदर पीपल इन आर सराउंडिंग, कि मैं कंट्रोल कर सकता हूं इस एनवायरमेंट को, मैं जो कह रहा हूं वैसा करो। अब ये है मुखौटा, ये है बाहर। हमारे भीतर या समझिए कि प्रकृति में जो भी चीज एग्जिस्ट करती है वो बैलेंस के आधार पे चलती है। अब इसी प्रकार से हमारे जो भावनाएं हैं वो भी बैलेंस को ही रीच आउट करती है। अब अगर हमारे बाहर, हमारे सराउंडिंग में, हमारे एक्सटर्नल बिहेवियर में ये गुस्सा इस प्रकार से आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ कंट्रोलिंग, इट मीन्स हमारे बिनीथ एज एन इस मास्क के बिनीथ या हमारे भीतर कुछ ऐसा है जहां पे व्यक्ति को लैक ऑफ कंट्रोल महसूस हो रहा है, जहां पर व्यक्ति को पावरलेस महसूस हो रहा है, जहां पर व्यक्ति को लग रहा है कि मेरे हाथ में अब कुछ भी नहीं है, वो हेल्पलेस महसूस कर रहा है, उसको लग रहा है कि अब तो सब कुछ गया। अब आप समझ रहे हैं कि डेफिनेटली एक्सटर्नल जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज कम्प्लीटली अपोजिट ऑफ व्हाट्स इनसाइड ऑफ अस। तो गुस्सा सिर्फ एक मास्क है, उसके भीतर ये सारे भावनाएं, ये कहां से आ रहे हैं, हेल्पलेसनेस कहां से आएगी, या एक प्रकार से पावरलेसनेस, या कुछ कंट्रोल नहीं है, अब सब कुछ खत्म हो गया, ये भावनाएं कहां से आएंगी, ये आएंगी डिसअपॉइंटमेंट से, ये आएंगी हर्ट से, ये आएंगी फियर से। तो जब जब इंसान फियरफुल स्टेट में होगा वो अपने फियर से फाइट करने के लिए गुस्से में आ सकता है। आपने देखा होगा जब जानवर डर जाता है, उनको लगता है कि मुझ पर अटैक किया जा रहा है, तो वो अपने डिफेंस में आप पर अटैक कर देते।
1: बिल्कुल,
0: यानी कि गुस्सा।
1: एग्जाम्पल के लिए हम सांप को ले सकते हैं, ऐसा कहा जाता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि उन पे अटैक करने वाले, इसलिए वो
0: अटैक
1: फायर करते हैं।
0: डेफिनेटली, तो एग्रेसिव बिहेवियर, वो वायलेंट बिहेवियर, वो हार्मफुल बिहेवियर के पीछे का क्या कारण है, फियर। सिमिलरली आप देखेंगे हर्ट, लेट्स से एक कपल है चीट कर दिया, बहुत हर्ट हुआ, इतना हर्ट हुआ, इतना हर्ट हुआ, इतना हर्ट हुआ कि व्यक्ति को बहुत गुस्सा आ गया, और गुस्से में उसने सामान तोड़ दिया, फोन तोड़ दिया, रिश्ता तो तोड़ा ही
1: जी।
0: तो दैट फॉर्म ऑफ एंगर इज अगेन इट्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट, फ्रॉम हर्ट। अब इसी प्रकार से अब लेट्स से पेरेंट एंड चाइल्ड है, बच्चे के मार्क्स कम आए, पेरेंट गॉट डिसअपॉइंटेड, पेरेंट्स क्या करेंगे, गुस्सा करेंगे।
1: गुस्सा
0: तो एज मास्क एक जैसा ही है, पर गुस्से उस मास्क के पीछे का जो कारण है वो अलग अलग
1: कुछ भी हो सकता है।
0: तो जब आपने पूछा ना कि गुस्सा क्या है, तो गुस्सा तो एक बहरूपिया है
1: जी।
0: आपको उस बहरूपिये के पीछे छुपे हुए भावनाओं को समझना है और उनको एक्सप्रेस करना है। जब ये कर पाता है व्यक्ति, तब वो अपने आप में बहुत सेल्फ अवेयर हो जाता है, उसे पता होता है कि उसको एग्जैक्टली किस क्षण पर क्या चाहिए, उसे क्या बुरा लगा है, उसे क्या ठेस पहुंची है, वो अपनी बात को किस प्रकार से सामने खूबसूरती से, सरलता से रख सकता है। कमिंग टू योर थर्ड क्वेश्चन, हाउ टू कंट्रोल इट। पहली चीज तो ये कि हम इसे कंट्रोल नहीं करेंगे। ये बहुत ही अचंभे की बात है कि कैसे हमें लगता है जैसे हमें हर चीज को कंट्रोल करना है
1: जी,
0: जबकि प्रकृति में कुछ भी कंट्रोल होने के लिए बना ही नहीं। प्रकृति में हर चीज फ्लोइंग स्टेट में है। आप नदी को देख लीजिए, ओपन है,
1: बिल्कुल।
0: समंदर को देख लीजिए, ओपन है। आकाश को देख लीजिए, बादलों को देख लीजिए, ओपन है। हवा को देख लीजिए, आप पकड़ के दिखाएं उसे। तो स्वच्छंद स्वतंत्रता प्रकृति का अपना आचरण है और हम प्रकृति से भिन्न नहीं। हमारी भावनाएं प्रकृति से भिन्न नहीं, ये सब एक है। इसलिए हमें ये समझना है, हमें अपने पर्सपेक्टिव में, अपने नजरिए में इस बदलाव को लाना है कि हमारी जो भावनाएं हैं हमें उन्हें अंडरस्टैंड करके उनको फ्लोइंग स्टेट में रखना है। हाँ, उनका ख्याल रखना जरूरी है वरना वो बुरा मान जाएंगे, लेकिन कंट्रोल करने की आवश्यकता तो बिल्कुल भी नहीं है।
1: लेकिन अक्सर कहा जाता है ना कि जब भी कोई बच्चा ही गुस्सा कर दे तो पेरेंट्स हो या फिर हम जो भी देख रहे होते हैं वो तो यही बोलते हैं भाई गुस्से पे कंट्रोल करना सीखो। अक्सर यही बात
0: आपको पता है रुचिका, हमें कंट्रोल करने का भाव कहाँ से आता है? जब हमें लगता है कि ये तो हमारे हाथ में ही नहीं है, जब हमें लगता है कि ये तो इतना अनसर्टेन है दैट वी डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट, जब हमें वो चीज समझ में नहीं आती तब हम सोचते हैं कि इसको कंट्रोल कर लेना चाहिए क्योंकि आगे क्या होगा पता नहीं और हम डर जाएंगे। एनीथिंग दैट इज अनसर्टेन विल लीड अस टू फील फियरफुल एंड फियर विल आस्क अस टू कंट्रोल एंड दैट विल लीड अस टू एंगर। तो ऐसा मानिए कि बच्चे का गुस्सा कंट्रोल करने के लिए अगर पेरेंट को गुस्सा ही करना पड़ रहा है
1: जी,
0: तो ये बहुत दुख की बात है और इस बात में कोई सेंस नहीं,
1: बिल्कुल सेंसलेस। जी तो दोस्तों बहुत ही ये गंभीर सी बात, और ये शब्द अक्सर हम सभी बोलते हैं, नॉर्मल सी बात है ये, क्योंकि अक्सर हम यही बोलते हैं कि गुस्से को कंट्रोल करना सीखो, गुस्सा आ रहा है तो उसे पहले दांतों से दबाया जाए, फिर खुद को वो किया जाए, मतलब कि कुछ भी लोग क्या करते हैं, बच्चे खास करके कोई दीवार से सर मार रहे हैं या पंच कर रहे हैं, मतलब किसी न किसी तरह से अगर हम किसी और पे नहीं उतार सकते तो ऐसी चीजों से हम गुस्से को कंट्रोल करने की जो हम अक्सर कहते हैं तो वही चीज हम करते हैं। तो अभी अभी आप सभी ने जाना दोस्तों कि गुस्से को कंट्रोल जो है वो हम नहीं कर सकते हैं, उसे मैनेज कर सकते हैं ना। तो मे बी इसके बारे में हम और भी जानेंगे, बहुत कुछ जानेंगे, क्योंकि ये बहुत खास बातचीत आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम मन संवाद के माध्यम से। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर से आप सभी के साथ जुड़ते हैं।

0: 291.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और बहुत ही खास ये बातचीत कार्यक्रम मन संवाद एक प्रयास मन की ओर से आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका और
1: प्रियशी को।
0: जी दोस्तों, तो आइए बढ़ते हैं अपनी बातचीत में आगे। और गुस्से की बात हम अक्सर करते हैं, लेकिन आज आप जान रहे हैं कि असल में गुस्सा क्या होता है और किस तरह से उसे हम मैनेज कर सकते हैं। तो मैम, अभी हमने जाना कि गुस्सा क्या होता है और ये भी जाना कि गुस्से को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, तो इसे हम मैनेज कर सकते हैं, तो किस किस तरह से मैनेज कर सकते हैं?
1: बिल्कुल, देखिए, जितना हम लोग गुस्से को अंडरस्टैंड करते हैं उतना ही ज्यादा गुस्सा हमारे लिए सरल होता जाता है और वो हमारे लिए उस पाथ ऑफ एक्सप्रेशन को भी और सरल बना देता है। देखिए, आप ऐसे मानिए कि गुस्सा एक छोटा सा बच्चा है जिसको अभी तक किसी ने ध्यान से समझा ही नहीं
0: जी।
1: किसी ने उसको गौर से सुना ही नहीं, उसकी नीड्स क्या हैं उनको फुलफिल किया ही नहीं। तो अगर एक ऐसा बच्चा हो जिसकी नीड्स निग्लेक्टेड है, जो अनसीन है, अनहर्ड है, सप्रेस्ड है, तो उसे कैसा महसूस होगा, है ना? खराब महसूस होगा। और वो अपनी तरफ से फिर पूरा प्रयास करेगा ये बताने के लिए कि देखो मैं हूं, आप मुझे इतना निग्लेक्ट नहीं कर सकते कि मेरी एग्जिस्टेंस आपके लिए मायने ही ना रखे, आप मुझे कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते, आप मुझे पसंद ना करें या पसंद करें वो एक अलग बात है, लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते। और उस चीज को आप तक कन्वे करने के लिए आपका ही गुस्सा आपके थ्रू, आपके माध्यम से, आपके व्यवहार में धीरे धीरे ऐसे उतरने लगेगा कि आपका जो एक सेंस ऑफ जजमेंट होता है वो बहुत पुअर होता चला जाएगा। सो देन योर एंगर विल चूज टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन अ डिस्ट्रक्टिव वे। इसीलिए आपने देखा होगा सोसाइटी में आजकल कितने ज्यादा डिस्ट्रक्शन वाले केसेस आ रहे हैं, जहां पे डोमेस्टिक वायलेंस से लेकर फिजिकल अब्यूज इस कदर किया जाता है जिसका कोई मतलब कोई लिमिट ही नहीं है। दैट्स कम्प्लीटली अनइमेजिनेबल। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने अपने ही गुस्से को इतना दबाया है। अब वो बोल रहा है आपसे, चीख चीख के बोल रहा है कि तुम्हें मुझे देखना पड़ेगा, तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकते, और तुम मुझसे दूर भागोगे तो मैं तुम्हारे व्यवहार के थ्रू तुम्हारे रिश्तों में ऐसा पॉइजन स्प्रेड करूंगा कि तुमको तब तो मुझे देखना ही पड़ेगा, और अगर तुम तब भी देखोगे तो कोई बात नहीं, बाकी लोग तो देखेंगे ही देखेंगे। So it becomes so observable and so measurable that how anger is impacting someone's life. तो अब हम बात करते हैं एक्सप्रेशन की।
0: जी
1: देखिए, एक्सप्रेस करने के अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहिए, जैसे कि नदी है, नदी फ्लो करेगी, अगर आप नदी पर बांध लगा देंगे तो क्या होगा एक समय के बाद?
0: वो तो फिर
1: वो बांध तोड़ के निकल
0: जाएंगी।
1: यस, और जब वो बांध तोड़ के निकलेगी तब हर जगह डिस्ट्रक्शन। इसी चीज को बचाने के लिए क्या जरूरी है? जरूरी ये है कि हम इस बात को समझ सकें कि हमारी नदी का प्रवाह कैसा है, हमारी नदी का स्वभाव कैसा है, उसकी नीड्स क्या है। अब किसी का प्रवाह ज्यादा तीव्र हो तो उसकी नीड्स अलग प्रकार की होंगी, तब हमें प्रोबेबली मल्टीपल चैनल्स बनाने पड़ेंगे जहां पे उसकी तीव्रता को थोड़ा कम किया जा सके और उसके फ्लो को मेंटेन करते हुए, मैनेज करते हुए ईजिली स्मूथली रिलीज किया जा सके विदाउट कॉजिंग एनी डिस्ट्रक्शन। तो दिस इज द वे कि वी हैव टू टेक मेजर्स विच आर कंस्ट्रक्टिव इन नेचर फॉर द इंडिविजुअल, और हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। सिमिलरली, अगर आपका नदी ऐसी है जो जिसकी तीव्रता नहीं है, कम है, जो शांत स्वभाव की, तो ऐसी नदी के लिए हमें बहुत ज्यादा
0: मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।
1: बस इतना ही ध्यान रखना होगा कि वो प्रवाह का रुख रुकना नहीं चाहिए। जैसी प्रवाह का रुख रुकेगा वैसे ही अंदर जो लाइफ है पानी के वो मरनी शुरू हो जाएगी
0: जी,
1: एंड देन इट विल कॉज प्रॉब्लम्स। और फिर वो एक वॉल्केनो की तरह बाढ़ लेकर जब वो फटेगी, आसपास सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको अपने स्वभाव को समझना है। जैसे जैसे आप अपने स्वभाव को समझेंगे, जानेंगे, आप समझ पाएंगे कि आपको किन चीजों की आवश्यकता और किन चीजों की आवश्यकता नहीं है। अब सोचिए, इस प्रकार की ये जो सेकंड एग्जांपल हमने दिया, अगर ये चीज वो व्यक्ति इम्प्लीमेंट करने लग जाए जिसका नदी का प्रवाह यानी कि गुस्सा, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो, तो उनके लिए ये चीज वो इफेक्टिव रिजल्ट्स नहीं दे पाएगी जो कि सेकंड टाइप ऑफ पीपल के लिए दे सकती है। सो दैट्स हाउ इट इज। जितना अंडरस्टैंड करेंगे एंगर को उतना बेटर होता है। अब एक्सप्रेस करने के दो तरीके, एक है कंस्ट्रक्टिव और एक है डिस्ट्रक्टिव. डिस्ट्रक्टिव हम सभी जानते हैं तो हम उसमें जाएंगे नहीं. बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव वेज ऑफ एक्सप्रेशन की एंगर के लिए. देखिए सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आपका प्राइमरी इमोशन क्या है, उस मास्क के बिनेद क्या इमोशन है. इज इट फियर, इज इट हर्ट, इज इट डिसअपॉइंटमेंट. आप समझ पाएंगे फिर कि आपको अपने फियर को एक्सप्रेस करना है कि हर्ट को एक्सप्रेस करना है कि डिसअपॉइंटमेंट को एक्सप्रेस करना है. जब हमें गुस्सा आता है तो हमारे फिजियोलॉजिकल लेवल पर भी बहुत सारी चीजें एक साथ काम कर रही होती हैं, जैसे कि हमारे ब्रीदिंग में चेंज आ जाएगा, हमारी हार्ट बीट में चेंज आ जाएगा, हमारे जो मसल्स हैं वो एकदम स्टिफ हो जाएंगी, टाइट हो जाएंगी, हमें अचानक से बहुत ज्यादा एनर्जी महसूस होगी. ऐसे लोग जिनका बीपी लो हो रहा है और अगर उनके आसपास के लोग उनकी मदद नहीं कर रहे और उनका सिरदर्द और बढ़ा रहे हैं, तब देखिए उनको जो गुस्सा आता है सारा बीपी लो एक साइड और सडनली उनको बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ जाता है कि तुम चुप हो जाओ. राइट. तो ये सब फिजियोलॉजिकल चेंजेस हमारे भीतर हो रहे हैं. अब ये डिपेंड करता है कि उस दौरान में हम क्या इंग्रेडिएंट्स, इट्स लाइक अगर एक यज्ञ चल रहा है और आप उसमें क्या आहुति डाल रहे हो, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स कि वो उस यज्ञ की अग्नि को बढ़ाएगा या कम करेगा. तो आप ऐसे सोचिए कि आपका जो गुस्सा है वो भी हवन कुंड के प्रकार ही है.
0: कम हो गई
1: आप हवन कुंड ऐसा मानिए.
0: तो वही आ गया ना, आग में घी डाल.
1: हाँ, अब आप आग में पानी डाल रहे हैं या आग में घी डाल रहे हैं, दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स. सो क्या चीजें हैं जो घी का काम करेंगी आपके लिए, आप उनकी एक लिस्ट बना ले और अपने आसपास जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कर दे कि देखिए जब हम गुस्से में हो तो ये घी का काम करेंगे, इनको मुझसे दूर रखें, दीज आर हाईली इन्फ्लेमेबल फॉर मी. और उन चीजों की भी लिस्ट बना ले जो पानी का काम करेंगे और वो भी शेयर कर दे, और अपने पास उन चीजों को रखें भी जो पानी का काम करने वाली है. यानी कि क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है. आपके लिए क्या चीज काम कर रही है, आपके गुस्से के लिए क्या चीज काम कर रही है, आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या चीज अच्छे से काम कर रही है और क्या नहीं कर रही है. ये दोनों में डिफरेंस पता होना रुचिका बहुत ज्यादा जरूरी है और ये जीवन को बहुत सरल बना देता है. अब जो चीजें पानी वाली है आप उनको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दे. मे बी गो आउट एंड रिलीज योर एनर्जी, क्योंकि गुस्सा जो है दैट इज एनर्जी. गुस्से में हमारे अंदर एनर्जी ज्यादा आ जाती है, तो आप अपना एक स्पेस ले लें, एक थोड़ा टाइम ले लें और आप उस एनर्जी को रिलीज कर दें. आप कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप भस्त्रिका कर सकते हैं या कपालभाति कर सकते हैं, वो आपके गुस्से को रिलीज करने में मदद करेंगी. उसके बाद आप अनुलोम विलोम से करते हुए भ्रामरी आ सकते हैं और भ्रामरी के बाद आप थोड़े समय के लिए बेली ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं. इस फ्लो में अगर आप ये चीजें करते हैं, गिवन दैट कि किसी प्रकार की लोगों को एलर्जी ना हो जिसमें ये प्रकार के प्राणायाम उन्हें इम्पैक्ट करते हो, जैसे प्रेगनेंसी हो गया या कोई सर्जरी हुई हो या फिर ईयर इन्फेक्शन हो, इन बातों का जरूर ध्यान रखेंगे हमारी ऑडियंस. तो अगर ये सब चीजें इस तरीके से फॉलो करी जाएंगी तो आप देखेंगे कि आपका गुस्सा शांत हो रहा है. गुस्से में ब्रीदिंग का बहुत बड़ा रोल होता है रुचिका, क्योंकि ब्रीदिंग अपने आप चेंज हो जाती है और ब्रीदिंग से हमारी सारी चीजें इंटरनली कनेक्टेड होती है. तो अगर हम प्राणायाम इसमें इन्वॉल्व करते हैं या एक्सरसाइज जिसमें ब्रीदिंग, रैपिड ब्रीदिंग की जरूरत पड़ती है, एक्सरसाइज इन्वॉल्व करते हैं या जैसे रनिंग हो गया, रनिंग इन्वॉल्व करते हैं, तो इस प्रकार की चीजें हमारे गुस्से को रिलीज होने में बहुत सहायता दे सकती है. देयर इज वन थिंग दैट आई प्रैक्टिस पर्सनली. आई गिव माई सेल्फ अ चैलेंज, अ मेंटल चैलेंज, कि या तो इस गुस्से को अभी गिव अप कर दो, इस गुस्से को कनेक्ट विद द प्राइमरी इमोशन राइट अवे, और अगर नहीं कर रहे हो तो तब तक के लिए पुशअप्स करते रहो. सो देयर इज अ फिजिकल चैलेंज, लाइक फिजिकल एक हमारे पास टास्क है, एंड देन देयर इज अ मेंटल टास्क. नाउ आई हैव टू पिक और से माय ईगो हमारे अहम को चूज करना है, व्हाट इज इट दैट आई वांट टू गिव अप फर्स्ट, द साइकोलॉजिकल चैलेंज और द
0: फिजिकल चैलेंज.
1: फिजिकल चैलेंज तो हम ऐसे मान लेते हैं कि हम तो इसको तो गिव अप करने का कोई ऑप्शन नहीं है. तो यानी कि आई विल कीप ऑन डूइंग पुशअप्स तब तक जब तक हमारा गुस्सा साइकोलॉजिकल लेवल से गिव अप ना हम करते, सरेंडर जब तक हम ना करते. एंड दिस इज समथिंग दैट एक्चुअली वर्क सो वेल फॉर मी. अब ऐसा जरूरी नहीं है कि सबके लिए काम करे, इसीलिए हमने बोला कि अपने आप को जानना, अपने आप के साथ बैठना, अपनी भावनाओं को अंडरस्टैंड करके अपने लिए खुद के लिए एक डीएस्केलेशन प्लान क्रिएट करना, ये बहुत जरूरी है। तो ये सभी को हमें लगता है करना चाहिए, और इस तरीके से आप डेफिनेटली अपने गुस्से को एक सही दिशा दे सकते हैं।
0: जी बिल्कुल सही कहा है मैम ने। तो जिस तरह से एक्सरसाइजेस मैम ने बताई, मैं ये पूछने भी वाली थी कि हाँ सभी लोग जो है उसको तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि कुछ को अपने अपने इश्यूज, हेल्थ इश्यूज भी रहते हैं।
1: तो डेफिनेटली देखिए, एक्सरसाइज नहीं है तो आप प्राणायाम कर सकते हैं।
0: जी बिल्कुल,
1: प्राणायाम नहीं है तो फिर आप जर्नलिंग कर सकते हैं। आप अपने गुस्से को लिख कर अपनी डायरी और पेन लीजिए और उसमें सब कुछ लिख दीजिए, और उसके बाद उस पेपर को फाड़ दीजिए, जला दीजिए, उड़ा दीजिए, इट इज कम्प्लीटली अप टू यू, बट सिंपली डिस्ट्रॉय दैट पीस ऑफ पेपर जहां पर आपने वो लिखा है। टॉक टू समबडी, शेयर अबाउट इट, रिलीज दैट एंगर एंड देन थिंक ऑफ इट, व्हाट वाज इट ट्राइंग टू कन्वे टू मी।
0: जी, और सबसे खास बात की ये सब करने के लिए हमें अपने आप को जानना
1: बहुत जरूरी है,
0: बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि हम जानते ही नहीं। हम अपने आस पड़ोस के लोगों का या अपने दुश्मनों के बारे में सब कुछ जानते होते हैं, लेकिन अपने अंदर क्या चल रहा है ये हम नहीं जान पाते हैं। हमारी अपनी क्या जो खुशियां हैं या अपने क्या शौक है, क्या टैलेंट हमारे अंदर है, या तो कई बार हम दूसरों के चलते उसे बाहर निकाल नहीं पाते हैं, किसी को बता नहीं पाते हैं, या तो हम खुद ही नहीं जानते हैं। तो इन चीजों के लिए, या कोई भी हमारी हेल्थ इश्यू है, हमारे मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी बात है, तो जब तक हम अपने आप के बारे में प्रॉपर तरीके से नहीं जानेंगे, खुद को समय नहीं देंगे, तब तक हम किसी भी काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इन बीमारियों से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं, या अपने गुस्से को समझना चाहते हैं, उस पर काम करना चाहते हैं, क्योंकि कई लोगों के साथ ऐसा होता है, उन्हें खुद को पता होता है कि भाई अगर मेरे को गुस्सा आ गया ना तो मेरा गुस्सा बहुत खराब है। वो पहले से ही अपने जो जान पहचान के होते हैं तो उन्हें बोल कर रखा होता है कि भाई जब मेरे को गुस्सा आ जाए तो या तो ऐसी कोई हरकत, जैसे आपने कहा ना कि वो घी डालने वाली बात ना करे, तो वो पहले से उन्होंने कन्वे किया होता है कि भाई उस समय मेरे से कोई भी जो है बात ना ही करे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि गुस्से में मैं क्या क्या बोल जाता हूँ, या क्या क्या मैं रिएक्शन जो है वो कर जाती हूँ या कर जाता हूँ। तो इसी तरह से हमें जो है मैनेज करना जो है अपने गुस्से को, तो उसके लिए छोटी छोटी सी बातों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। तो और भी हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है इस छोटे से प्यारे से ब्रेक के बाद। आप सभी सुन रहे हैं गुंजन रेडियो 91.2 एफएम, रुचिका और प्रियशी के साथ मन संवाद, एक प्रयास मन की ओर।
1: जी दोस्तों, तो हमारा जो ये प्रयास है ये भी आपके मन की ओर तक पहुंच रहा है, ये हम उम्मीद करते हैं। तो आइए इस बहुत ही खास बातचीत को जो है आज के कार्यक्रम में हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं और अपने गुस्से को मैनेज कर रहे हैं। तो मैम, हमने बहुत सारी बातें की गुस्से के बारे में, तो गुस्से को कैसे मैनेज करना, जब गुस्सा आ ही गया उसे कैसे मैनेज करना है, कैसे हम उसको एक प्रोसेस में ला सकते हैं, है ना। लेकिन ऐसा भी कुछ हो सकता है कि हमें गुस्सा आए ही ना, हम उस स्टेज तक पहुंचे ही ना कि हमें मैनेज करने की जरूरत पड़े। क्या ऐसा भी कोई टिप्स है या ऐसा कोई रूल है जिससे हम उससे बच सकते हैं?
0: देखिए रुचिका, गुस्सा वैसे अपने आप में एक बहुत ही साधारण सा भाव है। हमारे हम जब पैदा होते हैं तो हमारे पास हर प्रकार के भाव होते हैं और ये हमारे इंस्टिंक्चुअल डिसीजंस के लिए या फिर हमारे सर्वाइवल के लिए भी बहुत जरूरी होता है। इसलिए हमारा तो ये मानना है कि भावनाओं में कभी भी भेदभाव नहीं करने चाहिए। लेकिन जहां तक बात है कि क्या इससे हमारी सेहत को हार्म होता है, तो यस, डेफिनेटली हार्म होता है। इसलिए हम अपने ओर से जितना प्रयास कर सके अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए, वो हमें करना चाहिए हर संभव प्रयास के नजरिए से। अब जैसे आपने बोला कि क्या ऐसा हो सकता है कि हमें गुस्सा ना आए
1: जी,
0: तो हम ये बोलेंगे कि गुस्सा आना तो स्वाभाविक है, लेकिन उस गुस्से में कितना बहना है ये हमारे हाथों में है, और उस गुस्से से हम कितना इम्पैक्ट हो ये भी हमारे हाथों में है। यानी कि अगर हम चाहें तो अपनी अवेयरनेस के माध्यम से हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वो क्या चीजें हैं जिनसे हमें गुस्सा आता है। देखिए, प्रैक्टिकलिटी के आधार पर या रियलिटी के आधार पर ऐसा समझिए कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पर हर कुछ है, सब चीजें हैं, अच्छाई भी है और बुराई भी है, और ऐसी बहुत सी चीजें होंगी जिनसे हम डिसएग्री करते होंगे या जिनको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते होंगे। बट जीवन में इस प्रकार से तो हम जी नहीं सकते जहां पर ये चीजें हो ही ना कम्प्लीटली, क्योंकि जीवन तो ऑल और नन में काम नहीं करता, इट्स अ मिक्स ऑफ ऑल शेड्स। तो हमें हमारे अंदर उन सभी शेड्स के प्रति एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, और बस इतना ध्यान रखा जा सकता है कि अपने वातावरण में ऐसे लोग हों जो हमारी बातों को समझें, और अगर समझ ना पाए तो कम से कम उनका आदर रखें, उनकी इज्जत रखें। सिंपली देखा जाए तो अधिकांश लोगों को गुस्सा तब दो तीन एस्पेक्ट्स में आता है। अगर हम मेरी बात नहीं मान रहे हो तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनके अंदर लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज्यादा होती है और उनको अपने ऊपर काम करने की बहुत आवश्यकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें गुस्सा तब आता है जब कुछ वो इनजस्टिस होता हुआ देखते हैं, तो ऐसे लोगों के भीतर एक प्रकार की एक्सेप्टेंस और ओपननेस होनी भी जरूरी है, और ये समझना जरूरी है कि वो अपने आप को उस इनजस्टिस से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं, व्हाट दे कैन डू इज दे कैन क्रिएट हेल्दी बाउंड्रीज अराउंड देम। वो अपने वातावरण में एक स्क्रीनिंग करें और देखें कि ऐसे कौन से लोग हैं जो इस प्रकार के इनजस्टिस को ईदर टॉलरेट कर रहे हैं और बढ़ावा दे रहे हैं, या फिर खुद वो इनजस्टिस कर रहे हैं, और ऐसे लोगों से अपने आप को दूर रखें। इस प्रकार की हेल्दी बाउंड्री जब रहेगी तब इंसान अपने मानसिक स्वास्थ्य को अच्छे से प्रोटेक्ट भी कर पाएगा, अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर पाएगा, और जब इंसान खुद में हेल्दी रहेगा तभी वो इस प्रकार के इनजस्टिस के अगेंस्ट कुछ काम कर पाएगा, कुछ एक्शन ले पाएगा, कुछ मदद कर पाएगा सोसाइटी में। तो इसीलिए एक प्रकार से वो दूरी बना के रखना ऐसे लोगों से, ऐसे वातावरण से बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो कुछ यही चीजें हैं, और उसके अलावा अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखना, अच्छा खाना, अच्छी सोच, अपने आप को रिमाइंडर्स देना, एंकर्स सेट करना। एंकर्स ऐसे कि हमें कौन से इमोशन को ज्यादा ध्यान देना है हम उसको चुन सकें, हम ये चुन सकें कि हम अपने जीवन में प्रेम से ऑपरेट करें, लव से ऑपरेट करें, रादर देन फियर से या फिर इनसिक्योरिटी से या डिसअपॉइंटमेंट से।

0: नुकसान पहुंचेगा तो हम जानबूझकर उसके आगे नहीं जाते हैं। तो गुस्सा भी उसी तरह से समझ लीजिए कि उससे भी कोई ना कोई हार्म जो है हमारी जो है मानसिक हेल्थ को होगा या हमको होगा किसी, क्योंकि मानसिक हेल्थ भी हमारी, मानसिक स्वास्थ्य भी हमारा ही है, तो कहीं ना कहीं वो प्रभाव जो है पूरी तरह से होता है।
1: वो फिजिकल हेल्थ में जरूर कन्वर्ट होगा
0: जी।
1: जितने भी लोग हैं जो अपने गुस्से को दबा के रखते हैं उनके भीतर आप देखेंगे आज से कुछ सालों के बाद उनके भीतर बीमारियां आएंगी ही आएंगी
0: जी। तो अगर बीमारियों से बचना चाहते हैं तो ये सारी जो भी हम आप सभी तक बातें पहुंचाते हैं या जानकारियां पहुंचाते हैं, तो उम्मीद है दोस्तों कि आप इस पे जरूर काम करेंगे या करते होंगे। तो आज का ये बहुत ही खास जो सेशन था आप सभी के लिए, उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आया होगा। और दोस्तों इसी तरह से और भी ढेर सारी जानकारियां आप सभी तक पहुंचाएंगे स्टेप बाय स्टेप जी। दोस्तों तो इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ एक और खास बात आप सभी जानते ही हैं वैसे तो, लेकिन फिर से बता देते हैं कि अगर आपको लगता है दोस्तों कि आपको भी ऐसी कुछ बातों से फेस होना पड़ रहा है और शायद हमारी इस बातचीत में भी आपको ज्यादा अच्छे से समझ ना आया हो, कुछ बातें छूट गई हो, तो आप हमसे जो है वो कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और ना हो तो आप क्लिनिक भी आ सकते हैं। आप वहां सेंटर जाके भी अगर आपको काउंसलिंग सेशंस की जरूरत है या कोई भी प्रॉब्लम है उसका समाधान चाहिए तो आप आराम से वहां बैठ कर जो है अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो हमारा नंबर रहेगा
1: 9354134057।
0: और कहाँ पर आना होगा हमारे दोस्तों को?
1: वैराग्य माइंड एंड वेलनेस सेंटर, शीला गांव, धर्मशाला, कांगड़ा
0: जी। दोस्तों तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने नोट कर लिया है और ये बहुत ही खास बातों के साथ साथ आप सेशंस भी मैम से ले सकते हैं, तो आप सेंटर भी जा सकते हैं या फोन से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ आज का ये सेशन यही खत्म होता है। धन्यवाद।

0: मोर्चा के अध्यक्ष बिमल गुरंग के अनुसार बैठक में लंबे समय से चली आ रही स्थायी राजनीतिक समाधान की मांग पर चर्चा होने की संभावना है। बैठक के विस्तृत ब्यौरे की प्रतीक्षा है। इसके बाद आज गृहमंत्री सिलीगुड़ी कॉरिडोर को एक लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसमें बीएसएफ, एसएसबी, आईबी, पुलिस तथा केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुधार उनकी सरकार के लिए मजबूरी नहीं बल्कि प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार केवल नियम नहीं बदल रही बल्कि नीतियों में भी व्यापक बदलाव कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर संसाधनों को लेकर बढ़ता तनाव और दुनिया भर में अविश्वास नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के विकास के लिए 7 प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
1: मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, मैंने ऐसे 7 सेक्टर्स की बात की जिन पर भारत का आज बहुत ज्यादा फोकस है। और इसलिए भारत आज पॉलिसी लेवल पर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स कर रहा है ताकि हमारा फ्यूचर सुरक्षित हो, गवर्नेंस पर रिफॉर्म्स कर रहा है, ईज ऑफ लिविंग के लिए रिफॉर्म्स कर रहा है। ये रिफॉर्म्स हमारे लिए कंपल्सन नहीं है, ये हमारा कमिटमेंट है, ये हमारा कन्विक्शन है।
0: भारत की मेजबानी में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक होगी, जबकि कल ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी इसमें शामिल होंगी। युवा कार्य मंत्रियों की बैठक में युवा विकास, शिक्षा, कौशल, रोजगार, उद्यमिता जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत ने 22 भारतीय नाविकों के साथ 2 वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मामला सोमालिया के अधिकारियों के सामने उठाया है। भारतीय उच्चायोग के अनुसार सभी भारतीय नाविक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। भारत ने कहा है कि वो अपने नाविकों की सुरक्षा और कल्याण को सबसे ज्यादा महत्व देता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी कहा है कि भारत अशांत समुद्री क्षेत्रों में काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आगामी 57वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव इफ्फी की तैयारियों के लिए गठित समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की। इफ्फी इस वर्ष 20 से 28 नवंबर के बीच गोवा में आयोजित होगा। बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर मुरुगन ने युवा छात्रों, उभरते फिल्म निर्माताओं और भारतीय फिल्म उद्योग के गुमनाम नायकों के लिए अधिक अवसरों पर जोर दिया। सरकार ने आज 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरोनिरामाइन मैलेट और फिनाइल एफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर इन दवाओं पर स्पष्ट चेतावनी देना अनिवार्य किया है कि 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ये दवाएं नहीं दी जानी चाहिए। झारखंड के रामगढ़ जिले में मां छिन्नमस्तिका सीमेंट एंड स्टील पावर प्लांट में कल रात टरबाइन में तेज धमाके के बाद भीषण आग लग गई। इस हादसे में 3 इंजीनियरों की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। मृतकों की पहचान रांची के संजीव कुमार केसरी, बोकारो के विनीत महतो और गढ़वा के अभिषेक पांडे के रूप में हुई है। तेलंगाना के यादाद्री भुवनगिरी जिले के पोचमपल्ली मंडल में स्थित हेजलो लैब्स प्राइवेट लिमिटेड में देर रात बड़ा विस्फोट हुआ। हादसे में 2 कर्मचारियों की मौत हो गई जबकि 9 अन्य घायल हुए हैं। एक केमिकल रिएक्टर के अचानक फटने से औद्योगिक इकाई में जोरदार धमाका हुआ और भीषण आग लग गई। रिएक्टर फटने के कारणों की जांच की जा रही है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तेज वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने मछुआरों को सोमवार तक अरब सागर के पूर्व मध्य हिस्सों और बुधवार तक बंगाल की खाड़ी के पश्चिम मध्य हिस्सों में समुद्र में न जाने की सलाह दी है। भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने लुजान डायमंड लीग में रजत पदक जीत लिया है। उन्होंने 88.05 मीटर तक भाला फेंक कर दूसरा स्थान हासिल किया। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज एम्स्टरडैम में भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: गोरिया
1: गोरिया
2: गोरिया।
3: प्लास्टिक गोरिया जैसे नादान जानवरों की जान ले सकता है। आप भी छोटी सी शुरुआत कीजिए, प्लास्टिक को अलग डस्टबिन में डाल के शुरू करें एक छोटी सी अच्छाई।
4: बैठिए मैडम बैठिए। देखो इनको, इनकी नाक देखो, बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती है। देखो इसकी आंखें देखो। पता है तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब कौन सा गाना था, एक चतुर नार बड़ी होशियार है, क्या गाना था वो।
5: अरे बेटो तू यहाँ क्या कर रहा है, और ये दोनों लड़कियां कौन है?
4: देखिए भाई साहब आप कौन है?
5: जी मैं इसका बाप हूँ।
4: आप इसके बाप हूँ? महमूद का बेटा नहीं तू? अरे हास्य कलाकार महमूद, ये तेरे बाप का रोड नहीं है?
6: जी नहीं।
4: तो फिर बिना हेलमेट के दो लड़कियों को बिठा के रूम रूम करते शर्म नहीं आती तुम्हें?
7: चलान तो कटेगा भैया तेरा,
4: और अभी उतर के लेके जाओ। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए।

नमस्कार दोस्तों, प्रेम विश्वास और भाई बहन के अटूट रिश्ते का ये पावन पर्व रक्षाबंधन आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है। राखी का ये पवित्र धागा सिर्फ कलाई पर बंधा एक धागा नहीं, बल्कि प्यार, विश्वास, सुरक्षा और जीवन भर साथ निभाने के वचन का प्रतीक है।

रिश्तों में मिठास रहे, अपनों का साथ रहे। रिश्तों में मिठास रहे, अपनों का साथ रहे। हर कलाई पर सजे प्यार का धागा और हर चेहरे पर मुस्कान रहे। इन्हीं खूबसूरत भावनाओं के साथ रेडियो वंचन धर्मशाला की ओर से आ रहे

0: नमस्ते भैया, कैसे हो भाभी जी?
1: अभी शादी का लहंगा सिलवाना था।
0: हाँ हाँ, बहुत सारे डिजाइन है, ये देखिए। कौन सा स्टाइल चाहिए आपको? ये देखिए, पिछले महीने मिश्रा जी की बेटी की शादी के लिए सिया था।
1: ये तो स्लीवलेस है, हमें फुल स्लीव्स वाला चाहिए। थोड़ा सिंपल दिखाइए।
0: सिंपल में तो फिर, अरे पर किसके लिए बनाना है?
1: चुन्नी के लिए।
0: ये अपनी चुन्नी?
1: हाँ, अच्छा रिश्ता मिला है।
0: बेटा चुन्नी, कितने साल के हो आप?
2: अगले महीने 12 साल की हो जाएगी। पंडित जी ने इसी इतवार का मुहूर्त निकाला है, तो हो तो जाएगा ना तब तक।
0: अच्छा, 12 साल की है तो आपको प्रॉब्लम नहीं है?
2: नहीं, क्यों?
0: और आपको भी प्रॉब्लम नहीं है? पर मुझे प्रॉब्लम है, मैं नहीं सीऊंगा।
2: चलो छोड़ो उसे, किसी और से सिलवा लेंगे।
0: अरे भैया जी, एक मिनट। अरे बिरजू, वो कौन सा नंबर है, निकलवा तो जरा।
3: मास्टर जी, टोल फ्री नंबर है 1098, कभी भी कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं।
0: ना हम सीएंगे, ना किसी को सीने देंगे।
4: जीवन की हर उलझन का हल मिलेगा मित्र, बस अपने मन को थोड़ा शांत करके देखो, जो तुम्हारा

0: कहीं नहीं जाएगा, और जो चला गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीखो, क्योंकि मुस्कान ही हर दर्द की सबसे बड़ी दवा है। भरोसा उस ईश्वर पर पूरा रखो, वो तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे लिए सही है। तुम्हारी सरलता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, और तुम्हारी खामोशी में ही ईश्वर का वास।
1: मम्मी जी क्या कह रहे हैं, बचपन में आपका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था।
2: हाँ, जब मैं 12 साल का था ना, तो मैं पापा को बिना बताए उनकी बाइक लेके घर से बाहर निकल गया, और मैं बाइक इतनी तेज चला रहा था कि सामने से एकदम से ट्रक आ गया। ट्रक को बचाने के चक्कर में मैंने एकदम से लेफ्ट ले लिया, और जैसे ही लेफ्ट लिया सामने से गाड़ी आ रही थी, और गाड़ी में जाके बाइक लगी और बाइक पूरी खत्म हो गई।
1: बेबी बाइक को छोड़ो, आप बताओ आप बचे थे कि नहीं।
2: तब तो बच गया था, लगता है अब नहीं बचूंगा।

दोस्तों मैं हूं आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका, हाजिर हो गई हूं आप सभी के लिए कार्यक्रम लेकर पंजाबी गीतों का ये प्यारा सा सफर। बिल्कुल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से सफर में। तो आइए बढ़ते हैं इस सफर में आगे और आप सभी को लेकर चलते हैं एक खूबसूरत से पंजाबी म्यूजिकल ट्रैक के सफर में।

दोस्तों आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं पंजाबी गीतों का। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और कार्यक्रम में सुनाते हैं आप सभी को ये प्यारा सा पंजाबी गीत।

291.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन कार्यशाला और आप सभी पंजाबी गीतों का कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिता के साथ। तो आइए श्रोताओं बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं ये प्यारा सा म्यूजिकल ट्रैक।

दोस्तों, इस खूबसूरत से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम पंजाबी गीतों में। तो आइए फिर से लेकर चलते हैं आपको एक और प्यारे से गीत की तरफ। एंजॉय कीजिए ये खूबसूरत सा पंजाबी गीत।

दोस्तों आप सभी अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ जुड़े हुए हैं 91.2 MHz पर। और आज का ये कार्यक्रम यानी कि पंजाबी गीतों का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया बिल्कुल, और आप सभी एंजॉय कर रहे हैं पंजाबी गीतों का कार्यक्रम अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से लेकर चलते हैं आपको एक और पंजाबी गीत की तरफ। इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

91 दशमलव ओमेगा हर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना रेडियो डिवीजन धर्मशाला और आप सभी इस समय जुड़े हुए हैं पंजाबी गीतों के कार्यक्रम में। बिल्कुल कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं अगला ये प्यारा सा खूबसूरत सा पंजाबी गीत।

दोस्तों आप सभी एंजॉय कर रहे थे पंजाबी गीतों का ये प्यारा सा सफर अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने।

0: गोरिया
1: गोरिया
2: गोरिया।
3: प्लास्टिक गोरिया जैसे नादान जानवरों की जान ले सकता है। आप भी छोटी सी शुरुआत कीजिए, प्लास्टिक को अलग डस्टबिन में डाल के शुरू करें एक छोटी सी अच्छाई।
4: बैठिए मैडम बैठिए। देखो इनको, इनकी नाक देखो, बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती है। देखो इसकी आंखें देखो। पता है तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब कौन सा गाना था, एक चतुर नार बड़ी होशियार, क्या गाना था वो।

नमस्कार दोस्तों, प्रेम, विश्वास और भाई बहन के अटूट रिश्ते का ये पावन पर्व रक्षाबंधन आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है। राखी का ये पवित्र धागा सिर्फ कलाई पर बंधा एक धागा नहीं, बल्कि प्यार, विश्वास, सुरक्षा और जीवन भर साथ निभाने के वचन का प्रतीक है।

रिश्तों में मिठास रहे, अपनों का साथ रहे। रिश्तों में मिठास रहे, अपनों का साथ रहे। हर कलाई पर सजे प्यार का धागा और हर चेहरे पर मुस्कान रहे। इन्हीं खूबसूरत भावनाओं के साथ रेडियो गुंजन धर्मशाला की ओर से आ रहे।

0: नमस्ते भैया, कैसे हो भाभी जी?
1: अभी शादी का लहंगा सिलवाना था।
0: हाँ हाँ, बहुत सारे डिजाइन है, ये देखिए। कौन सा स्टाइल चाहिए आपको? ये देखिए, पिछले महीने मिश्रा जी की बेटी की शादी के लिए सिया था।
1: ये तो स्लीवलेस है, हमें फुल स्लीव्स वाला चाहिए। थोड़ा सिंपल दिखाइए।
0: सिंपल में तो फिर, अरे पर किसके लिए बनाना है?
1: चुन्नी के लिए।
0: ये अपनी चुन्नी?
1: हाँ, अच्छा रिश्ता मिला है।
0: बेटा चुन्नी, कितने साल के हो आप?
2: अगले महीने 12 साल की हो जाएगी। पंडित जी ने इसी इतवार का मुहूर्त निकाला है, तो हो तो जाएगा ना तब तक।
0: अच्छा, 12 साल की है तो आपको प्रॉब्लम नहीं है?
2: नहीं, क्यों?
0: और आपको भी प्रॉब्लम नहीं है? पर मुझे प्रॉब्लम है, मैं नहीं सीऊंगा।
2: चलो छोड़ो उसे, किसी और से सिलवा लेंगे।
0: अरे भैया जी, एक मिनट। अरे बिरजू, वो कौन सा नंबर है, निकलवाओ तो जरा।
3: मास्टर जी, टोल फ्री नंबर है 1098, कभी भी कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं।
0: ना हम सीएंगे, ना किसी को सीने देंगे।
4: जीवन की हर उलझन का हल मिलेगा मित्र, बस अपने मन को थोड़ा शांत करके देखो। जो तुम्हारा है वो कहीं नहीं जाएगा, और जो चला गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीखो, क्योंकि मुस्कान ही हर दर्द की सबसे बड़ी दवा है। भरोसा उस ईश्वर पर पूरा रखो, वो तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे लिए सही है। तुम्हारी सरलता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, और तुम्हारी खामोशी में ही ईश्वर का वास।
5: मम्मी जी क्या कह रहे हैं, बचपन में आपका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था?
2: हाँ,

0: 12 साल का था ना, तो मैं पापा को बिना बताए उनकी बाइक लेके घर से बाहर निकल गया। और मैं बाइक इतनी तेज चला रहा था कि सामने से एकदम से ट्रक आ गया। ट्रक को बचाने के चक्कर में मैंने एकदम से लेफ्ट ले लिया। जैसे ही लेफ्ट लिया, सामने से गाड़ी आ रही थी और गाड़ी में जाके बाइक लगी और बाइक पूरी खत्म हो
1: गई। बेबी बाइक को छोड़ो, आप बताओ आप बचे थे कि नहीं?
0: तब तो बच गया था, लगता है अब नहीं बचूंगा।

0: कानूनी दश मिलाप तो मेगाहर्ट्स पर ये तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कनेमे शशि हाजिर होई यो कार्यक्रम लेकरी माटी दी महक तशो तो माटी दी महक कार्यक्रम दे सफर च तो हाँ सारे दा ही शशि दा प्यार भरा स्वागत है, प्यार भरा नमस्ते है। तो जरूर तो हाँ मेरी जिड़ा शुरुआत है, शुरुआत करने जुड़ी होने न कने जिड़ा श्रोता न से यहाँ जो कॉल पर कॉल करना भी शुरू हुई हो न। अजकना जिड़ा टॉपिक है या अजकनी जिड़ा गलबात है से क्या रहनी है से तो हाँ तक पहुँचाई दे न। अजकनी जिड़ा हाँ दी गलबात रहनी है से रहनी है खुशी। बोलने वास्ते तो छोटा दिया लफ्ज़ है तेरे ऊपर यहाँ आज गलबात करनी है कने तो हाँ सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर चाह करने जुड़ सकते कने यहाँ करने गलबात जिड़े से जरूर करी सकते। पहले जेड़ा श्रोता है ना से यहाँ करने जुड़ चुके हो ना कर दें तीना करने गलबात। हेलो
1: नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुम्हारा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है ना?
1: हाँ जी हाँ जी वधिया। मैं बैजनाथ गरनोड़ से बोला था टिंकू
0: इंतजार करा दे थे कि कालू दिया
1: हां बस एक वे लंच होंदा फिर इसके बाद हां तैयारी कर दे कि भाई आज कौन दे गाना सुनना है।
0: जी गाने ही सुनने की गलबात भी सुननी है,
1: गलबात भी करनी है
0: जी। ता आज यहाँ टिंकू जी गलबात करा दे न खुशी। बोलने वास्ते तो छोटा दिया लफ्ज है ना जी। जी ता तुम्हें क्या लगता खुश रहना हाँ वास्ते कितना ज्यादा जरूरी है?
1: खुश रहना सच्ची वास्ते भी जरूरी है ते
0: सकारात्मक ही विचार जिड़े से अपने अंदर रख दे ना जी। जी ता टिंकू जी आज तुहा कुंदिया जिड़ा गीत ऐसे सुनना पसंद करके।
2: मैडम जी आज गाना सुना जेड़ा कांगड़े दा।
0: जी अच्छा जी ठंडी
2: ठंडी हवा जी। हां जी
0: जी जरूर कांगड़े दा जीना कदिया लगदा तुहांचो?
2: बहुत बढ़िया है मैडम जी, कांगड़िया है कोई जगह नहीं अपना हिमाचल से बड़ा बढ़िया है मैडम जी।
1: ये चाचा बोला रे मेरे चाचा ने संजय नान दा।
2: संजय बोला रे मैडम जी।
0: जी
2: मैडम जी बढ़िया टॉपिक दिमाग लगाया, खुश रहना चाहिदा, बढ़िया रहंदा जी, खुश सारे खुश रहने परिवार खुश रहंदा ठीक रहंदा जी, सब खुश होना चाहिदे, सब खुशी रहना चाहिदे
0: जी। जी
2: हां जी मैडम जी।
0: जी ता जरूर जेड़ा तुहांदी फरमाइश है जीना कांगड़े दा ये गीत तुहां तक पहुंचांदे न जी, जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहांदा।
2: जी बड़े सुंदर भी धन्यवाद जी।
0: जी ये तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। बाकी जेड़ा श्रोता न सभी यहाँ जो कॉल पर कॉल करा देन पर कार्यक्रम दे जेड़ा शुरुआत है से यहाँ कर देन इस प्यारे दे गीत कन्ने।

0: श्रोताओं, तुम सारे सुनिया ये प्यारा दे आ गीत, प्यारी दे शुरुआत, कहने प्यारी दे फरमाइश, तो जरूर तुम तक पहुँचाई जीना कांगड़े दा। इसी कन्ने अगले जेड़ा श्रोता न सह कन्ने जुड़ चुके न कर दें तिना कन्ने गल बात। हेलो हेलो
1: हेलो हेलो
0: हेलो
1: हेलो जी, नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहां दा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है ना जी? हाँ बिल्कुल ठीक ठाक है जी। तुह कुत्थू ते बोला दे, कने तुहां दा नां की है जी?
1: हाँ दाड़ी ते बोला दे मेघनाथ
0: जी। दाड़ी ते बोला दे मेघनाथ जी।
1: अच्छा तुहां त्यागा ते तुहाडी ड्यूटी लगी हो
0: जी? प्यागा ते
1: तड़के दे लगी है तुम्हारी ड्यूटी है ना
0: जी? रिकॉर्डेड प्रोग्राम होंगे ना जी?
1: अच्छा अच्छा
0: जी जी जी।
1: ता मैं भाई ना दा वाला
0: जी ता एक ना जी आज हम
1: भजना के भी
0: जी।
1: हां
0: जी ता जहां जेड़ा गलबात करा देन से करा देन की खुशी ऊपर हां जी, तो तुम्हें क्या लगता जिड़ा बोलने वास्ते तो ये छोटा दिया लफ्ज है खुशी ना जी?
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी।
1: खुशी तो अपने भी है ना
0: जी।
1: कोई ऐसे ऐसे काम करा जिससे सारे अच्छे बच्चे वाले भी खुश हो गए, अपना घर भी खुश रहे
0: जी,
1: है ना
0: जी जी।
1: कुछ ऐसा भी होता है जरा कोई गल ऐसी गलाए अखे उठे वाले दुखी कने घर
0: जी जी
1: है कि नहीं
0: जी?
1: ये तो अपने असली गप है
0: जी जी जी। तो दिखा हाँ कांगड़े च रहंदे तो तुम्हें क्या जेड़ा खास चीज़ लगती तिसते तुह जो खुशी मिलती कि अहाँ अपनी खुश नसीब समझते या अहाँ खुश होंगे, छोटी छोटी चीज़ जान ना जी? जी कने बोल चाल कने और क्या तुह जो प्यारा लगदा
1: ओए तुसी हवा वगैरह लेडी है बाकी अच्छी है थोड़ी है की सुना रहे
0: जी? हवा वगैरह चढ़े से तुह हुन गीत सुनिया फरमाइश सुनी ना जी, जीना कांगड़े दा
1: अच्छी है तुसी है ना के चले जा तो गांव पर वगैरह गर्मी
0: जी जी। उस साइड तो बड़ी ज्यादा गर्मी होंदी ना जी? जी मौसम दा कोई भरोसा नहीं होंदा, कालू बदली आंदा ना जी?
1: कालू बदली जाना
0: जी धर्मशाला दा तो मौसम दा
1: वे थोड़ा बर्फ पई जाना तो अपने आप ठंडा हो जाना मौसम
0: जी जी ठंडा हो जाना। पर पहले ते मौसम च तुहें क्या लगदा बड़ा बदलाव है दिखने च या क्या?
1: क्या तो बड़ा भारी है,
0: बड़ा ज्यादा है
1: क्या? बहुत ज्यादा
0: जी जी। तो जी जी
1: बिल्कुल खत्म हो गई
0: जी। अच्छा है जी,
1: वो भी खत्म हो गई है सब कुछ
0: जी जी।
1: तो कारण पक्के मकान बने हैं, जमीन वाला पानी सारा खत्म कर दिया
0: जी। तो कारण क्या वे तुम्हें क्या लगता?
1: पेड़ पौधे दे अंकल कुछ हो गई है, आबादी बढ़ी है ज्यादा हो गई
0: जी।
1: ये है
0: जी जी जी। बड़े अच्छे विचार तो हाँ श्रोता तक पहुँचाए कि पहले तो जड़ा मौसम है से बड़ा ही चेंज हुई है ना जी, बड़ा ही ज़्यादा। धर्मशाला दी यहाँ गाल करिए तो इतों का मौसम तो बड़ा ही ठंडा रहता था ना जी?
1: बड़ा ठंडा क्योंकि बाहर तो है नहीं, वहाँ धर्मशाला हो जाती है, बाहर तो जाती धर्मशाला होती
0: जी। निचली साइड तो बरखा नहीं होती
1: पर
0: जी जी, उपली साइड तो बरखा होंगी रहती ना, धर्मशाला वाली साइड तो होंगी रहती बरखा जी
1: अजकल बंद है धर्मशाला, सारा घर तक रुके हो यानी नहीं धर्मशाला नहीं हो
0: जी। धर्मशाला मतलब बंद हो ही होना जी जी। तो मेघना जी आज तू हाँ कुंदिया गीत सुनना पसंद करके श्रोता कोल जेड़े से जरूर डिसकनैक्टिड हो जेड़ा श्रोता दी गल जेड़े से थोड़ी देर अधूरी रही है। तो फिर ते अहां आज जेड़ा कार्यक्रम च गलबात करा देन से करा देन खुशी उपर तो जरूर इसे ही खुशी कने अहां अपने कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाते न कने तुहां तक अगली जेड़ा फरमाइश है से पहुँचाते न। अगली फरमाइश अहां जो आई वे कांगड़े ते कने तिना दा ना वे राधा कश्यप जी तो जरूर तिना तक अहां ये भजन पहुँचा देन तुहां सारे भी इंजॉय करा।

0: बोला दिन रेडियो गुंजन धर्मशाला ते कने तो हाँ सारी इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो तो शशि कने तो तो ये सफ़र तो तक लाइव चलिया तो हाँ सारे भी इस कार्यक्रम दे सफ़र जहाँ कने जुड़ी सकते कने यहाँ कने गल बात जड़े से ज़रूर करी सकते गल बात कने अगले जड़ा श्रोता न से ज़रूर जुड़ चुके न कर दें तिना कने गल बात। हेलो
1: हेलो नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहंदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है?
1: धन्यवाद जी, ज्यादा धन्यवाद जी। हां जी ठीक ठाक तो होला
0: जी? यहां बिल्कुल ठीक ठाक है जी।
1: अच्छा जी
0: जी, तब ना
1: धन्यवाद तो रेडियो गुंजन नो धन्यवाद
0: जी। तुहंदा भी बड़ा बड़ा धन्यवाद जी जुड़ने वास्ते। अपना जेड़ा नाम है कने कुथु दे रहने आले न जरूर दसी दिया जी।
1: माया बोला जी सुकड़े ते।
0: माया जी सुकड़े ते रेगुलर लिसनर जी जी। ता माया जी गल बात तो हां सुना दे कि नहीं सुना दे?
1: सुना दी मैं गल बात
0: जी। ता क्या तो हां क्या अपने जेड़ा विचार है न से श्रोता तक पहुंचाना चाहेंगे?
1: विचार जेड़े निकला कर दे जे।
0: हेलो जी।
1: टाइम निकलिया आ गया आज ठीक है नहीं आज गल कर ले या
0: जी।
1: और जत्ता
0: जी जी, तो हिंदी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं हो दी ना जी?
1: जी वो आज क्लियर नहीं हो दी
0: जी। उन ठीक है
1: उन ठीक है
0: जी जी।
1: अच्छा
0: जी, ता खुशी चाहे से यहाँ अपने हिमाचल दी गल करते न या कांगड़े दी गल करते न जी?
1: हाँ
0: जी। ता कई बार यहाँ पहाड़ां दी ओर दिख दे न या अपने जेड़ा नदी नाले न या पेड़ पौधे न सभी यहाँ जो
1: कुछ हरे भरे हरे भरे बड़े बड़े लगते
0: जी प्यारे लगते ना सभी
1: जी
0: जी जी। ता सभी यहाँ जो खुशी मिलती ना तीस भी जी। ता माया जी आज तुहा कुंदिया गीत जिड़े से सुनना पसंद करके
1: गीत सुना
0: जी। कुंदिया
1: गोरा शिव शिव जपदी
0: गोरा ओम शिवम शिवम जपदी जी। जरूर है गीत तुहां तक पहुंचान दें जी। जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहां दा।
1: बड़ा बड़ा धन्यवाद जी साड़ी आवाज सुनने ते थोड़ा भी बड़ा बड़ा धन्यवाद
0: जी। तो श्रोताओ तुहां सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने। तो हाँ सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर जहाँ कने जुड़ी सकते कने गल बात जड़े से करी सकते। तो नंबर जड़े से तो हाँ तक पहुँचाई दे न नंबर है 7081117091। नंबर तो हाँ तक पहुँचाई ते कने अगले जड़ा श्रोता न से यहाँ कने जुड़ चुके हैं न कर दें तिना कने भी गल बात। हेलो
2: जी मैडम नमस्ते
0: जी। नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक
2: ठाक
0: जी? राकेश जी नरवाणे।
2: हां देखो मैडम पुराने लिसनर हैं तुम्हारे
0: जी जी।
2: हां आदा तुम्हारा 4 बजे से लाइन दा मैं बस
3: खाना बैठे। हां
2: आज दुकान पे बैठे तो मजे ना छेड़छाड़ है ना छेड़छाड़ करनी अपनी चीजा ला तुआ घर खा अपनी चीजा भाफा यूरिया मैडम देना नी
0: जी जी।
2: यूरिया बंद होना चाहिए बीमारियां कारण खराब हो गई चीजा एक चीज करा मैडम जी बुरी भरी है बीमारियां मैडम जी हजे हाट वगैरा तो यूरिया खा दे लोग ऑर्गेनिक चीजा खाना मेहनत करा मैडम जी अंगलों ने मेहनत कर हाँ मैडम चार बजे उठा जा दिखा ला
0: जी
2: जी अच्छा करेले अपने घर घीए अपने घर काखी अपने घर और क्या ऑर्गेनिक चीजा बस हम खीरे लगने आले मैडम जी करेले लगा दे बिनिया लग गई घीए लगे कद्दू लगने आले
0: बड़ी
2: खुशी मैडम जी दिखा खीरे लगना जी चा लगना ना करेले खरे लगे मैडम जी बस नहीं होंगे दस बारह किलो तक खाई ना अपने ऑर्गेनिक हाँ नहीं छेड़ते मैंने यूरिया दे फलाना कर सह नहीं करते हाँ
0: जी चलो
2: लगने ना मुल्क हाँ मैडम तू अच्छा अच्छे तेरा कुछ दिन थोड़े घर
0: जी तो हाँ चुकुंडिया गीत जेड़े से सुनना पसंद करी
2: गीत कौन कौन सा सुनना
0: इसी गूंज कने हाँ फिर ते अपने कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाते न कने तुहां तक अगली जेड़ा फरमाइश है पहुँचाते न।

0: श्रोताओं तो सारे सुनिया ये प्यारा दे आ गीत प्यारी दे फरमाइश ये फरमाइश सुकड़े ते आई हुए कने माया जी तक कहाँ पहुँचाई कने तो हाँ सारे भी इस सफ़र जो भी इंजॉय करा दे न कने अपनी जेड़ा प्यारियां प्यारियां फरमाइशा न तिना जो भी जरूर इंजॉय करा दे उन्हें न कने जेड़ा हाँ गलबात करा दे न से करा दे न खुशी उपर अगले जेड़ा श्रोता न तिना कने कर दे न गल बात। हेलो
1: नमस्कार महाराज जी।
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है न?
1: अब कभी महाराज जी। हां जी ठीक ठाक जी।
0: जी ठीक ही चाहिए ना जी। जी
1: कुल महाराज जी।
0: जी तुहां कुथु ते बोला दे कने तुहांदा नाम की है जी?
1: मैं जी डाट ते बोला दा, मेरा नाम हरदेव है जी।
0: जी डाट ते बोला दे हरदेव जी।
1: जी महाराज
0: जी। ता हरदेव जी तुहें क्या लगता खुश रहना हाँ वास्ते कितना ज़्यादा जरूरी है? कने कई बार हाँ कोई भी काम करते न या कांगड़े दी गल करिए या अपने गांव दी गल करिए तो क्या चीज़ जड़े से तुहें जो खुशी दिन दी?
1: महाराज जी एक तो ये है कि इंसान जो सदा के लिए खुश रहना चाहिए
0: जी।
1: कने इस वास्ते अंदर दी यहाँ दे कई त्यौहार होंगे है खुशी दे होंगे
0: जी। ये भी तो हम बड़ी प्यारी गल बोली कि त्यौहार जेड़ा न सभी यहाँ जो खुशी दिन दे ना जी।
1: जी महाराज
0: जी।
1: कने खुशी रहना तो ऐसा होंगे कि अपना शरीर क्या बिल्कुल ठीक रहता
0: जी। शरीर भी ठीक रहता कने
1: यहाँ शरीर ठीक रहना चेहरा फुल्ले रहना बिल्कुल हष्ट पुष्ट रहना खुशी क्या होनी तो फिर
0: जी जी है? जी जी। और क्या तुम्हें जो जेड़ा लगता कि यहाँ दा जेड़ा प्रकृति है नेचर दी गल करिए ता क्या तुम्हें जो ऐसा लगता कि आ जो नेचर या प्रकृति क्या खुशी दें दी?
1: हाँ सर जनाब रे जी क्या है खुशी रे जी चौबीस घंटे प्रकृति की गप लाइए तो दिखा नहीं होना बरखा होनी है सभी खुशी ही होंगी
0: जी जी।
1: निम्बल होंगे तो भी खुशी का ही होंगे है
0: कोई भी काम करते ना कोई भी फसल लगाते ना तो हां सबसे पहले पेड़ ही ढूंढते ना जी।
1: बिल्कुल छाव है ना खुशी वास्ते
0: छाव मिलती है कुछ दी है बहन देना जी।
1: हाँ जी हाँ जी कहना जो काकड़ियाँ लगनियाँ माई बिल्कुल तोड़ी ताड़ी करी थे तू छाव खानी हाँ सही खुशी दी गल होंगी
0: जी। कने अगर जिन्ना खेतें गए ना कने खेतों से होंगे कि अपना जेड़ा खान पान है सभी यहाँ खेतों से ही करते ना ज्यादातर किसान का तो यही रहता कि खेतों से ही करना है ना जी।
1: हाँ जी मतलब खाना दोपहर का हाँ पहले रोटी राटी दे होनी सब खेतों से ही खानी 12 बजे की
0: जी। फिर अगर कुछ मिर्च लगी हो तो मिर्च तोड़ी लेनी है खाई लेनी है भी खुशी मतलब खुशी
1: खुशी होंगी तो चेहरा ठीक रहने खुशी ने कम भी ज्यादा होंगे जी
0: जी। कने कई बार मैं भी दिखे कि जल वहाँ काम कर दे ता काम करने ने जेड़ा भूख है सभी ज्यादा लगती फिर
1: बिल्कुल महाराज जी बिल्कुल कांजे थकी होंगे नी कने काम पूरा होंगे कि मतलब रामे का काम नहीं होंगे जमीन बिच खुशी का काम होंगे कने जोर लगता
0: जोर भी लगता कने इस खाने का अलग ही मतलब अंदाज होंगे जितना करे हाँ जो सुकून नहीं मिलता तितना तिथु पट्टियाँ च बैठी करी या जिथु भी यहाँ अपना खाना पीना करते न ता हाँ जो कुछ सुकून मिलता ना जी।
1: जी महाराज
0: जी। कने सारे मिली जुली करी खाना खांदे या अलग अलग घर दी जेड़ा रसोई है सब्जी है से यहाँ जो मिलती ना जी।
1: जी महाराज जी
0: ये तो सबसे बड़ी खासियत है ना जी।
1: बिल्कुल बिल्कुल जी
0: जी जी, जी। ता आज तो हाँ कुंदिया गीत सुनने जी।
1: जनाब मुझे भजन सुनाई दिया तेरी जिंदगी फकीरां दी
0: जी। अच्छा भजन क्या ये
1: उनके रोना ही फकीरां साई है उन्हें कम भी साई दे चल लियो
0: जी जी जी जी। ऐसा कुछ नहीं होता जी अगर हाँ सोच हमेशा अच्छी रखते ना वैसे तो चलो आज कने दौर दी गल करिए तो कुछ ना कुछ जेड़ा हर कुसी दे विचार अलग अलग है ना जी
1: अलग अलग जी। पहले सियाने पता क्या करते हैं
0: जी
1: ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੈਗੇ ਲੋਲੂ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਾਲ ਪਾਈ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਪਰ ਖੰਡੋਲੂ ਵਿਛਾਈ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਸਵਾਈ ਦੇਣਾ ਹੈ ਲੋਲਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਐਸਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪਨੂੜੂ ਬਣੀ ਆ, ਇੱਕ ਭਿੰਗ ਦੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੁੰਗੀ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਲਾਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮੇ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾ ਜਵਾਨਾ ਆਈ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਹਦੇ ਹੋਈ ਆ ਹੁਣ
0: ਬੱਚੇ ਵੀ। ਚਲੋ ਪਿਆਰ ਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੱਚਿਆਂ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਸੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨਾ ਜੀ।
1: ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ
0: ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣ, ਸੇ ਤੁਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਛਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹਨ ਸੇ ਤੁਹਾਂ ਜੋ ਦੇ ਦੇਣ ਨਾ ਜੀ।
1: ਹਾਂਜੀ
0: ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਸੇ ਤੁਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਜੀ। ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਂ ਦਾ।
1: ਧੰਨਵਾਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ
0: ਜੀ। ਸ਼ੋਤਾਂ ਤੁਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਚ ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਜੁੜ ਸਕਦੇ, ਕਨੇ ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀ ਸਕਦੇ। ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕੋਲ ਕਰਾਂ, ਹਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕਿ ਕੋਹਾ ਚੀਜ਼ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਦੇ ਹਾਂ, ਕਨੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਹਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਕਰਾ ਦੇਣ ਸਿਆਹਾਂ ਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਜੋ ਅੱਗੇ ਬੜਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਸੇ ਤੁਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ।

0: दर्शो तो तुम सारे सुनिया ये प्यारा दिया गीत प्यारी दे फरमाइश अगले जेड़ा श्रोता न तिना कन्ने कर दे न गल बात। हेलो
1: हेलो नमस्ते शशि जी।
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहां दा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है न?
1: धन्यवाद जी। हां जी बिल्कुल जी, ठीक ठाक। तुहां बोला
0: जी? हां बिल्कुल ठीक ठाक है जी।
1: अच्छा जी,
0: जी तां तुहां दी क्या खुशी है, क्या जिड़ा तुहां जो लगदा कि चेहरे पर खुशी आई जांदी है?
1: देखा जी, सोच के जाए तां छोटी छोटियां गल्लां ते बड़ी खुशी आई जांदी ना। अगर हां खुशी है, सबसे बड़ी खुशी यही है कि मैं जो लगदा कि अगर हां कुछ दे चेहरे पर अपने हाड़ी वजह ने कुछ दे चेहरे पर मतलब स्माइल आई है तो सबसे बड़ी खुशी से है
0: जी,
1: है ना। और अगर हाँ कुछ भी है, खुशी है छीन नहीं करी, अहा खुश होंगे तो बोलते उस खुशी है हमेशा डरना चाहिए, क्योंकि अज अहा कुछ दे जरा छीन नहीं के मतलब आप कुछ दहाके तो ले करी उस चीज से मजा नहीं करना, उदा हंजो ना उदा दंड हंजो भुगतना पौंदा कदी ना कदी।
0: सही है ना कि कर्मा दा सब कुछ लिखा जोखा है ना जी।
1: जी बिल्कुल जी
0: जी, क्योंकि
1: चार दिन तो हाँ बोलते ना खुश हो जाएंगे, लेकिन सह घूमी फिर के सांझल ही सांझल वापिस होंगे, चाहे खरा करिए चाहे बुरा करिए।
0: जी सही है ना कि सह यहाँ पर निर्भर करता कि यहाँ बुरा करा दें कि अच्छा करा दें ना जी।
1: जी कोशिश तो ये होना चाहिए कि आप भी खुश रहा करें और मैं भी खुश रखा
0: जी। ये तो सबसे बड़ी गल है कि खुद भी खुश रहना जरूरी है, कने अगर तुहां कुछ दे चेहरे पर स्माइल ले करी होंदे ना से तो उससे भी बड़ी खुशी है ना जी।
1: पर होंदा ही नहीं ना, असल च जड़ा ऐसा सोचदा ना उसने ऐसा नहीं होंदा
0: जी, उसने उल्टा होंदा
1: बिल्कुल
0: जी।
1: पर चलो बोलते ना अपना कर्म जड़ा हम जो हमेशा अपना कर्म करना चाहिए ना कि दुबे दे दिखी के, बल्कि कुछ ही दिखी के अपना कर्म खराब नहीं करना
0: जी। करना
1: करना कुछ नहीं जाना, कर्म जाना एक
0: जी। अपनी तरफ से हमेशा पॉजिटिव सोचा ना जी।
1: जी
0: क्योंकि अहाँ अगर अच्छा सोच गए ताई अहाँ, क्योंकि अहाँ दी फैमिली है, माता पिता ने तो हम भी है।

0: तुहां अपने बच्चे जो हमेशा अच्छा ज्ञान दिन दे ना जी,
1: बिल्कुल जी,
0: तिना जो तुहां ता नी नकारात्मक विचार तिना तक पहुंचा दे ना जी
1: जी बिल्कुल,
0: जी क्योंकि सोच तो हर किसी दी अपनी अपनी है ना जी
1: अपने अपने हैं जी।
0: जी अगला व्यक्ति क्या सोचा था से तिस पर छड़ी दिया, पर अहाँ क्या सोचा देना, तिस पर सोच विचार करना तो जरूरी है ना
1: थोड़ा
0: जी,
1: जी बिल्कुल
0: क्योंकि पेरेंट्स भी अपने बच्चे जो अच्छे ही जेड़ा संस्कार हैं से दिंदे ना जी,
1: जी
0: पर कई
1: बिल्कुल,
0: बार ये होंगे
1: अगर
0: कि
1: अपने वाले अच्छे
0: पेरेंट्स
1: होंगे सर,
0: जी जी
1: हाँ
0: पेरेंट्स
1: जी, पर
0: भी
1: अपने वाले अच्छे होंगे ना
0: जी जी
1: तो अच्छे देंगे, अब
0: जी
1: अहाँ ही अगर
0: जी
1: गलत
0: जी
1: रास्ते पर चलेंगे तो अहाँ क्या बच्चे हैं अपने दसना।
0: जी जी बिल्कुल जी सही तो गल है ना कि अगर अहाँ खुद ही अच्छा नहीं सोचा दे कने अहाँ बच्चे जो क्या अच्छा सिखा दे
1: बिल्कुल,
0: जी,
1: वो
0: क्योंकि
1: भी सामने ही तो
0: जी
1: उनका, फिर
0: जी
1: हाँ अपने बच्चे क्या सिखाया भी
0: जी जी
1: सामने ही उनके।
0: जी इधर भी थोड़ा दिया है सोच विचार, क्योंकि हर तरफ सोचना जरूरी है ना जी,
1: जी बिल्कुल
0: कोई ना
1: जी
0: कोई कमी हर इंसान चुनदी, पर हाँ
1: जी
0: उस
1: जी
0: कमी जो सुधार दे ना, क्योंकि परिवार दी गल करिए तो परिवार ताई चलता है जलू प्यार भावना एक दूसरे अंदर होंगी है ना
1: जी
0: जी
1: बिल्कुल, कमी भी
0: कने
1: सारे चुनी है
0: जी
1: कहना, खूबी भी सारे चुनी, पर
0: जी
1: क्या कि उसे एक कमी है दिखी गई या दो कमियां दिखी गई, नहीं बंदियां क्वालिटियां भी दिख रही हैं, उसे गुण
0: जी
1: भी दिख रहे हैं, तो
0: जी
1: बोलते ना
0: जी
1: अगर थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना भी पौंदी,
0: जी जी
1: ताई जिंदगी चलती है, ताई घर
0: जी
1: चलते है ना।
0: जी ताई घर चल दे, क्योंकि अगर हाँ अपना ही सोचना लगे तो फिर ही बड़ा कुछ दिखना पौंदा ना जी
1: बड़ा कुछ कहना कई बार के अंदर
0: जी
1: हाँ अपनी बड़ी गलती नहीं दिखना करना, दूजे की
0: जी
1: छोटी छोटी कमियां निकाल के ना,
0: जी
1: तथ्य उसे बैलेंस जड़ा से खराब हुई अंदर।
0: जी जी जी तेंदु जी और क्या तुम्हें क्या लगता कि कांगड़े दी क्या खासियत है जिड़ा हाँ जो कई बार खुशी दिन दी
1: कांगड़े तो देखा ना, अगर खुशी देखा मैं तो सच्ची बोल दी थी, हाँ तो बाहर भी निकली गया ना, जरा
0: जी
1: अपने चिड़वा पखेर में दिखी की थोड़ी, मतलब
0: जी
1: ये दिखी कि दिल खुश हो गया,
0: जी
1: हाँ अपने पेड़ पौधे दिख दे चलो हरा भरे हरियाली दिख दे,
0: जी
1: इच दिखी के दिल खुश हो जाता ना, अपना
0: जी
1: मौसम दिखे सवेरे फोग पी गई इतना
0: जी
1: चल, उसे दिखी के मन खुश हो जाता, खुश होने वाली बात है, बंदा छोटी छोटी चीजें खुशी तो पी सकता जी, मैं बोला ही तो
0: जी जी
1: यही है, अगर उसे चीजें हाँ खुश होकर दिख दे या हाँ उसे चीजें ते उसे खुशी च नहीं तोपी पाते तो साड़ी पर डिपेंड करता ना।
0: जी जी कई बार उन्हें दी मौसम दी गल करिए तो बरखा होंदी है कने एकदम मौसम साफ होंदा है तो कितना प्यारा लगता है ना मौसम
1: जी बिल्कुल
0: जी, कने हाँ कुछ ना कुछ तीस जो अपने कैमरे च भी कैप्चर कर दे ना जी
1: बिल्कुल जी,
0: जी जी जी तेंदु जी आज कुंडिया चिड़ा की तह से तुहां सुनना है
1: आज टाइम बड़ा हो गया, बस जर के गल करनी थी मैं, बाकी तो हाँ और नई फरमाइश कर दिया पूरी, फिर
0: जी
1: कभी सुन की मैं
0: जी जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहंदा
1: तुम्हारा बड़ा बड़ा धन्यवाद जी।
0: जी, तो श्रोताओं चलते ना थोड़ा दिया कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाते ना कने गीत दा जेड़ा सिलसिला है उस जो भी अगे बढ़ाते ना कने तुहां तक अगली जेड़ा फरमाइश है से पहुँचाते ना।

सारे सुनिया ये प्यारा देया गीत प्यारी दे फरमाइश। ये फरमाइश अह तक पहुंची हो व्हाट्सएप के माध्यम ने। तिना का ना वे काजल जी कने से रहने वाले ने सलेट गोदाम से, तो जरूर तिना तक अहाँ ये फरमाइश पहुँचाई। कने अगली जड़ा फरमाइश है सभी तुह तक पहुँचाई देने, क्योंकि समय जड़े से अपनी रफ्तार लेकर ही चलिया, तो जरूर अहाँ भी समय की रफ्तार कने चल देना।

0: 92.2 मेगाहर्ट्स पर ए है तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना दे थे अपनी रेडियो दो शशि कन्ने। इस कार्यक्रम दा जिहड़ा सफर है से तुहां तक रहिंदा है 2 से 3 बजे तक। तो जरूर हुण कार्यक्रम दा जिहड़ा सफर है से अहां जो बोला दा कि तुहां अनुमति जिहड़ा है से जरूर ले लिया। तो जरूर अहां अनुमति लैन दे ना कने तुहां हमेशा खुश रहा कने छोटी छोटी जिहड़ा खुशियां न तिना जो ही दिखी करी खुश रहा या अपना जिहड़ा पेड़ पौधे न या जिहड़ा प्रकृति है। कई बार प्रकृति का जिहड़ा सौंदर्य है सभी अहां जो बड़ी जिहड़ा खुशी है से देख री जांदा है। तो जरूर इस कन्ने ही तुहां सारे अपनी रेडियो दो शशि जो दिया अनुमति कने नहीं सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।
1: बाबू पंजर पहिए होटल

0: गोरिया
1: गोरिया आकर गोरिया
2: गोरिया
1: गोरिया आकर आ
0: गोरिया
3: हटो हटो हटो हटो एले गोरिया।
4: प्लास्टिक गोरिया जैसे नादान जानवरों की जान ले सकता है। आप भी छोटी सी शुरुआत कीजिए, प्लास्टिक को अलग डस्टबिन में डाल के शुरू करें एक छोटी सी अच्छाई।
5: बैठिए मैडम बैठिए। अरे देखो इनको, इनकी नाक देखो, बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती है। देखो इसकी आंखें देखो। पता है तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब कौन सा गाना था, एक चतुर नार बड़ी होशियार है, क्या गाना था वो।
6: अरे बेटो तू यहाँ क्या कर रहा है, और ये दोनों लड़कियां कौन है?
5: देखिए भाई साहब आप कौन है?
6: जी मैं इसका बाप हूँ।
5: आप इसके बाप हूँ? महमूद का बेटा नहीं तू? अरे हास्य कलाकार महमूद, ये तेरे बाप का रोड नहीं है?
7: जी नहीं।
5: तो फिर बिना हेलमेट के दो लड़कियों को बिठा के रूम रूम करते शर्म नहीं आती तुम्हें?
8: जवान तो कटेगा भैया तेरे,
5: और अभी उतर के लेके जाओ आपकी।

नमस्कार दोस्तों, प्रेम विश्वास और भाई बहन के अटूट रिश्ते का ये पावन पर्व रक्षाबंधन आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है। राखी का ये पवित्र धागा सिर्फ कलाई पर बंधा एक धागा नहीं, बल्कि प्यार, विश्वास, सुरक्षा और जीवन भर साथ निभाने के वचन का प्रतीक है।

रिश्तों में मिठास रहे, अपनों का साथ रहे। रिश्तों में मिठास रहे, अपनों का साथ रहे। हर कलाई पर सजे प्यार का धागा और हर चेहरे पर मुस्कान रहे। इन्हीं खूबसूरत भावनाओं के साथ रेडियो वंचन धर्मशाला की ओर से आ रहे इस रक्षाबंधन पर्व

0: नमस्ते भैया, कैसे हो भाभी जी?
1: अभी शादी का लहंगा सिलवाना था।
0: हाँ हाँ, बहुत सारे डिजाइन है, ये देखिए कौन सा स्टाइल चाहिए आपको। ये देखिए, पिछले महीने मिश्रा जी की बेटी की शादी के लिए सिया था।
1: ये तो स्लीवलेस है, हमें फुल स्लीव्स वाला चाहिए, थोड़ा सिंपल दिखाइए।
0: सिंपल में तो फिर, अरे पर किसके लिए बनाना है?
1: चुन्नी के लिए।
0: ये अपनी चुन्नी?
1: हाँ, अच्छा रिश्ता मिला है।
0: बेटा चुन्नी, कितने साल के हो आप?
2: अगले महीने 12 साल की हो जाएगी। पंडित जी ने इसी इतवार का मुहूर्त निकाला है, तो हो तो जाएगा ना तब तक।
0: अच्छा, 12 साल की है तो आपको प्रॉब्लम नहीं है?
2: नहीं, क्यों?
0: और आपको भी प्रॉब्लम नहीं है? पर मुझे प्रॉब्लम है, मैं नहीं सीऊंगा।
2: चलो छोड़ो उसे, किसी और से सिलवा लेंगे।
0: अरे भैया जी, एक मिनट। अरे बिरजू, वो कौन सा नंबर है, निकलवा तो जरा।
3: मास्टर जी, टोल फ्री नंबर है 1098, कभी भी कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं।
0: ना हम सीएंगे, ना किसी को सीने देंगे।
4: जीवन की हर उलझन का हल मिलेगा मित्र, बस अपने मन को थोड़ा शांत करके देखो। जो तुम्हारा है वो कहीं नहीं जाएगा, और जो चला गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीखो, क्योंकि मुस्कान ही हर दर्द की सबसे बड़ी दवा है। भरोसा उस ईश्वर पर पूरा रखो, वो तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे लिए सही है। तुम्हारी सरलता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, और तुम्हारी खामोशी में ही ईश्वर का वास।
5: मम्मी जी क्या कह रहे हैं, बचपन में आपका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था।
6: हाँ, जब मैं 12 साल का था ना, तो मैं पापा को बिना बताए उनकी बाइक लेके घर से बाहर निकल गया, और मैं बाइक इतनी तेज चला रहा था कि सामने से एकदम से ट्रक आ गया। ट्रक को बचाने के चक्कर में मैंने एकदम से लेफ्ट ले लिया। जैसे ही लेफ्ट लिया, सामने से गाड़ी आ रही थी, और गाड़ी में जाके बाइक लगी और बाइक पूरी खत्म हो गई।
5: बेबी बाइक को छोड़ो, आप बताओ आप बचे थे कि नहीं।
6: तब तो बच गया था, लगता है अब नहीं बचूंगा।

92 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से शुरू हो गया है कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। मैं आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो लीजिए कार्यक्रम का पहला गीत प्रस्तुत करते हैं आपकी नजर।

0: मोहब्बत।
1: गीत सुहाने नई पुरानी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुराने। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने की महफिल सजी है रेडियो गुंजन धर्मशाला से फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया और ये रहा कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

0: गोरिया
1: गोरिया
2: गोरिया।
3: प्लास्टिक गोरिया जैसे नादान जानवरों की जान ले सकता है। आप भी छोटी सी शुरुआत कीजिए, प्लास्टिक को अलग डस्टबिन में डाल के शुरू करें एक छोटी सी अच्छाई।
4: बैठिए मैडम बैठिए। देखो इनको, इनकी नाक देखो, बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती है। देखो इसकी आंखें देखो। पता है तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब कौन सा गाना था, एक चतुर नार बड़ी होशियार है, क्या गाना था वो।
5: अरे बेटो तू यहाँ क्या कर रहा है, और ये दोनों लड़कियां कौन है?
4: देखिए भाई साहब आप कौन है?
5: जी मैं इसका बाप हूँ।
4: आप इसके बाप हूँ? महमूद का बेटा नहीं तू? अरे हास्य कलाकार महमूद, ये तेरे बाप का रोड नहीं है?
6: जी नहीं।
4: तो फिर बिना हेलमेट के दो लड़कियों को बिठा के रूम रूम करते शर्म नहीं आती तुम्हें?
7: जवान तो कटेगा भैया तेरा,
4: और अभी उतर के लेके जाओ। आपकी और सबकी सुरक्षा।

नमस्कार दोस्तों, प्रेम विश्वास और भाई बहन के अटूट रिश्ते का ये पावन पर्व रक्षाबंधन आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है। राखी का ये पवित्र धागा सिर्फ कलाई पर बंधा एक धागा नहीं, बल्कि प्यार, विश्वास, सुरक्षा और जीवन भर साथ निभाने के वचन का प्रतीक है।

रिश्तों में मिठास रहे, अपनों का साथ रहे। रिश्तों में मिठास रहे, अपनों का साथ रहे। हर कलाई पर सजे प्यार का धागा और हर चेहरे पर मुस्कान रहे। इन्हीं खूबसूरत भावनाओं के साथ रेडियो गुंजन धर्मशाला की ओर से।

0: नमस्ते भैया, कैसे हो भाभी जी?
1: अभी शादी का लहंगा सिलवाना था।
0: हाँ हाँ, बहुत सारे डिजाइन है, ये देखिए। कौन सा स्टाइल चाहिए आपको? ये देखिए, पिछले महीने मिश्रा जी की बेटी की शादी के लिए सिया था।
1: ये तो स्लीवलेस है, हमें फुल स्लीव्स वाला चाहिए। थोड़ा सिंपल दिखाइए।
0: सिंपल में तो फिर, अरे पर किसके लिए बनाना है?
1: चुन्नी के लिए।
0: ये अपनी चुन्नी?
1: हाँ, अच्छा रिश्ता मिला है।
0: बेटा चुन्नी, कितने साल के हो आप?
2: अगले महीने 12 साल की हो जाएगी। पंडित जी ने इसी इतवार का मुहूर्त निकाला है, तो हो तो जाएगा ना तब तक।
0: अच्छा, 12 साल की है तो आपको प्रॉब्लम नहीं है?
2: नहीं, क्यों?
0: और आपको भी प्रॉब्लम नहीं है? पर मुझे प्रॉब्लम है, मैं नहीं सीऊंगा।
2: चलो छोड़ो उसे, किसी और से सिलवा लेंगे।
0: अरे भैया जी, एक मिनट। अरे बिरजू, वो कौन सा नंबर है, निकलवाओ तो जरा।
3: मास्टर जी, टोल फ्री नंबर है 1098, कभी भी कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं।
0: ना हम सीएंगे, ना किसी को सीने देंगे।
4: जीवन की हर उलझन का हल मिलेगा मित्र, बस अपने मन को थोड़ा शांत करके देखो। जो तुम्हारा है वो कहीं नहीं जाएगा, और जो चला गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीखो, क्योंकि मुस्कान ही हर दर्द की सबसे बड़ी दवा है। भरोसा उस ईश्वर पर पूरा रखो, वो तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे लिए सही है। तुम्हारी सरलता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, और तुम्हारी खामोशी में ही ईश्वर का वास।
5: मम्मी जी क्या कह रहे हैं, बचपन में आपका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था।
2: हाँ, जब मैं 12 साल का था ना, तो मैं पापा को बिना बताए उनकी बाइक लेके घर से बाहर निकल गया, और मैं बाइक इतनी तेज चला रहा था कि सामने से एकदम से ट्रक आ गया। ट्रक को बचाने के चक्कर में मैंने एकदम से लेफ्ट ले लिया। जैसे ही लेफ्ट लिया, सामने से गाड़ी आ रही थी, और गाड़ी में जाके बाइक लगी और बाइक पूरी खत्म हो गई।
5: बेबी बाइक को छोड़ो, आप बताओ आप बचे थे कि नहीं?
2: तब तो बच गया था, लगता है अब नहीं बचूंगा।

0: नमस्कार श्रोताओं, FM बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेडी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून को रो और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा लेकर ही तुंदा अपना गादा कार्यक्रम लेकर आया हूँ। सचिन कपूर हाजिर बुजुर्ग तुंदे वेडियो सेट में। क्या हाल चाल श्रोताओं तुंदे? उम्मीद करनो खरे बुणे न सुखी बुणे न हर दिन आके जैसा ना बुंदा और हर जिंदगी की ऐसो भी आके दिन ही नरिंदे श्रोतों की हर टाइम इंसान की ऐसा खुश रहा। लेकिन चलिए इंदा दायित्व इंदा कर्तव्य कि समाज जो कि ऐसा अच्छे अच्छा संदेश देना और समाज वास्ते कि ऐसा काम करना है ना जी, का इस वीडियो रा दायित्व। और जो वीडियो मंज अनाउंसर इंदे बिखरे बुंदे हिन जो आरजेस बुंदे त्यारे बेगम कि समाज में कि ऐसा अच्छा बेहतरीन पॉजिटिविटी की ऐसा जरूर अच्छा अच्छा संदेश की ऐसा समाज में जरूर अच्छा शो। बहरहाल कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा लेकर आऊँ सचिन कपूर हाजिर बुआ तुंदे वीडियो सेट में। तो सब श्रोता जरूर कॉल कर सकते हैं 708-8-7-09 पर नंबर आक मौके है फिर तू होगी शेयर करनो साझा करनो 708-8-7-09 पर। तो है सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत होने सकते हैं अपने क्षेत्र जानकारी वो कि साझा कर सकते हैं। एक गलरा खास ख्याल रहे कि जानकारी किया सो रेडियो मन दस में लाइक जरूर हुआ, जानकारी किया सो रेडियो मन साझा करने लाइक जरूर हुआ। तो इस समय हम गल करूँ श्रोता हूँ तो मौसम रे गल करिए श्रोता हूँ तो इस समय धर्मशाला में किया सो हालांकि आज पूरे धैर्य की सो बरखा न बोया बगले ने पैर किया सो बछोरे थोड़े करी बरखा श्रोता और तथों बाद पूरा दिन किया सो मौसम शांत ही रहो। इस समय की डिग्री सेल्सियस तापमान हा, ह्यूमिडिटी री गल करूँ नमी री गल करूँ तो 82% किया सो ह्यूमिडिटी हा। इस नंबर मंच तो है कॉल कर सकते हैं जो नंबर में तू सू होगी शेयर करें साझा करें हिन इन द पहले श्रोतागण हस होगी कनेक्टेड हिन पुछ दिन श्रोतों कुंड बल्लू दिन और कड़ी थोम बल्लू कर श्रोतागण सो थोड़ा करी कनेक्ट लगे हैं श्रोतों पूना। नमस्ते जी।
1: हेलो।
0: हाँ जी नमस्कार जी।
1: नमस्ते जी, मैं कारचंद बोल रहा हूँ सिद्धवाड़ी से।
0: अच्छा ठीक ठाक ने तो है राजी बाजी?
1: हाँ जी राजी बाजी। हाँ जी।
0: अच्छा संसार चंद तो है अपना नाम दसो है ना जी?
1: हाँ जी
0: संसार चंद तो है अपना नाम दसो।
1: ओंकार चंद।
0: अच्छा ओंकार चंद।
1: हाँ जी मैं सामने भी
0: पसंद कर ले फरमाइश पूरी कर ले
1: सामने कभी मिंजल आउन नहीं तो गप सप मार दे सामने जे मैं।
0: हां जी जनाब जरूर ले।
1: हां जी हां जी मैं बड़ा थोड़े प्रोग्राम में कभी खुश होता जी सुनता रहा रहो जी।
0: चली जी सौभाग्य ने सौभाग्य इंदा।
1: हां जी हां जी हां जी
0: ठीक है जी धन्यवाद।
1: ठीक है जी बहुत बहुत धन्यवाद जी
0: जी। श्रोतों FM बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर है वेडी गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा तो है सब बिल्कुल लाइव हुनु करते हैं। तो है सब श्रोता जरूर कनेक्ट हो सकते हैं। मौसम रे अपडेट है तुसु देते हैं श्रोतों अन्य जानकारी तुसु हो गया है जरूर कह रहे सो साझा कर ले कांगड़े दा टिल्ला इं फरमाइश किया सो दस है सो है जरूर पूरी कर ले। लेकिन तथों पहले श्रोतों आगाज किया सो कार्यक्रम रहा बहुत जरूरी है ना जी। तो आगाज कर लें दिन कार्यक्रम रहा और आगाज तो बाद फिर फरमाइश रहा दौर के सो जरूर पूरा कर ले और अन्य जानकारी रहा दौर भी है जरूर पूरा कर ले पिटारा किया सो जरूर खोल ले बल देने श्रोतों के जिंदगी में कुछ कदी लगा कि जिंदगी हर मतलब हर किसी भी हर व्यक्ति की जिंदगी की ऐसो स्थाई तरीके हो कि हमेशा ना चल दे है ना, बैलेंस बुझेगा हमेशा ना चल दे या ट्रेन ही है ट्रेनरी पटड़ी ही है कि सो सिद्धि ना चल दे गेर फेर की ऐसो लाइफ में जरूर इंदे इंदे और इं गेर फेर में किया सो तो सो भगवान रा ना लेना कि सो ना छड़ना चाहता है ना ताइया है सब किया सो आगाज कर देन और गीत हुन देन ईशान भारद्वाज री आवाज़ माँ कृष्णा मेरिया।

0: सौ एफ एम बैंड इक्यानवे दशमलव दो मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून को ड्रॉ और कार्यक्रम हिंदी अपनी का पगन सो लाइव चल रही हैं ता इस लाइव कार्यक्रम में तो है सब श्रोता जिन जुड़ दें जुड़ी सकते हैं हाई है कार्यक्रम जो आगे बढ़न दें छो तो और अचकने विचार री और की है सो जरूर चल दें छो तो अचकने का विचार आ जीवन अक किताब सही है छो तो जो जीवन आ सो अक किताब सही है जहने तगर तो है पन्ना ना पलट लै तहने तगर तो है ना जाने सकता है कि अगले अध्याय मा के आ सो क्या लिख रहा हा यानी कि जहने तगर तो है लाइफ मा जो तुंदे आस पास हजारों मणु हिन तिन्यो अजमल लेना तो तहने तगर तो है ना बिछाने सकता कि कौन तुंदा खास और कौन तो सुथो बेगाना हा है ना लाइफ मा बलते ना कि मुश्किल दौर इना भी किया सो बहुत इंपॉर्टेंट बुंदा हा बहुत ज़रूरी बुंदा हा और मुझे लगता है श्रोतों जहने मुश्किल दौर इंदा तहने इंसान लगे सो पैसा ता तू वो पता जीने वास्ते बहुत इंपॉर्टेंट है सब भी पता है ना जीने वास्ते पैसा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ए मुझे अकी मेरा दोस्त थो तीनिए मुझे सो अब डॉक्टर है ना टांडा माँ तीनिए मुझे अक गल बल्ले थी सो थोड़ा सेवा फेस किया सो स्ट्रगल वाला चल रो है ना मुंडे रे जो दब्बू बंदे इन छो तो जो मर्द बंदा घर रहा जो दब्बू बंदे ने तेरी लाइफ में किया सो अक टाइम ऐसा चली इंदा कि जहने तो सो कमाऊ कर दे कुछ ता ठीक है जहने ना कमाऊ कर दे ता मतलब सेरे अपने जो घरिए बंदे न छो तो सो भी बहुत कम चांस बंदा माँ बुढ़े अलावा कि सिर्फ माँ बुढ़े सोचन है ना एक टाइम पर माँ बुढ़े भी बलींदे ने कि कमाना कि ऐसा जरूरी है लाइफ मंज और अगर तो है कमल ताई कि ऐसो है ना सो जरूरी है भैया क्योंकि जो मुंडे बंदे तीनों कमाना कि ऐसा जरूरी बंदा हा शो तो पैसा कमाना जरूरी बंदा अक एंड पर ही चिकरे हर कोई बोलता कि पैसा इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट और पैसा तो सुले पहले भुना किया सो बड़ा इंपॉर्टेंट है ताई तुंदी इज्जत आ ताई तुंदा मान सम्मान आ ताई तुंदा किया सो सब कुछ है तो पैसा इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट ये गल जितने भी युवा इस समय हूँ कर दें अगर तीनों लगुंदा लगी इं जिंदगी चली पेंदे या इं जिंदगी बेहतरीन पुछी कहते हाँ तो ना जी इं ने बुंदे तुंदी जेबा मा पैसा भुना किया सो जरूरी आ जाए पैसा किए भी या जाए किए भी कमान तो है सोईना चिंता हा ता जीवन एक किताब सही है शो तो जहने तकर तो है पन्ना ना पलट ले तहने तकर है तुसो पता ना लगना कि अगले अध्याय मा किया सो क्या लिख रहा ता लाइफ इज ऑल्सो अ चैप्टर जिंदगी एक चैप्टर सही है शो तो जो हर एज ग्रुप बाद किए सो बदलेंदे रहेंदे जहने हल्के बंदे तहने सो बचपन प्यारा लगता फिर थोड़े घड़े जवानी में चली तो तहने सो दोस्त गरिए ये सब प्यारा लगते हैं तथों बाद जहने और थोड़े घड़े एज इंदी बढ़ते बह रहे बुझगंदे तथों बाद फिर चीज़ा और कहन सो बदली गंदी और चीज़ा कहने सो बड़ी चीज़ा कहन सो चली इंदी है ना मतलब और चीज़ा इनहेंस तुसू करना पैंती हिन सो लाइफ इज नथिंग इज़ परमानेंटली मतलब कि कुछ भी किया सो परमानेंट नहीं है जी लाइफ रे चैप्टर बदलिन देन छोतों और चैप्टर बदलिन देन ताई ऐसा पता लगता कि अगले अध्याय में किया सो क्या लिख रहा क्या चल रहा मोस्ट इम्पोर्टेंट है बहरहाल कार्यक्रम जो आगो बढ़ंदे हिन और तो सब बन रहे इस समय आज सचिन कपूर सोगे कार्यक्रम मिंदी अपनी गप अगेन सो बिल्कुल लाइव हुनो करते हिन पर एक आके गीत भी है ना कि खानी है तो बंदे या तू दो रोटियां है ना खानी तो दो ही रोटी लेकिन ये बलने उन्हें दो रोटी आई एक गीत कस भी हाँ पर है भी तुसु है ज़रूर दस लेकिन कस क्यों बड़ा फिलहाल इन देशोता सोगे कनेक्टेड हिन नमस्ते जी
1: नमस्ते जी
0: नमस्ते जी नमस्ते
1: और जी सचिन जी क्या हाल चाल है
0: बहुत बढ़िया जी तो बल्ला तुम के हाल चाल न
1: बस जी बढ़िया घुमारे बने थे
0: अच्छा अच्छा जी कौन बल्लू देन और कड़ी थो बल्लू देन
1: ए तपो बने थे सफेदो राम
0: अच्छा अच्छा अच्छा सफेदो राम जी कौन दिन की थोड़ा पसंद कर ले
1: ए उन्हें तो थोड़ी देर पहले बोला है ना खानी है बंदे दो रोटियां
0: हाँ जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी, जरूर जरूर तुस होएगी थोड़ा ले। और सब ठीक, कुशल मंगल है, ठीक ठाक है?
1: हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बढ़िया बढ़िया।
0: चलिए ठीक है जी, जरूर होने ले तुस होएगी इतना जी।
1: ठीक है जी,
0: ठीक है जी, धन्यवाद।
1: इतों
0: पहले इन दया कौर फरमाइश थी शोधों कांगड़े दा इल्ला गीतारी फरमाइश थी, और लेकरी चलते हैं तुसु सब भी जो श्रोता जो इस गीतारी किनारी इस भजन री किनारी माफ करा बने रहे तो सब आर जे सचिन कपूर सोगी कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा ई चली रहनी हिंद शोतों, और तुम सभी री कॉल जो सो सु जरूर कनेक्ट करने हैं।

श्रोता एफ एम बैंड 91.2 MHz पर है वेडी गुंजन धर्मशाला। तो एज अ बी ट्यून गुरु और कार्यक्रम हिंदी अपने गप अगेन सो लाइव चल रहे हैं श्रोताओं का इस कार्यक्रम मंच। तो सब श्रोता जरूर आसू की जुड़ी सकते हैं 7018 8179 पर कॉल करी करे नंबर एक मौके फिर तू हो गया शेयर करनो हाँ 7018 8179 पर। तो सब श्रोता कॉल करी सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत क्या सो होने सकते हैं अपने क्षेत्र जानकारी तू होगी साझा करी सकते हैं। आइए कार्यक्रम जो हगो बढ़ते हैं श्रोतों और कार्यक्रम मंच लेकर ही चलते तू सब भी जो इस अगली फरमाइश श्री और श्रोतों

0: শত এফ এম ব্যান্ডে কে আনুই দৃশ্যম লাভ দুই মেগা হার্টস পর বেড়ি গুঞ্জন ধারমশালা তো এসে বিয়ে টিউন করো আর কার্যক্রম হিন্দি আপনি গপ্প গেন সো বিলকুল লাইভ চল রই তুন্দে ভিডিও সেট মা বড়া সহি ওর সটিক হ্যা বল্লো হ্যাঁ শ্রোতাও কি অন্ত অন্ত কিয়া সো শমশান মা হ্যাঁ না আর তাই বলতে না শ্রোতাও কি কর্ম কিয়া সো আচ্ছা করো করা কর্ম আচ্ছে করনা কিয়া সো বহুত জরুরি বুঝেগন্দা বহুত ইম্পর্টেন্ট বুন্দা হা কসকি রা হা বুরা মত করা কসিও বুরা মত বল্লা है ना। और ठीक है आदमी मनता कि आदमी आखते हैं ना रहा हा इंसान है तो नैचुरल दे गल सो फीलिंग्स बुंदी बुरा भी लगता हा है ना। और लगता भी है कि यार अह ठीक कर उन्दे ने फिर अस होगी गलत को बच्चू करता लेकिन सो चिंता करने की जरूरत तो सोने सो चिंता करने की जरूरत सोने सो उपराल सा वेरू करता है ना। सो सब लेख किया सो लिखू करता हा बहरहाल इन अगले श्रोता अस होगी कनेक्टेड हैं पुछ दिन कौन बोलूंदे और कड़ी थों बोलूंदे। नमस्ते जी।
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी। नमस्कार।
1: ठीक ठाक।
0: बहुत बढ़िया जी। कौन बोलूंदे और कड़ी थों बोलूंदे।
1: बोलूंदे जी पान मुठदे हैं
0: कड़ी हूं जी
1: गोपालपुर।
0: अच्छा
1: गोपालपुर।
0: गोपालपुर हूं। ठीक ठाक ने गोपालपुर वाले सब।
1: हां जी हां जी बढ़िया जी सब बढ़िया।
0: करे करे लगन
1: वास कर लगना पर मेरे छुंदी वारी है।
0: अच्छा बरख लग रही है अब जो।
1: हां जी हां जी।
0: अच्छा इस किनारे ना लग रहे। हेलो
2: हेलो। हां जी यार तो बड़ी बरखा बुच वरदे असी है ना।
0: हेलो
2: हेलो हेलो
0: हेलो।
2: हां जी हां जी हेलो।
0: हां जी तुंदी आवाज नहीं छुंदी थी जी।
2: हां जी जी ये बरखा लग रही है जरा सा सिग्नल बीचिंग का थोड़ा।
0: अच्छा बरखा लग रही थी।
2: हां जी
0: चलिए ठीक है जी। फरमाइश दसे जी कौन देना गीत हुना तुसु।
1: फरमाइश गीत हुना है जी चंबा कितनी दूर चंबे रो
0: चंबा कितनी गेर दूर। चलिए ठीक है जी जरूर हुन ले तुसु होए फरमाइश है। एफ एम बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंचन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रहा श्रोतों और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा कहन सो बिल्कुल चल रही हैं लाइव तुंदे वेड़ी सट में कुछ एक खास जानकारी कहन सो असु तुस होगी जरूर शेयर करनी ने साझा करनी हैं श्रोतों। बाल विकास समिति जिला कांगड़ा वे खनियारा रे रक्कड़ क्षेत्र में किया सो मोबाइल फोन रे कथित लत रे चलते किशोर री मौत वे मामले में किया सो गहरी चिंता जाहिर किया सो तो सो करे हा। इस मामले में पुलिस थो स्टेटस रिपोर्ट ले करी सो तो समिति है किया सो धर्मशाला थाना क्षेत्र रे तहत रक्कड़ क्षेत्र रे एक 14 वर्षीय किशोर द्वारा कथित तौर पर गेम खेलने वास्ते मोबाइल फोन ना देने पर किया सो घर मंच कमरे में किया सो फंदा लगाए कर आत्महत्या करी सो तो ये मामला के असो कड़ा संज्ञान लेव करता है। जिला कांगड़ा बाल विकास समिति वे अध्यक्ष विक्रमजीत शर्मा की असो दस हुआ कि विभिन्न समाचार माध्यम थो मिली जानकारी रे आधार पर किया सो त्यारी अध्यक्षता में बाल विकास समिति है किया सो इस मामले में चर्चा करी है और ठेरे स्टेटस रिपोर्ट किया सो द्वितीय आशो तो रिपोर्ट मिलने के बाद समिति नियम अनुसार आवश्यक आवश्यक कार्रवाई किया सो अमल में किया सो लेनी है आशो तो सब बन रहे ने समय वेड़ी गुंजन धर्मशाला सो के और अन्य जानकारी भी कहन श्रोताओं सो असु तुसो की जरूर शेयर करनी तो ये सब वेड़ी गुंजन धर्मशाला जो हूँ करते हैं इन द अगले श्रोता सो के कनेक्टेड हैं लेकिन कुछ एक खास जानकारी तो हो गया है शेयर कर लेते हैं। बाबा बालकनाथ मंदिर दियोट से वी आरती अब श्रद्धालु यूट्यूब पर के असो लाइव हेरे सकते हैं श्रोताओं और हुने भी सकते हैं। इतों देश विदेश में रहने वाले श्रद्धालु में खुशी हाशो तो ये खबर होने करी मंदिर में आरती वे सीधे प्रसारण तो बुजुर्ग बीमार और दूर दराज क्षेत्र में रहने वाले श्रद्धालु भी घर बैठ कर किया सो इतना शामिल भुजी सकते हैं। बाबा बालकनाथ मंदिर दियोट से प्रसिद्ध परिसर और स्थानीय बाजार में मिलने वाला रोट प्रसाद और हलवा महंगा बचेगो अशो तो अब रोट प्रसाद भी थो 20 रुपये री बजाय की असो 25 रुपये बचेगो हा तटिए देसी घी री अगर गल करिए शो तो देसी घी भी किया देसी घी में तैयार बुने वाला हलवा किया ठेरी कीमत 400 थो बढ़ाई करे 500 रुपये प्रति किलो की असो बचेगी हा वनस्पति घी थो तैयार हलवे भी कीमत भी किया अशो तो 200 थो बढ़ाई कर 250 रुपये प्रति किलो कि ऐसो करी देती है रोड प्रसाद बाबा बालक नाथ रे दर्शन रे बाद श्रद्धालु प्रसाद रे रूप में कि ऐसो घरे ले घरे घर जो कि ऐसो लेगन दहीन शो तो है ना और कीमत बढ़ने था अब श्रद्धालु जो कि ऐसो प्रति रोड 5 रुपये अधिक चुकाने भूने हिन ते कुछ एक जानकारी के अनुसार ये चलती रहनी चौदह तुंदे बीच में और कार्यक्रम मंच ई बनी रहा वेड़ी गुंजन धर्मशाला सोगी लेकिन चलते श्रोतों तू सभी जो कार्यक्रम में थोड़ी करी और हगों बढ़ते हैं और फरमाइश रहा दौर असू जरूर पूरा करना इन देख ले श्रोता सोगी कनेक्टेड हैं नमस्ते जी
3: नमस्ते भाई
0: जी नमस्ते जी नमस्ते हाँ जी बगैड़े थो
3: वर्षा
0: जी बल्लू दिन वर्षा जी क्या हाल चाल ठीक ठाक ने
3: जी ठीक ने भाई जी
0: और करे लगुरन
3: बस चाह पानी ला बनाना
0: चाह पानी रे टाइम बच गंदा चूर बजे ना
3: हाँ जी
0: हाँ चाह पानी पी हाँ जी
3: बच्चे स्कूल ला हुआ ना उन्हें जंदे आपको जंदे
0: हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बड़ा अच्छा लगता है ना चूर साढ़े चूर बजे के असो इन स्याने बनूरा ही करेगी हाँ भाई असू चाह चूर की बजे की असो चाह ले ही हो है ना
3: हाँ जी हाँ जी
0: हाँ जी तो वैसे तुंदे जो माइक इन सो खड़ी ना
3: मेरा माइक क्या है सुबह डन भाई जी
0: अच्छा सुबह डन हाँ
3: जी
0: क्या बात है चलिए बहुत अच्छी गल है जी कुंडने गीत थोड़ा पसंद कर ले
3: गीत भाई जी मेरे मन में भी राम मेरे तन में भी राम
0: अच्छा क्या बात है
3: हाँ जी
0: ठीक है जी जरूर सुन ले तो सुई गीत है ना जी
3: जी जी धन्यवाद
0: धन्यवाद जी तो कार्यक्रम में जानकारी रा सिलसिला गया सो यही चली रहना है जानकारी के न सो यही चली रहने हिन आइए लेकर चलते हैं तो सभी श्रोतागण जो इस फेरे दे गीत तरीके नारी और तत्व वादन ने जानकारी तो वो गया है ज़रूर शेयर कर ले साझा कर ले

श्रोतो एफ एम ब्यान्ड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर और कार्यक्रम इंदी अपनी गप्पा गैन सो बिल्कुल लाइव सुन रही तुंदे वेडियो सेट में श्रोतो हाई है कार्यक्रम जो आगो बढ़ते हैं और इंदे बहुत सारे श्रोता कनेक्ट हो चुके हैं जरूर कनेक्ट कर ले, लेकिन एक खास खबर तुसु तक पहुँचाना की है सो बहुत जरूरी है। श्रोतो लगातार बरकरे चलते और लगातार बरखरे चलते के श्रोता हूँ सो धर्मशाला मैकलोडगंज जो जोड़ने वाला दोनों प्रमुख सड़क मार्ग री खस्ता हालत पर स्थानीय मनु किया सो स्थानीय मनु रा गुस्सा किया सो हुजू करदा आक्रोश किया सो बड़े गोहा श्रोता हूँ जोगीवाड़ा मा खड़ा डंडा मार्ग द्वारा घुसने और राष्ट्रीय राजमार्ग 573 रे फसरेड़गंज रे पास मोड़े मा नो सहित विभिन्न क्षेत्र मा किया सो क्षतिग्रस्त भूणे थो मणु और पर्यटकारी मुश्किल कैन छोतो सो बड़ी गई हिन स्थानीय मणु है किया सो सरकार प्रशासन और लोक निर्माण विभाग थो दोनों मार्ग जो प्राथमिकता वे आधार पर सुरक्षित करने और अस्थायी मरम्मत करवाने भी जोरदार मांग किया सो चुकी है श्रोतो उठाई है। स्थानीय मनु थो सुधेड़ पंचायत रे प्रधान अजीत नेहरिया मैकलोडगंज व्यापार मंडल रे अध्यक्ष नवेंद्र पठानिया कारोबारी एवं समाज सेवी बिट्टू पठानिया टैक्सी ऑपरेटर यूनियन अध्यक्ष अशोक शर्मा संजीव सिंह राणा दिनेश कपूर और विकास नेहरिया नरेश सिंह व अन्य मनु किया सो सड़क की स्थायी स्थिति जो किया सो जल्द सुधारने वास्ते किया सो मांग चुके हैं। तिहारा ये बलना है कि बरसात में हर साल ही इन मार्ग पर किया सो हालत बिगड़ते हैं, लेकिन समस्या व स्थायी समाधान किया सो ना बुंदा हा। तिहा ये बल्लो आश्वतों के प्रशासन और विभाग जो गंभीरता थो ये कदम किया सो चुकना पैना है कजो कि मनु के अनुसो ज़्यादा बहुत ज़्यादा के अनुसो परेशान हैं। धर्मशाला कोतवाली खड़ा डंडा मार्ग जोगीवाड़ा में सड़क धसने थो यातायात प्रभावित था और वाहन जो क्षतिग्रस्त हिस्से थो बेहद सावधानी थो कि असो कटना पे उगड़ता है श्रोतो है ना। बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है कि जल्द तो जल्द जो लोकल मनु हैं जो स्थानीय मनु हैं सो बार बार सरकार थो भी मांग करू कर देन प्रशासन थो भी मांग करू कर देन और संबंधित डिपार्टमेंट थो भी किया सो मांग करू कर दे हिन कि इस रोड जो किया सो जल्द तो जल्द ठीक करी दीन छोतों ता ये जानकारी है भी किया सो रेडियो गुंजन रे माध्यम तक घर घर तक किया सो बुझाई देते हैं और घर घर तक ऑफिस ऑफिस तक किया सो है बुझाई देते हैं छोतों की जल्द हों जल्द रोड किया सो ठीक भूना चिंदा है। बहरहाल तो सब बन रहे समय आरजे सचिन कपूर सो की कार्यक्रम बिल्कुल लाइव होने कर देन इंदी अपनी गप्पा तुंदे सभी रे रेडियो सेट मा लेके चलते है तू सभी जो श्रोतों इस प्यारे देव भजनारी किनारी मेरे बिल्कुल तन में भी राम मेरे मन में भी राम श्रोतों

तो एफ एम बैंड 91.2 मेगा हर्ट्स पर वेरी गुंजन धर्मशाला तो है ट्यून कर रहा और हूँ सचिन कपूर है श्रोताओं इस समय कार्यक्रम तुंदे वीडियो सेट में गए सो ब्रॉडकास्ट करू करता है धर्मशाला में पानी भी सप्लाई बा बहाल श्रोतों भारी बरखा और बाढ़ तो क्षतिग्रस्त बछूरी कुछ खड्डा था धार वाटर किया श्रोतों सो ट्रीटमेंट प्लांट तक भी 200 मिलीमीटर व्यास वे पेयजल लाइन जो कि असो जल शक्ति विभाग धर्मशाला की असो चूर दिना भी मुशक्कत थो बाद की असो दुरुस्त करी दिता है शो तो लाइन रा नेटवर्क बहाल भूने थो अब धर्मशाला शहर रे मनु जो रोजाना करीब 50 लाख लीटर पानी भी आपूर्ति किया सो मिले सकते हैं जत्थों पिछले लगभग 5 दिन थो किया सो नामांतर सप्लाई थो किया सो गुजरू कर दे थी है धर्मशाला रे मनुष्य तो है ना जी जल शक्ति विभाग धर्मशाला डिवीजन रे बहुत इंजीनियर बुझ गए ग्राउंड वर्कर बुझ गए इन कड़ी मेहनत तो बात किया सो एक कार्य किया सो पूरा करो हा शो तो गज खड धार ट्रीटमेंट प्लांट तो रोज इना वे 50 लाख लीटर पानी शो तो जानकारी कि न सो यही चली रहनी शो तो जानकारी रा पिटारा किया सो यही खुलते रहना तुंदे वीडियो सेट में आइया लेकर चलते तू सभी जो इस गीता री किनारी और फिर गीता तो बाद दिवाली मिलते इन तुझे सभी सो गी शो तो बनी रही रेडियो गुंजन रिगुंज सोगी

चलिए श्रोतो, हाँ भोलेनाथ जी आशीर्वाद किए सो असु सभी पर सदैव बना रहा और खुश रहना है सब, तंदुरुस्त रहना है ना। गिंद गिंद देव बनना चाहो श्रोतो की माता पिता री सेवा जरूर करा, सियाने री सेवा जरूर करा, हर किसी होगी के श्रोतो सो जरूर प्यारा हो गे रहा हर किसी हो ए जिब किए न शो तो ए जिब रेडे और ए जिब किए सो दूर हा। सो अपनी वाणी में शुद्धता की सो जरूर लेख रही है, हल्के मोटे री इज्जत की सो जरूर करा। इन्या शब्द था हूँ सचिन कपूर तुसु सभी तो ले लेनो इजाजत। अमूल दिन थोड़ी देर बाद फिर गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम मंच हंसते रहे मुस्कुरंदे रहे और रेडी गुंजन धर्मशाला जो ए हुण दे रहे।

नमस्कार 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। अब आप सभी सुनेंगे रुचिका के साथ आज का ये खास समाचार बुलेटिन। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पर। एचबीओ ने फीस वृद्धि में की 10% की कटौती, री इवेल्युएशन और करेक्शन फीस भी घटी। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद एचबीओ ने लिया निर्णय, विद्यार्थियों को मिलेगी राहत। कांगड़ा में बिछेगा सुरक्षा का नया जाल, चंबी से योलकेंट तक बनेगा डिफेंस रोड, 30 फुट होगी सड़क की चौड़ाई। अरब सागर में आफत, 22 भारतीय नाविकों वाले दो जहाज हाईजैक। हिमाचल में बनी 83 दवाओं समेत देश में 239 के सैंपल जांच में फेल। सुखविंदर सिंह सुखो ने कहा, दिव्यांगों के लिए बहाल की जाएगी सहारा योजना, मिलेगा एरियर। अब समाचार विस्तार से।

एचपीए ने विद्यार्थियों को बड़ी राहत देते हुए विभिन्न प्रकार की प्रवेश और परीक्षा फीस में कटौती की है। ये फैसला हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशों के बाद लिया गया। फीस में कमी को लेकर गठित उच्च स्तरीय कमेटी ने विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार की और इसके तुरंत बाद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर महावीर सिंह ने कमेटी का ड्राफ्ट मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया। इससे विश्वविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को आर्थिक राहत मिलेगी और उच्च शिक्षा को अधिक सुलभ बनाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा विश्वविद्यालय ने हॉस्टलों की विभिन्न फीस में की गई बढ़ोतरी को भी वापस लेने का निर्णय लिया है। कांगड़ा जिला में चल रहे फोर लेन और एयरपोर्ट विस्तार जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स के बीच अब राष्ट्रीय सुरक्षा का अवैध बनाने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया जा रहा है। सामरिक लिहाज से बेहद संवेदनशील माने जाने वाले योल कैंट और धर्मशाला कैंट क्षेत्र को एक नया और सुरक्षित कनेक्टिविटी विकल्प देने के लिए कांगड़ा में डिफेंस रोड के निर्माण की सुगबुगाहट तेज हो गई है। ये अति महत्वपूर्ण मार्ग पठानकोट मंडी फोरलेन के बीच शाहपुर क्षेत्र के चंबी से शुरू होकर चड़ी से धर्मशाला होते हुए सीधे योल छावनी को जोड़ेगा, जो युद्ध जैसी किसी भी आपात स्थिति में सेना के लिए एक मजबूत लाइफलाइन साबित होगा। इसे सड़क को भविष्य में एयरपोर्ट के नजदीकी सड़क के अति व्यवस्था को देखते हुए भी बनाया जा रहा है। इससे योल और धर्मशाला के कैंट एरिया सीधे पठानकोट से जुड़ जाएंगे। प्रस्तावित सड़क की चौड़ाई लगभग 27 से 30 फुट रखी जाएगी। होर्मुज के बाद अब अरब सागर भी गर्मा गया है। यमुना और सोमालिया तट पर 22 भारतीय नाविकों वाले दो जहाजों को हाईजैक करने की घटना सामने आई है। इन घटनाओं में ईरान समर्थक होती विद्रोहियों और जलदस्युओं का हाथ माना जा रहा है। एट्रिया के फ्लैग वाले एमटी शिवू को अरब सागर में यमन तट पर में अदन की खाड़ी के पास हाईजैक किया गया। 20 क्रू सदस्यों वाले इस जहाज में 16 भारतीय नाविक हैं। कैमरून के फ्लैग वाले दूसरे जहाज एमबी लुतुफ को सोमालिया के पंटलैंड तट के पास हाईजैक किया गया। 10 क्रू सदस्यों वाले इस जहाज पर 6 भारतीय नाविक सवार हैं। सूत्रों के अनुसार हाईजैक हुए दोनों जहाजों पर सवार सभी नाविक सुरक्षित हैं। फॉरवर्ड सीमेन यूनियन ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को कहा, ईरान युद्ध के कारण भारतीय नाविकों पर खतरा बढ़ गया है। पहले ईरान के क्षेत्र में स्थित होर्मुज स्ट्रेट में खतरा था, अब ये अरब सागर तक पहुंच गया है। हिमाचल प्रदेश में बनी 83 दवाओं समेत देश भर में 239 दवाइयों के सैंपल मानकों पर सही नहीं पाए गए हैं। जुलाई के ड्रग अलर्ट में इसका खुलासा हुआ है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की ओर से कार्रवाई 40 सैंपलों की जांच में हिमाचल की 12 दवाओं के सैंपल मानकों पर सही नहीं पाए गए। राज्य प्रयोगशालाओं में 199 सैंपल फेल हुए हैं, जिनमें 71 सैंपल हिमाचल में बनी दवाओं के शामिल हैं। दिव्यांगों के लिए जल्द ही सहारा योजना बहाल की जाएगी, साथ ही इसका एरियर भी दिया जाएगा। ऐसा आश्वासन मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दृष्टिहीन संघ को दिया है। संघ के प्रवक्ता राजेश ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने दिव्यांगों के लिए 16 महीनों से बंद हुई सहारा योजना बहाल करने का आश्वासन दिया है। बाबा बालकनाथ मंदिर दियोटसिद्ध की आरती अब श्रद्धालु यूट्यूब पर लाइव देख और सुन सकेंगे। इससे देश विदेश में रहने वाले श्रद्धालुओं में खुशी है। मंदिर में आरती के सीधे प्रसारण से बुजुर्ग, बीमार और दूरदराज क्षेत्रों में रहने वाले श्रद्धालु भी घर बैठे इसमें शामिल हो सकेंगे। बाबा बालकनाथ मंदिर दियोटसिद्ध परिसर और स्थानीय बाजार में मिलने वाला रोट प्रसाद और हलवा महंगा हो गया है। अब रोट प्रसाद 20 के बजाय 25 रुपए में मिलेगा। वहीं देसी घी से तैयार हलवे की कीमत 400 से बढ़ाकर 500 रुपए प्रति किलो हो गई है। वनस्पति घी से तैयार हलवे की कीमत भी 200 से बढ़ाकर 250 रुपए प्रति किलो कर दी गई है। रोट प्रसाद बाबा बालकनाथ के दर्शनों के बाद श्रद्धालु प्रसाद के रूप में घर ले जाते हैं। कीमत बढ़ने से अब श्रद्धालुओं को प्रति रोट 5 रुपए अधिक चुकाने होंगे। विद्युत उपमंडल सिद्धपुर के सहायक अभियंता संतोष कुमार ने बताया है कि एलटी विद्युत लाइन में केबल डालने के कार्य के चलते 24 अगस्त सोमवार को 100 केवीए फतेहपुर 4 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों रक्कड़ रोड व डॉक्टर परमार हाउस के आसपास सुबह 9:30 बजे से कार्य समाप्ति तक विद्युत आपूर्ति पूर्णतः बाधित रहेगी। मौसम खराब होने या अन्य आकस्मिक आपदा की स्थिति में ये कार्य स्थगित या आंशिक रूप से किया जा सकता है। उन्होंने लोगों से सहयोग की अपील की है।
इसी के साथ आज का ये खास समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।

नमस्कार दोस्तों, ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला 91.2 MHz पर। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त सुरुचिका, हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से चलते हैं एक प्यारे से गीत की तरफ।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों आप सभी गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा गीत। आप सभी इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से चलते हैं एक प्यारे से गीत की तरफ।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं नाचीज सचिन कपूर हाजिर हुआ हूँ आप सभी के रेडियो सेट पर और फेसबुक के माध्यम से बिल्कुल लाइव भी हुए हैं हम श्रोतों। तो बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है सभी सुनने वालों का, सभी श्रोतागण का। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद भी है कि आप सभी अच्छे होंगे श्रोतों। चलिए आइए सबसे पहले धर्मशाला का मौसम जान लेते हैं और उसके बाद बेहद एक घटना जो है वो सामने आई है, बेहद बुरी घटना इसको मैं कहूँगा कि सामने आई है, श्रोतों ज़रूर बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मौसम की जानकारी जो है वो आप तक हम साझा करते हैं। इस समय धर्मशाला में श्रोतों 20 से 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है वो तापमान बना हुआ है। हल्की बारिश या बादल छाए रहने की संभावना है। इस समय सिद्धबाड़ी में जो है वो बारिश ज़रूर हो रही है श्रोतों, है ना। और मौसम काफ़ी सुहावना भी है, ठंडा भी है श्रोतों। और मैं बात करूँ श्रोतों तो इस समय नमी की बात की जाए तो 80 से 85% जो है वो इस समय ह्यूमिडिटी बनी हुई है श्रोतों। तो बेहद दुखद घटना मैं कहूँगा श्रोतों, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जो आजकल के बच्चे हैं जो 10 साल से लेके 20 साल की एज ग्रुप या 25 साल की एज ग्रुप के हम मान के चलते हैं, इनमें वो फीलिंग्स क्यों नहीं हैं माता पिता को लेकर, इनमें वो दया भावना क्यों नहीं है माता पिता को लेकर। जी बिल्कुल, महाराष्ट्र का एक मामला जो है वो सामने आया है श्रोताओं, जहाँ पर 19 वर्ष के लड़के ने आईफोन लेने की जिद पर अपनी जान गवाई गवाई, लेकिन अपने साथ अपने पिता की भी और अपनी माता की भी। बिल्कुल एक सुसाइड पॉइंट पर खड़े होकर जो है उसने जिद की कि मुझे आईफोन चाहिए, आईफोन 17 की आई थिंक वो जिद कर रहा था, जो कि 1.5 लाख के बीच में आता है, 1.37 तक पड़ जाता है, उसकी वो लेने की जिद कर रहा था श्रोताओं। और वो जिद में उसके फादर साहब जो है वो उसे समझा रहे थे, वो समझाते उसने उन्हें उस बच्चे को खींचने की जो है वो कोशिश ज़रूर की, और उसको खींचते बच्चे ने जो है बच्चा वो अनबैलेंस हुआ और सीधा सुसाइड पॉइंट से सीधा नीचे जो है वो खाई में गिर गए। और उसी समय जो है वो बच्चे ने भी और बाप ने भी दम तोड़ दिया। ये हादसा देख रही माँ, फिर माँ का जब पूरा परिवार ही उजड़ गया तो माँ ने भी विद इन सेकेंड जो है वो डिसीज़न लिया और माँ ने भी छलांग जो है वो वहाँ से लगा दी श्रोतों। एक आईफोन की जिद ने पूरा परिवार जो है वो उजाड़ दिया। सोचो किस प्रकार की मानसिकता जो है वो लेकर चले हुए हैं आजकल के बच्चे। बहुत शौक है श्रोतों, बहुत दर्द है। कार्यक्रम आप सभी गुड इवनिंग धर्मशाला सुन रहे हैं और मैं हूँ सचिन कपूर। आइए आगाज करते हैं कार्यक्रम का इस प्यारे से गीत के साथ। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ यूं ही श्रोताओं।

श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आज से रेडियो, जो कि सचिन कपूर बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने सुना। श्रोतो ऐसा लगता है सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ में ये गीत था श्रोतो, और रिफ्यूजी फिल्म से लिया गया ये प्यारा सा गीत आप सभी के रेडियो सेट पर हमने किया ब्रॉडकास्ट। चलिए तो भाई यहाँ तो हो रही है सिद्धबाड़ी में समय बारिश, काफ़ी तेज तरार बारिश जिसको कहा जाता है। अन्य क्षेत्रों का हम कह नहीं सकते श्रोतों, क्योंकि आप सभी बाखूबी जानते हैं कि बारिश का मौसम है। योल में बारिश हो ना हो, धर्मशाला में बारिश हो ना हो, लेकिन फ़िलहाल ये हम आपको तक ज़रूर बताना चाहते हैं कि सिद्धबाड़ी में जो है वो बारिश हो रही है। चलिए तो आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना पसंदीदा वेड़ी गुंजन धर्मशाला और मैं नाचीज सचिन कपूर हूँ। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगली जानकारियों के साथ आपको रूबरू करवाते हैं। श्रोतों दिव्यांगों के लिए जो है वो जल्द ही सहारा योजना बहाल की जाएगी, साथ ही इसका एरिया भी दिया जाएगा श्रोतों। ऐसा आश्वासन मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दृष्टिहीन संघ को दिया है। श्रोतों संघ के प्रवक्ता राजेश ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने दिव्यांगों के लिए 16 महीनों से बंद हुई सहारा योजना बहाल करने का आश्वासन दिया है। इसी के साथ अगली जानकारी के साथ भी आप सभी को रूबरू करवाते हैं। बाबा बालकनाथ मंदिर दियोट सिद्ध की आरती अब श्रद्धालु YouTube पर लाइव देख और सुन सकेंगे, इससे देश विदेश में रहने वाले श्रद्धालुओं में खुशी है। मंदिर में आरती के सीधे प्रसारण से बुजुर्ग, बीमार और दूरदराज क्षेत्र में रहने वाले श्रद्धालुओं भी घर बैठे इसमें शामिल हो सकेंगे। श्रोतों बाबा बालकनाथ मंदिर दियोट सिद्ध परिसर और स्थानीय बाजार में मिलने वाला रोट प्रसाद और हलवा महंगा हो गया है। अब रोट प्रसाद 20 रुपये की बजाय 25 रुपये में मिलेगा, वहीं देसी घी से तैयार हलवे की कीमत 400 से बढ़कर 500 रुपया प्रति किलो हो गई है। श्रोतों वनस्पति घी से तैयार हलवे की कीमत भी 200 से बढ़कर 250 रुपये प्रति किलो कर दी गई है। रोट प्रसाद बाबा बालकनाथ के दर्शन के बाद श्रद्धालु प्रसाद के रूप में घर ले जाते हैं। श्रोतों कीमत बढ़ने से अब श्रद्धालुओं को प्रति रोट 5 रुपये अधिक चुकाने होंगे। कुछ इसी प्रकार की खास जानकारियां जो हैं वो हम आप तक साझा करेंगे। आप सभी बने हुए हैं रेडियो गुंजन की गूंज के साथ और कार्यक्रम बिल्कुल लाइव सुन रहे हैं। आइए जी लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को इस प्यारे से गीत की ओर।

शोतो एफएम बैंड के अनुदिशम लब 2 मेगाहर्ट्ज पर ये वेड़ी गुंजन धर्मशाला में धर्मशाला है और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना आरजे वेड़ी जो कि सचिन कपूर। धर्मशाला की शाम बहुत मस्तानी है, धर्मशाला की शाम बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी है। श्रोतों आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कार्यक्रम में थोड़ा सा और आगे चलते हैं। लगता है बारिश के बीच जो है वो चीज़ें बहुत अस्त व्यस्त जो हैं वो हो रही हैं, बहुत अस्त व्यस्त जो हैं वो जा रही हैं। जी बिल्कुल श्रोतों, और इस समय जो है वो जो मैक्लोडगंज, धर्मकोट, भागसूनाग और बिल्कुल कहना चाहूँगा मैं नड्डी के लोग जो हैं वो भी इस समय जो है यही सोच रहे हैं कि ज़िंदगी अस्त व्यस्त जा रही है। क्यों कह रहा हूँ श्रोतों, ये पूरी जानकारी आप तक पहुँचाता हूँ। लगातार बारिश के बीच धर्मशाला मैक्लोडगंज को जोड़ने वाले दोनों प्रमुख सड़क मार्ग की खस्ता हालत पर स्थानीय लोगों का आक्रोश बढ़ गया है। श्रोतों जोगीवाड़ा में खड़ा डंडा मार्ग दोबारा धंसने और राष्ट्रीय राजमार्ग 503 के फसरेड़गंज के पास मोड़ 9 सहित विभिन्न क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त होने से लोग और पर्यटकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। स्थानीय लोगों ने सरकार, प्रशासन और लोक निर्माण विभाग से दोनों मार्गों को प्राथमिकता के आधार पर सुरक्षित करने और स्थायी मरम्मत करवाने की जोरदार मांग उठाई है। स्थानीय लोगों में से सुधेड़ पंचायत के प्रधान अजीत नेहरिया, मैक्लोडगंज व्यापार मंडल के अध्यक्ष नवेंद्र पठानिया, कारोबारी एवं समाज सेवी बिट्टू पठानिया, बरने टैक्सी ऑपरेटर यूनियन अध्यक्ष अशोक शर्मा, संजीव सिंह राणा, दिनेश कपूर, विकास नेहरिया, नरेश सिंह व अन्य लोगों ने सड़क की स्थिति जल्द सुधारने की मांग उठाई है। उनका कहना है कि बरसात में हर साल इन मार्गों की हालत बिगड़ती है लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रशासन और विभाग को गंभीरता से जो है वो सोचना चाहिए और इस विषय के बारे में गंभीरता से जो है वो सोचना चाहिए। श्रोताओं लोग परेशान हैं, धर्मशाला के लोग जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं और जिन जिन एरिया के मैंने नाम लिए वहाँ के लोग भी जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं श्रोताओं। तो ये कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और आप सभी इस समय बने हुए हैं वेड़ी गुंजन की गूंज के साथ लेके चलते हैं आप सभी। हाँ बिल्कुल, इश्क चीज़ ही ऐसी है श्रोताओं जो छुपता नहीं छुपाने से। तेरा आशिक हूँ मैं जमाने से, जमाने से।

शोधो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला। आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम इस वक्त गुड इवनिंग धर्मशाला चल रहा है। बहुत प्यारा सा गीता पर सभी ने सुना, इश्क छुपता नहीं छुपाने से, तेरा आशिक हूँ मैं जमाने से। श्रोतों, बेवफा मूवी से लिया गया ये गीत है श्रोतों, और अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज़ में आपने ये गीत सुना। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और अगली जानकारी के साथ आप सभी को रूबरू करवाएंगे। आप सभी बने हुए समय आरजे सचिन कपूर के साथ, और आइए श्रोतों अगली जानकारी के साथ आपको रूबरू करवाते हैं। कांगड़ा ज़िला में चल रहे 4 लाइन और एयरपोर्ट विस्तार जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स के बीच में अब राष्ट्रीय सुरक्षा को अवैध बनाने के लिए जो है वो एक और बड़ा कदम उठाया जा रहा है। सामाजिक लिहाज से जो है वो बेहद संवेदनशील माने जाने वाले योल कैंट और धर्मशाला कैंट क्षेत्र को एक नया और सुरक्षित कनेक्टिविटी विकल्प देने के लिए कांगड़ा में डिफेंस रोड के निर्माण की सुगबुगाहट तेज हो गई है। श्रोताओं, ये अति महत्वपूर्ण मार्ग पठानकोट मंडी 4 लाइन के बीच शाहपुर क्षेत्र के चंबी से शुरू होकर चड़ी और धर्मशाला होते हुए सीधे योल छावनी को जोड़ेगा, जो युद्ध जैसी किसी भी आपत्ति में जो है वो सेना के लिए एक मजबूत लाइफलाइन साबित होगा। श्रोताओं, इस सड़क को भविष्य में एयरपोर्ट के नज़दीक सड़क की अति व्यवस्था को देखते हुए भी बनाया जा रहा है। श्रोताओं, इससे योल और धर्मशाला के कैंट एरिया सीधे पठानकोट से जुड़ जाएंगे और प्रस्तावित सड़क की चौड़ाई लगभग 27 से 30 फुट रखी जाएगी। जानकारियों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, जानकारियों का पिटारा जो है श्रोताओं वो यूं ही खुलता रहेगा। आप सभी बने हुए इस समय वेड़ी गुंजन धर्मशाला के साथ, लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को इस प्यारे से गीत की ओर।

शोधो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला। आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे वेड़ी जो कि सचिन कपूर। पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी श्रोता हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं, वेड़ी गुंजन धर्मशाला को सुन रहे हैं, आइए तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगली जानकारी के साथ जो है वो आप सभी श्रोताओं को रूबरू करवाते हैं। सड़क हादसों पर अंकुश लगाने और यातायात व्यवस्था को सुरक्षित बनाने के लिए जिला कांगड़ा पुलिस ने यातायात नियमों के पालन को लेकर जो है वो विशेष अभियान शुरू किया है। श्रोतों, हालांकि इससे पहले ही जिला भर में बाहरी राज्य से आने वाले दोपहिया वाहन चालकों ने खुलेआम ट्रैफिक नियमों की जो है वो धज्जियां उड़ाई हैं। श्रोतों, और धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। श्रोतों, लगातार ट्रिपल राइडिंग श्रोतों, बिना हेलमेट व प्रेशर हॉर्न के साथ किसी भी लेन में जो है वो घुसने से लोगों की जान जो है वो आफत में डाल दी है। अभियान के तहत पुलिस दोपहिया वाहन पर चालक और पीछे बैठने वाले दोनों के हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने, वैध दस्तावेज रखने समेत अन्य नियमों की जांच कर रही है। श्रोतों, अभियान के दौरान जो है वो यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के कुल जो है वो 83 चालान जो है वो किए गए हैं। श्रोतों, मिली जानकारी के अनुसार बिना हेलमेट वाहन चालान सबसे ज़्यादा हुए हैं। बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों पर जो है वो सबसे अधिक 29 चालान जो हैं वो किए गए हैं। श्रोतों, ओवर स्पीड के 14 मामले सामने आए हैं। यातायात नियमों की उल्लंघन पर 20 चालान जो हैं वो हुए हैं। श्रोतों, रोंग पार्किंग के 8 चालान हुए हैं। बिना लाइसेंस वाहन चालान के 4 और बिना नंबर प्लेट के 4 चालान जो हैं वो किए गए हैं। श्रोतों, लापरवाही देखिए, आप सड़क पर अगर आप लापरवाही करेंगे और इस तरह से अगर आप ट्रिपल राइडिंग और बिना हेलमेट के, बिना सीट बेल्ट के, बिना दस्तावेज के आप गाड़ी चलाएंगे तो चालान होना तो संभव है। श्रोतों, और ये बाहरी राज्यों के लिए नहीं, हमारे जितने भी लोकल बॉयज़ हैं, खासकर मैं कहना चाहूँगा जो लोकल लड़के हैं उनके लिए भी ये छोटा सा संदेश हमारी ओर से है कि हेलमेट पहनकर, ओवर स्पीड ना कर पूरे गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स लेकर जो है वो सड़क पर चलें और ओवर स्पीड बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आए दिन जो है वो हम सड़क हादसे देखते रहते हैं। श्रोतों, अभी हाल ही में ही जो है वो सिद्धबाड़ी में इतनी बड़ी दुर्घटना जो है वो हुई। श्रोतों, सड़क हादसे में 2 व्यक्तियों की मौत जो है वो हुई। सो इन चीज़ों का ख्याल रखना जो है वो हमारी ही जिम्मेदारी है। अच्छे नागरिक बने और अपनी जिम्मेदारियों को जो है वो बेहतरीन तरीके से समझे। श्रोताओं, बहरहाल लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को इस प्यारे से गीत की ओर। बने रहेगा, जुड़े रहेगा वेड़ी गुंजन की गूंज के साथ।

शोतो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम जो है वो आप सभी आरजे सचिन कपूर के साथ बिल्कुल लाइव सुन रहे हैं अपने अपने वीडियो सेट पर रेडी गुंजन धर्मशाला में। तो आइए श्रोतों कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और लेके चलते हैं आप सभी को एक और विशेष जानकारी की ओर। ये बहुत विशेष जानकारी है, बहुत इम्पोर्टेंट है श्रोतों, ये आई थिंक आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है ये जानकारी। श्रोतों कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और सीधा अगली जानकारी के साथ आपको रूबरू करवाएंगे। श्रोतों मोबाइल फ़ोन, ऑनलाइन गेम और छोटी वीडियो देखने की आदत अब बच्चों और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डालने लगी है। धर्मशाला के क्षेत्र अस्पताल में ऐसे बच्चों और किशोर उपचार के लिए जो है वो पहुँच रहे हैं श्रोतों, जो लगातार मोबाइल इस्तेमाल, गेमिंग, सामाजिक माध्यमों पर रील देखने के आदि हो चुके हैं। इतना ही नहीं श्रोतों, कई युवा व लोग अश्लील वीडियो देखने के एडिक्ट भी जो हैं वो हो चुके हैं, जिसमें अति गंभीर आधा दर्जन से अधिक मामलों में जो है वो लोगों ने खुद ही अस्पताल में पहुंचकर इलाज शुरू करवाया है, जबकि बच्चों में चिड़चिड़ापन व डिप्रेशन तक जाने के मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं श्रोताओं, जिसमें बच्चों व किशोरों को जो है वो मोबाइल लगने की गंभीर बीमारी का पता नहीं लग रहा है। श्रोतों अस्पताल में पहुंचने व काउंसलिंग करने के बाद ही बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं। ऐसे हर दिन 10 से 15 मामले जो हैं वो हर दिन ओपीडी में पहुंच रहे हैं, ये जानकर आपको हैरानगी होगी। मैं धर्मशाला अस्पताल की बात कर रहा हूं श्रोतों, धर्मशाला अस्पताल में हर दिन

ये मैसेज हम ज़रूर पहुंचाना चाहते हैं कि जितना हो सके, क्योंकि देखिए धर्मशाला ओपीडी में 10 से 15 मामले जो हैं वो डेली के डेली आ रहे हैं, और कुछ बच्चे जो हैं वो वीडियो देखने के एडिक्ट हो चुके हैं, कुछ शॉर्ट वीडियो देखने के एडिक्ट जो हैं वो हो चुके हैं, तो कुछ अश्लील वीडियो देखने के एडिक्ट जो हैं वो हो चुके हैं। तो आप सभी से ये विनती है कि जितना हो सके अपने बच्चों को मोबाइल से ज़रूर दूर रखिएगा, जिसमें आपकी भी भलाई है और आपके बच्चे का फ्यूचर भी जो है वो बिल्कुल सेफ है। श्रोताओं, जानकारियों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, आइए लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को इस गीत की ओर। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा रेडियो गुंजन की गूंज के साथ।

क्या बात है श्रोताओं, इश्क कीजिए फिर समझिए। नहीं, इश्क करने की ज़रूरत है, इश्क नहीं कर पा रहे तो शादी कीजिए फिर समझिए ज़िंदगी क्या चीज़ है। ये एक नया चैप्टर होता है।

0: रहता हूँ लाइफ में, जो बहुत कुछ आपको सिखा कर जाता है, बहुत कुछ सिखाता है, कभी हंसाता है तो कभी रुलाता है। फिलहाल हम चलेंगे थोड़ी सी आगे क्योंकि शाम के 7 बज चुके हैं श्रोताओं, और अब वक्त हो गया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला में समाचारों का।
1: फेनिलामाइन मेलेट और फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने कहा है कि ऐसी दवाओं के इस्तेमाल से 4 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम हो सकता है, इनके सुरक्षित विकल्प भी उपलब्ध हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज ब्रिक्स देशों के मंत्रियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के निकट ऐतिहासिक थोटलकोंडा बौद्ध विरासत स्थल का दौरा किया। ये दौरा भारत की वर्ष 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत विशाखापट्टनम में आयोजित कार्यक्रमों का हिस्सा है। ब्रिक्स देशों के खेल मंत्रियों की कल विशाखापट्टनम में बैठक होगी। भारतीय जनता पार्टी वंदे मातरम के प्रति जागरूकता फैलाने और इसके गायन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। नई दिल्ली में आज पत्रकारों से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ये निर्णय पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों की पहली बैठक में लिया गया। प्रवक्ता ने कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में कथित तौर पर 2 श्लोकों के बाद राष्ट्रगीत वंदे मातरम का पाठ रोकने का आरोप लगाते हुए कड़ी आलोचना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी 1 महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि अभियान के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ता देशभर के 14 लाख से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम भी आयोजित करेंगे। उन्होंने ब्लॉक स्तर पर 15 दिन के सेवा सेतु अभियान की भी घोषणा की।
2: सेवा सेतु अभियान के तहत 15 दिन के लिए ब्लॉक लेवल पर हर योजना के संबंधित डिपार्टमेंट के आवश्यक कागजात को लेकर वहां लोग उपस्थित रहे, तो आप वहां आइए, फॉर्म भरिए, आपका नाम आयुष्मान में ऐड हो जाएगा। ऐसे सरकार के अलग अलग भिन्न भिन्न जो योजनाएं हैं जिसका लाभ सभी लोगों तक पहुंचना है, तो उनको ये मौका होगा कि उनके ब्लॉक स्तर पर सेवा सेतु अभियान का एक अपना अलग कार्यक्रम उस दरमियान होगा, उसमें वो इस मौके का लाभ लेते हुए अपने आप को इस योजना में जोड़ सकते हैं।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने समाधान समारोह पहल के अंतर्गत आयोजित 3 दिन की विशेष लोक अदालत के पहले दिन 400 से अधिक मामलों का निपटारा किया। इनमें वैवाहिक और संपत्ति विवाद, मोटर दुर्घटना दावे, भूमि अधिग्रहण और मुआवजे से संबंधित मामले, कर विवाद और सेवा तथा श्रम संबंधी मामले शामिल हैं। न्यायालय ने कहा कि ये पहल न्याय व्यवस्था में मध्यस्थता और विवाद समाधान के अन्य सहमतिपूर्ण तरीकों को बढ़ावा देने के उसके निरंतर प्रयासों को दर्शाती है। ब्रिटेन के 70 से अधिक सांसदों ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश को पत्र लिखकर पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में बिगड़ती स्थिति पर हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। सांसदों ने पाकिस्तानी सेना के अत्याचार को रोकने और नागरिकों के जीवन की रक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की है। ये अपील POJK में पाकिस्तानी सेना की क्रूर कार्रवाई में सैकड़ों लोगों की मौत की खबर के बाद आई है। क्षेत्र में सख्त नाकाबंदी है और संचार बंद है। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद को चीन की लियू शेंगचू और टेन निंग से हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि भारतीय जोड़ी ने प्रतियोगिता में कांस्य पदक सुनिश्चित कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: गोरिया
1: गोरिया
2: गोरिया।
3: प्लास्टिक गोरिया जैसे नादान जानवरों की जान ले सकता है। आप भी छोटी सी शुरुआत कीजिए, प्लास्टिक को अलग डस्टबिन में डाल के शुरू करें एक छोटी सी अच्छाई।
4: बैठिए मैडम बैठिए।
5: देखो इनको, इनकी नाक देखो, बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती है। देखो इसकी आंखें देखो, पता है तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब कौन सा गाना था, एक चतुर नार बड़ी होशियार है, क्या गाना था वो।
6: अरे बेटो तू यहाँ क्या कर रहा है, और ये दोनों लड़कियां कौन है?
5: देखिए भाई साहब आप कौन है?
6: जी मैं इसका बाप हूँ।
5: आप इसके बाप हूँ? नमूद का बेटा नहीं तू? अरे हास्य कलाकार नमूद, ये तेरे बाप का रोड नहीं है?
7: जी नहीं।
5: तो फिर बिना हेलमेट के दो लड़कियों को बिठा के रूम रूम करते शर्म नहीं आती तुम्हें?
1: जवान तो कटेगा भैया तेरे,
5: और अभी उतर के लेके जाओ आपकी और सबकी।

नमस्कार दोस्तों, प्रेम विश्वास और भाई बहन के अटूट रिश्ते का ये पावन पर्व रक्षाबंधन आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है। राखी का ये पवित्र धागा सिर्फ कलाई पर बंधा एक धागा नहीं, बल्कि प्यार, विश्वास, सुरक्षा और जीवन भर साथ निभाने के वचन का प्रतीक है।

रिश्तों में मिठास रहे, अपनों का साथ रहे। रिश्तों में मिठास रहे, अपनों का साथ रहे। हर कलाई पर सजे प्यार का धागा और हर चेहरे पर मुस्कान रहे। इन्हीं खूबसूरत भावनाओं के साथ रेडियो वंचन धर्मशाला की ओर से आ रहे।

श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी श्रोताओं ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला, और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे वेड़ी, जो कि सचिन कपूर। तो सिद्धबाड़ी में लगातार जो है वो बारिश हो रही है श्रोतों, हो सकता है धर्मशाला के अन्य क्षेत्रों में भी जो है वो बारिश हो रही होगी। तो आप सभी जो है वो ज़रूर, क्योंकि श्रोतों अभी आई थिंक कोई 4 बजे के बाद का ये समय रहा होगा, 5 बजे के करीब आई थिंक, तो रानीताल में जो है वो पहाड़ी खिसकने से, आप सभी रानीताल जाते होंगे, रानीताल साइड या उस साइड चंडीगढ़ दिल्ली साइड जाते होंगे, या बगलामुखी माता के दर्शन ज्वाला जी साइड जाते होंगे, तो आपने देखा होगा कि पहाड़ियों में जो है वो सीमेंट डालकर जो है वो हरे हरे जो है वो पर्दे टाइप हम कह सकते हैं या बाउंड्री टाइप जो है वो लगा दी है, उसे फाड़ते हुए इतनी बड़ी चट्टान, इतना बड़ा मलबा जो है वो मेन रोड पर श्रोताओं गिरा है। और आपको बताना चाहेंगे उसके गिरने से जो है वो अल्टो कार में जो है श्रोताओं वो 4 व्यक्ति सवार थे, है ना, 4 लोग जो है वो सवार थे, वो चारों के चारों जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा घायल जो हैं वो हो चुके हैं श्रोतों। तो बिल्कुल, क्योंकि बरसात का मौसम है श्रोतों, और बरसात के मौसम में जो है वो अधिकांश यात्रा करने से हमेशा मनाई की जाती है, चाहे वो सरकार द्वारा हो, चाहे आप वो टीवी में रेडियो में सुनते हो, क्योंकि बरसात के समय जो है वो अधिकांश रोड जो है वो ख़राब रहते हैं, लैंडस्लाइड ज़्यादा होती है और भूस्खलन का खतरा ज़्यादा रहता है श्रोतों, है ना जी, और साथ ही साथ अन्य गतिविधियों का खतरा भी ज़्यादा रहता है। सो इसीलिए जो है वो कम यात्रा करें, जितनी कम हो सके उतनी कम यात्रा जो है वो ज़रूर करें श्रोतों, है ना, और जब भी कहीं घूमने जा रहे हैं तो इस बात का खास ख्याल रखें कि पहाड़ी, क्योंकि हम हिमाचल में हैं तो पहाड़ी इलाका होना जाहिर सी बात है, हर मोड़ पर पहाड़ी हमें मिलेगी मिलेगी, है ना, क्योंकि पहाड़ी इलाका है। तो हो सके तो ये 10-15 दिन जो है वो और अपने पैरों को जो है वो थमा लीजिए, अपने कार के पहिए जो हैं उन पे ब्रेक लगा लीजिए, और अगर बहुत ज़्यादा आवश्यक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी घर से बाहर निकलें श्रोतों। इसी बीच में श्रोतों वायरल भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा भी फैल रहा है, वही खांसी बुखार, शरीर में अकड़न, पेन होना, है ना, बारिश की वजह से हम सभी जो हैं वो गीले हो रहे हैं, और उस वजह से जो है वो हम लोग बीमार भी पढ़ रहे हैं श्रोताओं। तो यहाँ पर भी ध्यान रखना जो है वो बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, खुद का, इन नॉर्मल बातों का ध्यान, इन चीज़ों का ध्यान अगर हम रखते हैं तो ज़िंदगी जो है वो सुरक्षित चलती है, बेहतरीन चलती है। अब सभी बने हुए हैं आरजे सचिन कपूर के साथ, आइए लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर।

अशो तो वाकई में इन्हें अपने तो अपने होते हैं, और अपने वो होते हैं जो हॉस्पिटल में आपके साथ हो, अपने वो होते हैं जो आपको तकलीफ ना दे, अपने वो होते हैं जो आपको दर्द ना दे, अपने वो होते हैं जो आपके साथ रहे। शो तो बहरहाल कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आप सभी बने हुए इस समय आरजे सचिन कपूर के साथ कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला जो है वो सुन रहे हैं। आइए जी कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और लेके चलेंगे आप सभी को, क्योंकि शतो बारिश लगातार हो रही है ना, बरसात का मौसम है, और इस मौसम में जो है वो बहुत से लोग जो है वो बीमार हो रहे हैं, है ना। क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ, बारिश है, बारिश के मौसम में बीमार होने पर तुरंत डॉक्टर से मिले शतो, और आराम करें, हल्का और गर्म खाना खाएं शोतो, खूब पानी पिए और शरीर में पानी की कमी ना होने दें, ORS का घोल लें शोतो, खुद से भी खुद से कोई भी तेज़ दवाई या एंटीबायोटिक जो है वो ना खाएं। अक्सर हम ये करते हैं कि जिस तरह से हमें लगता है हम खुद ही जो है वो डॉक्टर बन जाते हैं, खुद ही एंटीबायोटिक दवाइयाँ जो है वो खाना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत निर्णय हैं, जो कि बहुत ही शतों निर्णय जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। देखिए, शरीर को ताकत देने के लिए पूरा आराम करना ज़रूरी है, है ना। हमेशा साफ और गुनगुना पानी ही पिए इस समय बरसात के मौसम में। खिचड़ी, दलिया या सूप पिए, जो पाचन में, पचने में जो है वो आसान हो, है ना। नींबू पानी या फिर ORS का घोल जो है वो लेते रहें, पानी पीते रहें शो, तो इन चीज़ों का ध्यान जो है वो ज़रूर रखें, क्योंकि बरसात के मौसम में जो है वो बीमार हम सभी जो है वो ज़रूर पड़ रहे हैं। बरसात का मौसम आते ही जो है वो चिलचिलाहट गर्मी से जो है वो राहत तो मिलती है श्रोतों, हालांकि ये कई स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों को भी साथ लेकर आती है श्रोतों, स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां भी लेकर जो है वो आती है बरसात श्रोतों, है ना। बढ़ती नमी, स्थिर पानी और मच्छरों और अन्य जो हम जितना भी प्रदूषण होता है ना, इसके कारण बरसात के मौसम में जो है वो बीमारियाँ श्रोतों आम हो जाती हैं। इन बीमारियों के बारे में जागरूक होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपका स्वास्थ्य ही आपका सबसे पहला, अगर आप ठीक हैं, आपका शरीर ठीक है, तो आप बेहतरीन हैं श्रोतों, है ना। डेंगू बुखार होना, इस तरह की चीज़ें जो है वो आम हो जाती हैं श्रोतों। बरसात के मौसम में डेंगू बुखार मच्छरों द्वारा फैलने वाला एक वायरल संक्रमण है, जैसे कि हम सभी बाखूबी जानते हैं। इसमें तेज़ बुखार, तेज़ सरदर्द, आंखों के पीछे दर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, है ना, चक्कर आना और इस तरह की चीज़ें जो है वो होती रहती हैं श्रोतों। सो अपना ख्याल खूब रखें और एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, आपके अपने रेडियो गुंजन पर ये प्यारा

श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला, आप सभी ने ट्यून किया हुआ है और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना रेडियो जो कि सचिन कपूर। बहुत बहुत स्वागत है पुनः आप सभी श्रोताओं का, सभी रेडियो गुंजन के जितने भी श्रोतागण हैं। श्रोतों, अक्सर हम रेडियो में आपके साथ साझा करते हैं या कोई टॉपिक साझा करते हैं या जो जानकारियाँ हैं वो साझा करते हैं, है ना, यही चीज़ें जो है वो साझा करते हैं। आज मैं साझा करने जा रहा हूँ श्रोतों, हम हमेशा बहुत सारे श्रोता जो बहुत सारे हमारे जो लोग हैं जो आरजेज हैं वो हर एक टॉपिक पर जो है वो बात करते हैं, रिश्तों पे बात करते हैं, है ना, किस तरह से रिश्ते जो है वो बना के रखने चाहिए, ये बहुत अहम है श्रोतों। और इसी पर मैं भी बात तो नहीं करूंगा क्योंकि समय नहीं है बात करने का, लेकिन हाँ ये ज़रूर मैं कहना चाहूंगा कि रिश्ते बहुत इम्पोर्टेंट है श्रोताओं। आप जितना रिश्तों को संभाल कर रखेंगे उतना रिश्ते जो हैं वो बेहतरीन बनते हैं, अच्छे बनते हैं। और देखिए, कर्मों का हिसाब जो है वो ज़रूर होता है, हर व्यक्ति जो है वो अपने अपने कर्म के हिसाब से जो है वो कार्य करता है, है ना। लेकिन जो अभी हम कर्म कमा रहे हैं ना श्रोतों, ये इन कर्मों का भुगतान जो है वो भी होना आवश्यक है, ज़रूरी है। 101 प्रतिशत इन कर्मों का हिसाब जो है वो भी होकर रहेगा। सो जब भी कोई काम करो, जब भी कुछ भी करो श्रोतों, कोई भी काम करते हैं आप, तो वो ये सोच कर ज़रूर करें कि हम जो कर रहे हैं इन कर्मों का हिसाब भी ज़रूर होगा। सो आप सभी बने हुए हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और मैं नाचीज सचिन कपूर हूँ आपके रेडियो सेट पर। लेके चलेंगे आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर।

शोतो FM बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला आरजे सचिन कपूर के साथ सुन रहे हैं। श्रोतों वक्त हो गया है कार्यक्रम में एक छोटे से अंतराल का।

0: गोरिया
1: गोरिया
2: गोरिया।
3: प्लास्टिक गोरिया जैसे नादान जानवरों की जान ले सकता है। आप भी छोटी सी शुरुआत कीजिए, प्लास्टिक को अलग डस्टबिन में डाल के शुरू करें एक छोटी सी अच्छाई।
4: बैठिए मैडम बैठिए।
5: अरे देखो इनको, इनकी नाक देखो, बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती है। देखो इसकी आंखें देखो, पता है तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब कौन सा गाना था, एक चतुर नार बड़ी होशियार है, क्या गाना था वो?
6: अरे बेटो तू यहाँ क्या कर रहा है, और ये दोनों लड़कियां कौन है?
5: लेकिन भाई साहब आप कौन है?
6: जी मैं इसका बाप हूँ।
5: आप इसके बाप हो? नमूद का बेटा नहीं तू? अरे हास्य कलाकार नमूद, ये तेरे बाप का रोड नहीं है?
7: जी नहीं।
5: तो फिर बिना हेलमेट के दो लड़कियों को बिठा के रूम रूम करते शर्म नहीं आती तुम्हें?
1: तो कटेगा भैया तेरा।
5: और अभी उतर के लेके जाओ। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए कृपया ट्रैफिक नियम का पालन कीजिए, क्योंकि
7: रोड किसी के बाप का नहीं।
5: शाबाश, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा।
8: नमस्कार दोस्तों, प्रेम विश्वास और भाई बहन के अटूट रिश्ते का ये पावन पर्व रक्षाबंधन आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है। राखी का ये पवित्र धागा सिर्फ कलाई पर बंधा एक धागा नहीं, बल्कि प्यार विश्वास सुरक्षा और जीवन भर साथ निभाने के वचन का प्रतीक है।

रिश्तों में मिठास रहे, अपनों का साथ रहे। रिश्तों में मिठास रहे, अपनों का साथ रहे। हर कलाई पर सजे प्यार का धागा और हर चेहरे पर मुस्कान रहे। इन्हीं खूबसूरत भावनाओं के साथ रेडियो वंचन धर्मशाला की ओर से।

0: नमस्ते भैया, कैसे हो भाभी जी?
1: अभी शादी का लहंगा सिलवाना था।
0: हाँ हाँ, बहुत सारे डिजाइन है, ये देखिए कौन सा स्टाइल चाहिए आपको। ये देखिए, पिछले महीने मिश्रा जी की बेटी की शादी के लिए सिया था।
1: ये तो स्लीवलेस है, हमें फुल स्लीव्स वाला चाहिए, थोड़ा सिंपल दिखाइए।
0: सिंपल में तो फिर, अरे पर किसके लिए बनाना है?
1: चुन्नी के लिए।
0: ये अपनी चुन्नी?
1: हाँ, अच्छा रिश्ता मिला है।
0: बेटा चुन्नी, कितने साल के हो आप?
2: अगले महीने 12 साल की हो जाएगी। पंडित जी ने इसी इतवार का मुहूर्त निकाला है, तो हो तो जाएगा ना तब तक।
0: अच्छा, 12 साल की है तो आपको प्रॉब्लम नहीं है?
2: नहीं, क्यों?
0: और आपको भी प्रॉब्लम नहीं है? पर मुझे प्रॉब्लम है, मैं नहीं सीऊंगा।
2: चलो छोड़ो उसे, किसी और से सिलवा लेंगे।
0: अरे भैया जी, एक मिनट। अरे बिरजू, वो कौन सा नंबर है, निकलवाओ तो जरा।
3: मास्टर जी, टोल फ्री नंबर है 1098, कभी भी कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं।
0: ना हम सीएंगे, ना किसी को सीने देंगे।
4: जीवन की हर उलझन का हल मिलेगा मित्र, बस अपने मन को थोड़ा शांत करके देखो। जो तुम्हारा है वो कहीं नहीं जाएगा, और जो चला गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीखो, क्योंकि मुस्कान ही हर दर्द की सबसे बड़ी दवा है। भरोसा उस ईश्वर पर पूरा रखो, वो तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे लिए सही है। तुम्हारी सरलता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, और तुम्हारी खामोशी में ही ईश्वर का वास।
5: मम्मी जी क्या कह रहे हैं, बचपन में आपका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था।
2: हाँ, जब मैं 12 साल का था ना, तो मैं पापा को बिना बताए उनकी बाइक लेके घर से बाहर निकल गया, और मैं बाइक इतनी तेज चला रहा था कि सामने से एकदम से ट्रक आ गया। तो ट्रक को बचाने के चक्कर में मैंने एकदम से लेफ्ट ले लिया। तो जैसे ही लेफ्ट लिया, सामने से गाड़ी आ रही थी, और गाड़ी में जाके बाइक लगी और बाइक पूरी खत्म हो गई।
5: बेबी बाइक को छोड़ो, आप बताओ आप बचे थे कि नहीं?
2: तब तो बच गया था, लगता है अब नहीं बचूंगा।

0: श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है। 7:46 हो गए हैं और अब वक्त हो गया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला में प्रादेशिक समाचारों का।
1: शिमला में चल रहे विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी सदन में आज राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान के अपमान के मुद्दे पर गतिरोध जारी रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने इस मुद्दे को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता।
2: प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन भी हंगामेदार रहा और सत्र के दो दिनों में करीब 2 घंटे 15 मिनट ही सदन की कार्यवाही चल सकी। प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत बीते रोज वंदे मातरम और राष्ट्रगान को लेकर हुए कथित अपमान का मुद्दा उठाया, जिस पर सत्ता पक्ष व विपक्ष में तीखी नोकझोंक और नारेबाजी हुई। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार चर्चा से भाग रही है जबकि विपक्ष सदन की कार्यवाही को चलाना चाहता है। उन्होंने कहा कि वे विधानसभा अध्यक्ष के पास अपनी बात रख रहे हैं और भाजपा विधायक दल की मांग है कि अगर सरकार राष्ट्रगान के अपमान की बात कर रही है तो इसके वीडियो को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राष्ट्रगान का कोई अपमान नहीं हुआ है और मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं।
3: कल विधानसभा के अंदर राष्ट्रीय गान जब शुरू हुआ सभी विपक्ष के माननीय सदस्य सावधान की मुद्रा में खड़े थे और पूरा राष्ट्रीय गान का गायन हुआ। जब समाप्त हुआ राष्ट्रीय गान, उसके बाद जो है वहाँ विधानसभा के अंदर प्रश्न पूछा गया कि वंदे मातरम क्यों नहीं गा रहे, और इसलिए अगर मुख्यमंत्री जिस प्रकार से झूठ प्रचारित करने चाहते हैं, पूरी वीडियो क्लिपिंग राष्ट्रीय गान की विपक्ष के सदस्यों को दी जाए और अगर उसमें कोई भी गलत नहीं किया है तो ये अवमानना का मामला बनता है मुख्यमंत्री के खिलाफ।
2: दूसरी ओर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि सदन में क्या होगा इसका फैसला सदन के अंदर ही होगा। उन्होंने कहा कि वे विपक्ष के आरोपों का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि सदस्यों को सदन की परंपरा के बारे में बताया गया था कि सत्र की शुरुआत राष्ट्रगान और समापन राष्ट्रगीत से होता है, लेकिन विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच गतिरोध नहीं रुका। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को वक्तव्य रखने का मौका दिया गया और इसके बाद मुख्यमंत्री ने जवाब शुरू किया, लेकिन विपक्ष ने पूरा जवाब नहीं सुना और नारेबाजी करते रहे।
4: नेता प्रतिपक्ष ने अपना वक्तव्य बड़ी डिटेल में रखा, उनके वक्तव्य के बाद मुख्यमंत्री का जवाब बनता है और वो सदन के नेता है। जब जवाब दे रहे थे तो फिर दोबारा से इंटरप्शन हो गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे को इंटरप्ट करने का कोशिश की, शोरगुल हुआ। फिर मैंने बार बार कहा कि भाई व्यवस्था बनाए, व्यवस्था नहीं बनी। हमने 2 बजे तक इसको एडजॉर्न किया। जैसे ही 2 बजे रीअसेंबल हुआ तो मुख्यमंत्री जी ने हाथ खड़ा किया कि मेरा जो वक्तव्य जो मैं नहीं पूरा कर पाया तो मैंने उनको इजाजत दी, और जैसे ही इजाजत दी फिर इंटरप्शन हो गया और दोनों तरफ से हो गया, और मेरे बार बार अनुरोध करने के बाद हाउस के अंदर व्यवस्था कायम नहीं हुई।
2: बाद में विधानसभा अध्यक्ष ने राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को लेकर सत्ता पक्ष व विपक्ष के बीच जारी गतिरोध के चलते सदन की कार्यवाही को सोमवार दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दिया। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष सदन को राजनीतिक अखाड़ा बनाना चाहता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष सदन की कार्यवाही को चलने नहीं देना चाहता और विपक्ष के पास सरकार के खिलाफ कोई मुद्दे नहीं हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा ने राष्ट्रीय गान का अपमान किया है जो बेहद निंदनीय है। भाजपा के विधायक असल मुद्दों से जनता का ध्यान बांटना चाहते हैं, इसलिए वंदे मातरम को बेवजह मुद्दा बनाया जा रहा है, जबकि कांग्रेस वंदे मातरम का सम्मान करती है।
5: राष्ट्रीय गान का अपमान किया है कांग्रेस विधायक दल, इससे बहुत दुखी है, और हमारा ये प्रयास है कि जो सदन की परंपरा और मर्यादा को बनाए रखे। हमने जो विधानसभा का लंबा सेशन बनाया है वो इसलिए बनाया है कि यहाँ परंपरा और मर्यादा और मुद्दों पर बात की जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसका राजनीतिकरण करके राजनीतिक लाभ उठाना चाहती है। वो भ्रष्टाचार से लोगों का ध्यान बांटना चाहती है, पेपर लीक से लोगों का ध्यान बांटना चाहती है, चीनी जो 65 रुपए किलो हो गई है उससे उसका ध्यान भटकाना चाहती है।
1: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि जल शक्ति विभाग में जल्द ही मल्टी टास्क वर्कर के 4000 पद भरे जाएंगे। शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में आज प्रश्नकाल के दौरान विधायक भुवनेश्वर गौड़ के एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मल्टी टास्क वर्कर्स की भर्ती पूर्व सरकार के समय बनाई गई नीति के आधार पर जारी है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि लोक निर्माण व जल शक्ति विभाग और राज्य बिजली बोर्ड में खाली पड़े क्रियाशील पदों को भी चरणबद्ध तरीके से भरा जाएगा। उन्होंने बताया कि बिजली बोर्ड में भी खाली पदों के अनुरूप बिजली मित्रों की भर्ती की जाएगी। इसके लिए संबंधित क्षेत्र के अधिशासी अभियंता को अधिकृत किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि बिजली मित्रों की भर्ती में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। बेलदार के पदों को लेकर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इन्हें पूर्व सरकार के समय ही समाप्त कर दिया गया है और इनके स्थान पर मल्टी टास्क वर्कर की नीति बनी है। विधायक मोहनलाल बराकटा के सवाल के जवाब में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि प्रदेश को जल जीवन मिशन के तहत केंद्र से 1,227 करोड़ रुपए अब तक प्राप्त नहीं हुए हैं, जिससे 1,081 करोड़ रुपए की योजनाएं अधूरी पड़ी हैं। उन्होंने कहा कि आगामी 1 और 2 सितंबर को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जल जीवन मिशन को लेकर एक बैठक होगी, जिसमें राज्य सरकार लंबित राशि के शीघ्र भुगतान का मामला उठाएगी। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने विधायक विपिन सिंह परमार के सवाल के लिखित जवाब में बताया कि प्रदेश में इस वर्ष भारी वर्षा व प्राकृतिक आपदाओं से व्यापक नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि 1 अगस्त 2026 तक प्रदेश में 1,871 प्रभावित परिवारों को राहत राशि वितरित की जा चुकी है, जबकि 1,260 प्रभावित परिवारों को अब तक मुआवजा नहीं मिल पाया है। राजस्व मंत्री ने बताया कि लंबित मामलों में अधिकांश प्रभावित परिवारों ने राहत के लिए RMS पोर्टल पर आवेदन नहीं किया है। उन्होंने कहा कि जरूरी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पात्र परिवारों को नियमानुसार राहत राशि प्रदान की जाएगी। जगत सिंह नेगी ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष में 1 अगस्त तक आपदा राहत के लिए केंद्र सरकार से 802.56 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। हिमाचल पथ परिवहन निगम के धर्मशाला डिपो में संचालित 5 नई इलेक्ट्रिक बसें निगम के लिए बेहतर प्रदर्शन और आर्थिक बचत का जरिया बन रही हैं। HRTC धर्मशाला के डिविजनल मैनेजर पंकज चड्ढा ने बताया कि इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से निगम को ईंधन खर्च में बचत हो रही है और इन बसों में प्रदूषण व शोर कम होने से यात्रियों को आरामदायक सफर की सुविधा मिल रही है। उन्होंने बताया कि बेहतर रूट प्लानिंग और अपॉर्चुनिटी चार्जिंग के चलते बसों का औसत दैनिक संचालन 217 किलोमीटर तक पहुँच गया है।
6: धर्मशाला डिपो में जो 5 इलेक्ट्रा गाड़ी आई है उनकी जो एवरेज पर गाड़ी पर डे यूटिलाइजेशन जो है वो 217 पहुंच गई है। ये बहुत आरामदायक है, लोग इनमें बैठना पसंद कर रहे हैं। इसके कारण क्या है कि जो हमारी आय है रूटों पे प्रति किलोमीटर उसमें इजाफा हुआ, उसमें वृद्धि हुई है, क्योंकि ये बिल्कुल साउंड फ्री गाड़ियां हैं, पोल्यूशन फ्री गाड़ियां हैं। जबकि इलेक्ट्रिकल गाड़ी है उसका खर्चा जो है 12-13 रुपए के करीब आता है। तो हम लोगों ने इनको रूटीन के हिसाब से ऐसा बनाया है कि जो गाड़ी है जहाँ से आ चले।
1: प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाए रहे, हालांकि राज्य के कई स्थानों में रुक रुक कर बारिश का क्रम जारी है। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर भारी वर्षा के चलते हुए भूस्खलन के कारण 98 सड़क मार्ग अवरुद्ध हैं। इसके अलावा 89 बिजली ट्रांसफार्मर और 42 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हैं। हालांकि संबंधित विभागों द्वारा इन सुविधाओं को बहाल करने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने आज बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, मंडी, सोलन और सिरमौर जिलों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल 23 अगस्त को प्रदेश में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन भी रहा हंगामेदार। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को लेकर सत्ता पक्ष व विपक्ष ने लगाए आरोप। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, जल शक्ति विभाग में जल्द भरे जाएंगे मल्टी टास्क वर्कर्स के 4,000 पद। प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित 1,871 परिवारों को मिली राहत राशि, 1,260 परिवारों को अभी तक नहीं मिला मुआवजा। राज्य पथ परिवहन निगम के धर्मशाला डिपो में संचालित इलेक्ट्रिक बसें बनी बेहतर प्रदर्शन और आर्थिक बचत का जरिया। और प्रदेश के 6 जिलों में आज कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का येलो अलर्ट, कल मौसम के साफ रहने की संभावना। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को दूंगा विराम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आरजे सचिन कपूर को यूं ही अपना आशीर्वाद और प्यार देते रहिए। नमस्ते धर्मशाला।

0: गोरिया
1: गोरिया
2: गोरिया।
3: प्लास्टिक गोरिया जैसे नादान जानवरों की जान ले सकता है। आप भी छोटी सी शुरुआत कीजिए, प्लास्टिक को अलग डस्टबिन में डाल के शुरू करें एक छोटी सी अच्छाई।
4: बैठिए मैडम बैठिए। अरे देखो इनको, इनकी नाक देखो, बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती है। देखो इसकी आंखें देखो, पता है तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब कौन सा गाना था, एक चतुर नार बड़ी होशियार है, क्या गाना था वो।
5: अरे बेटो तू यहाँ क्या कर रहा है, और ये दोनों लड़कियों कौन है?
4: देखिए भाई साहब आप कौन है?
5: जी मैं इसका बाप हूँ।
4: आप इसके बाप हैं? महमूद का बेटा नहीं है तू? अरे हास्य कलाकार महमूद, ये तेरे बाप का रोड नहीं है?
6: जी नहीं।
4: तो फिर बिना हेलमेट के दो लड़कियों को बिठा के रूम रूम करते शर्म नहीं आती तुम्हें?
7: जवान तो कटेगा भैया तेरा।
4: और अभी उतर के लेके जाओ। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए कृपया ट्रैफिक नियम का पालन कीजिए, क्योंकि
6: रोड किसी के बाप का नहीं।
4: शाबाश, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा।
8: नमस्कार दोस्तों, प्रेम विश्वास और भाई बहन के अटूट रिश्ते का ये पावन पर्व रक्षाबंधन आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है। राखी का ये पवित्र धागा सिर्फ कलाई पर बंधा एक धागा नहीं, बल्कि प्यार विश्वास सुरक्षा और जीवन भर साथ निभाने के वचन का प्रतीक है।

रिश्तों में मिठास रहे, अपनों का साथ रहे। रिश्तों में मिठास रहे, अपनों का साथ रहे। हर कलाई पर सजे प्यार का धागा और हर चेहरे पर मुस्कान रहे। इन्हीं खूबसूरत भावनाओं के साथ रेडियो गुंजन धर्मशाला की ओर से आ रहे इस रक्षाबंधन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।

0: नमस्ते भैया, कैसे हो भाभी जी?
1: अभी शादी का लहंगा सिलवाना था।
0: हाँ हाँ, बहुत सारे डिजाइन है, ये देखिए। कौन सा स्टाइल चाहिए आपको? ये देखिए, पिछले महीने मिश्रा जी की बेटी की शादी के लिए सिया था।
1: ये तो स्लीवलेस है, हमें फुल स्लीव्स वाला चाहिए। थोड़ा सिंपल दिखाइए।
0: सिंपल में तो फिर, अरे पर किसके लिए बनाना है?
1: चुन्नी के लिए।
0: ये अपनी चुन्नी?
1: हाँ, अच्छा रिश्ता मिला है।
0: बेटा चुन्नी, कितने साल के हो आप?
2: अगले ही महीने 12 साल की हो जाएगी। पंडित जी ने इसी इतवार का मुहूर्त निकाला है, तो हो तो जाएगा ना तब तक।
0: अच्छा, 12 साल की है तो आपको प्रॉब्लम नहीं है?
2: नहीं, क्यों?
0: और आपको भी प्रॉब्लम नहीं है? पर मुझे प्रॉब्लम है, मैं नहीं सीऊंगा।
2: चलो छोड़ो उसे, किसी और से सिलवा लेंगे।
0: अरे भैया जी, एक मिनट। अरे बिरजू, वो कौन सा नंबर है, निकलवाओ तो जरा।
3: मास्टर जी, टोल फ्री नंबर है 1098, कभी भी कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं।
0: ना हम सीएंगे, ना किसी को सीने देंगे।
4: जीवन की हर उलझन का हल मिलेगा मित्र, बस अपने मन को थोड़ा शांत करके देखो। जो तुम्हारा है वो कहीं नहीं जाएगा, और जो चला गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीखो, क्योंकि मुस्कान ही हर दर्द की सबसे बड़ी दवा है। भरोसा उस ईश्वर पर पूरा रखो, वो तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे लिए सही है। तुम्हारी सरलता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, और तुम्हारी खामोशी में ही ईश्वर का वास।
5: मम्मी जी क्या कह रहे हैं, बचपन में आपका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था।
6: हाँ, जब मैं 12 साल का था ना, तो मैं पापा को बिना बताए उनकी बाइक लेके घर से बाहर निकल गया, और मैं बाइक इतनी तेज चला रहा था कि सामने से एकदम से ट्रक आ गया। तो ट्रक को बचाने के चक्कर में मैंने एकदम से लेफ्ट ले लिया। तो जैसे ही लेफ्ट लिया, सामने से गाड़ी आ रही थी, और गाड़ी में जाके बाइक लगी और बाइक पूरी खत्म हो गई।
5: बेबी बाइक को छोड़ो, आप बताओ आप बचे थे कि नहीं?
6: तब तो बच गया था, लगता है अब नहीं बचूंगा।

0: गोरिया आ करा गोरिया
1: हटो हटो हटो हटो एले गोरिया।
2: प्लास्टिक गोरिया जैसे नादान जानवरों की जान ले सकता है। आप भी छोटी सी शुरुआत कीजिए, प्लास्टिक को अलग डस्टबिन में डाल के शुरू करें एक छोटी सी अच्छाई।
3: बैठिए मैडम बैठिए। देखो इनको, इनकी नाक देखो, बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती है। देखो इसकी आंखें देखो। पता है तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब कौन सा गाना था, एक चतुर नार बड़ी होशियार है, क्या गाना था वो।
4: अरे बेटो तू यहाँ क्या कर रहा है, और ये दोनों लड़कियों कौन है?
3: देखिए भाई साहब आप कौन है?
4: जी मैं इसका बाप हूँ।
3: आप इसके बाप हूँ? महमूद का बेटा नहीं है तू? अरे हास्य कलाकार महमूद, ये तेरे बाप का रोड नहीं है?
5: जी नहीं।
3: तो फिर बिना हेलमेट के दो लड़कियों को बिठा के रूम रूम करते शर्म नहीं आती तुम्हें?
6: चलान तो कटेगा भैया तेरा,
3: और अभी उतर के लेके जाओ। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए कृपया ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि
5: रोड किसी के बाप का नहीं।
3: शाबाश, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा।
2: नमस्कार दोस्तों, प्रेम विश्वास और भाई बहन के अटूट रिश्ते का ये पावन पर्व रक्षाबंधन आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आ रहा है। राखी का ये पवित्र धागा सिर्फ कलाई पर बंधा एक धागा नहीं, बल्कि प्यार विश्वास सुरक्षा और जीवन भर साथ निभाने के वचन का प्रतीक है।

रिश्तों में मिठास रहे, अपनों का साथ रहे। रिश्तों में मिठास रहे, अपनों का साथ रहे। हर कलाई पर सजे प्यार का धागा और हर चेहरे पर मुस्कान रहे। इन्हीं खूबसूरत भावनाओं के साथ रेडियो गुंजन धर्मशाला की ओर से आ रहे इस रक्षाबंधन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।

0: नमस्ते भैया, कैसे हो भाभी जी?
1: अभी शादी का लहंगा सिलवाना था।
0: हाँ हाँ, बहुत सारे डिजाइन है, ये देखिए कौन सा स्टाइल चाहिए आपको। ये देखिए, पिछले महीने मिश्रा जी की बेटी की शादी के लिए सिया था।
1: ये तो स्लीवलेस है, हमें फुल स्लीव्स वाला चाहिए, थोड़ा सिंपल दिखाइए।
0: सिंपल में तो फिर, अरे पर किसके लिए बनाना है?
1: चुन्नी के लिए।
0: ये अपनी चुन्नी?
1: हाँ, अच्छा रिश्ता मिला है।
0: बेटा चुन्नी, कितने साल के हो आप?
2: अगले महीने 12 साल की हो जाएगी। पंडित जी ने इसी इतवार का मुहूर्त निकाला है, तो हो तो जाएगा ना तब तक।
0: अच्छा, 12 साल की है तो आपको प्रॉब्लम नहीं है?
2: नहीं, क्यों?
0: और आपको भी प्रॉब्लम नहीं है? पर मुझे प्रॉब्लम है, मैं नहीं सीऊंगा।
2: चलो छोड़ो उसे, किसी और से सिलवा लेंगे।
0: अरे भैया जी, एक मिनट। अरे बिरजू, वो कौन सा नंबर है, निकलवाओ तो जरा।
3: मास्टर जी, टोल फ्री नंबर है 1098, कभी भी कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं।
0: ना हम सिएंगे, ना किसी को सीने देंगे।
4: जीवन की हर उलझन का हल मिलेगा मित्र, बस अपने मन को थोड़ा शांत करके देखो। जो तुम्हारा है वो कहीं नहीं जाएगा, और जो चला गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीखो, क्योंकि मुस्कान ही हर दर्द की सबसे बड़ी दवा है। भरोसा उस ईश्वर पर पूरा रखो, वो तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे लिए सही है। तुम्हारी सरलता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, और तुम्हारी खामोशी में ही ईश्वर का वास।
5: मम्मी जी क्या कह रहे हैं, बचपन में आपका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था।
6: हाँ, जब मैं 12 साल का था ना, तो मैं पापा को बिना बताए उनकी बाइक लेके घर से बाहर निकल गया, और मैं बाइक इतनी तेज चला रहा था कि सामने से एकदम से ट्रक आ गया। तो ट्रक को बचाने के चक्कर में मैंने एकदम से लेफ्ट ले लिया। तो जैसे ही लेफ्ट लिया, सामने से गाड़ी आ रही थी, और गाड़ी में जाके बाइक लगी और बाइक पूरी खत्म हो गई।
5: बेबी बाइक को छोड़ो, आप बताओ आप बचे थे कि नहीं।
6: तब तो बच गया था, लगता है अब नहीं बचूंगा।

सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, करते हैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

91.2 MHz पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपने होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 MHz पर। ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो दो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: गोरिया
1: गोरिया गोरिया आकर आ
2: गोरिया
3: हटो हटो हटो हटो एले गोरिया।
4: प्लास्टिक गोरिया जैसे नादान जानवरों की जान ले सकता है। आप भी छोटी सी शुरुआत कीजिए, प्लास्टिक को अलग डस्टबिन में डाल के शुरू करें एक छोटी सी अच्छाई।
5: बैठिए मैडम बैठिए। अरे देखो इनको, इनकी नाक देखो, बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती है। देखो इसकी आंखें देखो। पता है तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब कौन सा गाना था, एक चतुर नार बड़ी होशियार है, क्या गाना था वो।
6: अरे बेटो तू यहाँ क्या कर रहा है, और ये दोनों लड़कियां कौन है?
5: देखिए भाई साहब आप कौन है?
6: जी मैं इसका बाप हूँ।
5: आप इसके बाप हैं? महमूद का बेटा नहीं है तू? अरे हास्य कलाकार महमूद, ये तेरे बाप का रोड नहीं है?
7: जी नहीं।
5: तो फिर बिना हेलमेट के दो लड़कियों को बिठा के रूम रूम करते शर्म नहीं आती तुम्हें?
1: जवान तो कटेगा भैया तेरा,
5: और अभी उतर के लेके जाओ आपकी और

0: कृपया ट्रैफिक नियम का पालन कीजिए, क्योंकि
1: रोड किसी के बाप का नहीं।
0: शाबाश, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा।
2: नमस्कार दोस्तों, प्रेम विश्वास और भाई बहन के अटूट रिश्ते का ये पावन पर्व रक्षाबंधन आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है। राखी का ये पवित्र धागा सिर्फ कलाई पर बंधा एक धागा नहीं, बल्कि प्यार विश्वास सुरक्षा और जीवन भर साथ निभाने के वचन का प्रतीक है।

रिश्तों में मिठास रहे, अपनों का साथ रहे। रिश्तों में मिठास रहे, अपनों का साथ रहे। हर कलाई पर सजे प्यार का धागा और हर चेहरे पर मुस्कान रहे। इन्हीं खूबसूरत भावनाओं के साथ रेडियो गुंजन धर्मशाला की ओर से आ रहे इस रक्षाबंधन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।

0: नमस्ते भैया, कैसे हो भाभी जी?
1: अभी शादी का लहंगा सिलवाना था।
0: हाँ हाँ, बहुत सारे डिजाइन है, ये देखिए कौन सा स्टाइल चाहिए आपको। ये देखिए, पिछले महीने मिश्रा जी की बेटी की शादी के लिए सिया था।
1: ये तो स्लीवलेस है, हमें फुल स्लीव्स वाला चाहिए, थोड़ा सिंपल दिखाइए।
0: सिंपल में तो फिर, अरे पर किसके लिए बनाना है?
1: चुन्नी के लिए।
0: ये अपनी चुन्नी?
1: हाँ, अच्छा रिश्ता मिला है।
0: बेटा चुन्नी, कितने साल के हो आप?
2: अगले ही महीने 12 साल की हो जाएगी। पंडित जी ने इसी इतवार का मुहूर्त निकाला है, तो हो तो जाएगा ना तब तक।
0: अच्छा, 12 साल की है तो आपको प्रॉब्लम नहीं है?
2: नहीं, क्यों?
0: और आपको भी प्रॉब्लम नहीं है? पर मुझे प्रॉब्लम है, मैं नहीं सीऊंगा।
2: चलो छोड़ो उसे, किसी और से सिलवा लेंगे।
0: अरे भैया जी, एक मिनट। अरे बिरजू, वो कौन सा नंबर है, निकलवाओ तो जरा।
3: मास्टर जी, टोल फ्री नंबर है 1098, कभी भी कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं।
0: ना हम सीएंगे, ना किसी को सीने देंगे।
4: जीवन की हर उलझन का हल मिलेगा मित्र, बस अपने मन को थोड़ा शांत करके देखो। जो तुम्हारा है वो कहीं नहीं जाएगा, और जो चला गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीखो, क्योंकि मुस्कान ही हर दर्द की सबसे बड़ी दवा है। भरोसा उस ईश्वर पर पूरा रखो, वो तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे लिए सही है। तुम्हारी सरलता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, और तुम्हारी खामोशी में ही ईश्वर का वास।
5: मम्मी जी क्या कह रहे हैं, बचपन में आपका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था।
2: हाँ, जब मैं 12 साल का था ना, तो मैं पापा को बिना बताए उनकी बाइक लेके घर से बाहर निकल गया, और मैं बाइक इतनी तेज चला रहा था कि सामने से एकदम से ट्रक आ गया। तो ट्रक को बचाने के चक्कर में मैंने एकदम से लेफ्ट ले लिया। तो जैसे ही लेफ्ट लिया, सामने से गाड़ी आ रही थी, और गाड़ी में जाके बाइक लगी और बाइक पूरी खत्म हो गई।
5: बेबी, बाइक को छोड़ो, आप बताओ आप बचे थे कि नहीं।
2: तब तो बच गया था, लगता है अब नहीं बचूंगा।

गुंजन रेडियो घर घर पहुंचाए आपकी आवाज, बने आपका अपना रेडियो, हम सबका यही है प्रयास। दुनिया के किसी भी कोने में रहें आप सुन सकते हैं गुंजन रेडियो की आवाज़। सो स्टे ट्यून विद रेडियो गुंजन 91.2 FM।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर भक्ति संगीत आराधना। तो श्रोताओं, करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से भजन के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो।

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।